अद पूर्ण भगवान श्लोक अनक पेख अर ज्ञाने मन ध्यान मन हठ मिले ना कोए का नानक कृपा पई भगत यानी तोए पवड़ी नैया ज्ञान नहीं मुख बातो अनक जगत शास्त्र कर बातो ज्ञानी तोए जाके दृढ़ सो कहत सुनत जग कछ जोग न हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाके पूषण सीत संसर सब ताके ज्ञानी तत गुरमुख बेचारी नानक जाको कृपा तारी श्लोक आवन आय श्रेष्ठ में बिन बुझे पसतोर नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर पौड़ी या जग में एक कौ आया जन्मत मोहयो मोनी पाया गर्भ कुंठ में उर्द तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छड़ाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे गुसाई एत उत नानक तित बिसर नाही सलोक आवत हुकम बिनास हुकम आक्या पेन ना कोई आवन जाना तै मिटे नानक जय मन सोए पौड़ी एउ जी बहुत गर्भ वासे मोह मगन मीठ जान पासे इन माया त्रय गुण बसती ने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाया जाते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत संग मिलाए नानक ताके निकट न माए श्लोक कीर्तक मामन सब असब कीने तिन प्रभ आप पशु आपन हो करे नानका बिन हर कहा कमात पौड़ी एके आप करावन हारा आपे आपन आप बेसारा या जग जित जित आपे लायो सो सो पायो जे आप दिवायो पुआ का अंत न जाने को जो जो करे सोई पन हो एके ते सकला बेसारा नानक आप सवारन हारा श्लोक राज रहे बनता बिनोद कुसुम रंग बिख तोर नानक ते सरणी करो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मन हर रे

प्रबदहो सांग सदो सांग लेखे घनतन चूटिये काची पीतन सद जिसे बजाए नानका ते गुरमुख निर्मल बोध सलोक टूटे बंधन जात के हुआ साधु सांग जो राते रंग एक है नानक गूढ़ा रंग पौड़ी रारा रंगो या मने अपना हर हर नाम जपो जप रचना रे रे दरगा कह न को आओ बैठो आदर सब देव हुआ महली पावे तू बासा जन्म मरण ना होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तर जाके हर संपै नानक करता के श्लोक लालच झूठ बेकार मो व्यापत मुड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यो नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखे रस राते अहम बद माया मदमाते या माया मैं जन्म मैं मरना जो जो हुक्म तिवे त्यो करना को ऊन ना को पूरा को सुर्ग ना को मूरा जित जित लावो तित तित लगना नानक ठाकर सदा अलपना सलोक लाल गोपाल गोविंद प्रभ गैर गंभीर था दूसर नाही अवर को नानक वे परवा पौड़ी ललाल ताके लवे न को एके आप अवर न हो होवन हार होत सद आया उआ का अंत न काहू पाया तीर हस्त में पूर समाने प्रगट पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर तेज अपना सलोक आत्म रस जय अजानिया हर रंग सहजे मान नानक तन तन तन जने आए ते परवान पौड़ी आया सफलता हु को गणी है जास रतन हर हर जस पनी है आए बसे साधु के संगे अनजन नाम ते आवे रंगे आवत सो जन नाम है राता जाको दया माया बेदाता एके आमन फिर जोन ना आया नानक हर के दर्श समाया श्लोक यासु जबत मन होए आनंद बिन सह दूजा पाओ दुख दर्द तृष्णा बुझे नानक नाम समाओ पौड़ी जया जारो दरमत दो तिसे त्याग सो सुख सहजे सो जया जाए पर संत सरना जय आसर या पौजल तरना जया जन्म ना आवे सो एक नाम ले मने परो यया जन्म न हारी है पूरे गुर की टेक नानक ते सुख पाया जाके हिरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ईत ऊत के मीत गुर पूरे उपदेसिया नानक जपिए नीत पौड़ी अन दिन सिमरतास को जो अंत सहाई होए ए बिखिया दिन चार छे छाड़ चलो सब कोए काको मात पिता सुत तिया ग्रह बनता कछ संग न लिया ऐसी संचना जो बिन सत नाही पत सेती अपने कर जाही साध

पौड़ी गगा गोविंद गुण गावो सास सास जपनीत सहाबे सासा देका बेल मना करो मीत नै बारक नै जोबने नै बिरदी कछ बंद ओ बेरा नहीं बूझिए जो आए परे जम पंद ज्ञानी त्यानी चतर पेख रहन नहीं एठाए छाड़ छाड़ सगली गई मोड़ तहा लपटाए गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहू पग मस्तक पाग नानक आए सफलते जाको प्रय सोहाग श्लोक को गे शास्त्र वेद सब आन न कथ कथ तव होए आद जगा दी हुन होवत नानके के सोए पौड़ी सगा कालो मन ए बिन हर दूसर नाही न होआ न होम ना जत कत ओहे समाही कूले तो मन जाओ आवय रचना नाम तत् कल मैं पहरचना काल काल अनक पछता हो बिन हर भगत कहा थित पावे कोल महारत अमृत तय पिया नानक हर गुर जा को दिया श्लोक अने काले सब दिवस सास नह बड़न कटन तिल सार जीवन लोरे परम मो नानक त्यो गवार पौड़ी अहिया से काल तय सो सा जो ताकत प्रभ कीन जीवन लोरे परम मो नानक त्यो गवार अनक जोन जन मैं मरे आत्म राम न चीन ज्ञान त्यान का ताहू को आए कर कृपा जय आप देवाए अनती अनी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे जो जीवत जय जीवत जीवत जपया पर घट पए नानक ने छपया श्लोक चित चित वो चरनार बिंद ऊद कवल बेसघात बेसांत प्रगट पए आपे गोविंद नानक संत मतांत पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन उआ दिन संजोग सभागा चार कुंड दे दिस पर में आई है पई कृपा तब दर्शन पाई है चार बिचार बिन सौ सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टिता नानक ज्ञान अंजन जय नेत्रा श्लोक छाती शीतल मन सुखी संत गोविंद गुण गाए ऐसे कृपा करो प्रभ नानक दास दसाए पौड़ी छच्छा चोरे दास तुम्हारे दास दासन की पानी हारे छच्छा चारू होत तेरे समता अपनी

श्री नानक ताको मिले मुरारी श्लोक। चलागे उठ नाम जप निस बासुर आराद, कारा तुझे न व्यापई नानक मिटे उपाद पौड़ी। सज्जा चूरण मिटे तुम्हारो राम नाम स्यो कर व्यवहारो, चूरत चूरत साकत मुआ जाके हृदय होत पौतिया। चर चरेक सम्मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ। चरे काम क्रोध दृष्टाई नानक जाको कृपा गुसाई। श्लोक। रतन करो तुम अनक विद रहत न पावो मीत, जीवत रहो हर हर पजो नानक नाम प्रीत पवड़ी। अहियाया नु दृढ़ सही विनत जात एहेत, गणती घनो न गण सको ऊठ से डारे केत। वो पेखो सो विनत तो जा कौ क्यों करिए संग, वानो क्या बेद सही चित चूठत माया रंग। नानत सोई संत सोए परम ते की चित पिन, अंधकूप ते तय कडो जय हुए सुपरसन। वाके हाथ समराथ ते कारण करने जोग, नानक ते उस्तत करो वाज कियो संजोग। श्लोक। टूटे बंधन जन्म मरण साध तेर सुख पाए, नानक मनो न बिसरे गुण निद गोविंद राय पौड़ी। टैल करो तो एक

साधु संगत तो बसे जो आपन हो दयाल तो है टाहे वह पवन बिन नावे सुख नाहे तहर जाम के दूत ते जो साधु संग समावे बार बार को संत सदके नानक पाप बिना से करके सलोक ठाक न होती तेन दर जय होवे सुप्रसन्न जो जन आप्रभ अपने करे नानक ते तन तन पौड़ी ठठा मनुआ ठाहे नाही जो सगल त्याग एक लेपटाही ठैक ठैक माया संग मुए उआ के कुशल न कत हुए ठांडी परी संता संग बसिया अमृत नाम तह जी रसिया ठाकुर अपने जो जन पाया नानक उआ का मन चित लाया श्लोक दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ

मत जाने, जाको दृष्ट पूरण भगवाने, डेरा नह चल सच साध संग पाया, नानक ते जन ने डोलाया। श्लोक ताहन लगे धर्म राय, कने न कालो बंद, नानक उपरे जप हरी, साध संग सन बंद पौड़ी। टड्डा टूड़त कै फिरे, टूड़न या मन माहे, संग तुहारे प्रभ बसे, बन बन कहा फिराहे। तेरी टाओ साध संग अहम बोध बिकराल, सुख पावो सहजे बसो, दर्शन देख निहाल। तेरी जामे जम मरे, गर्भ जोन दुख पाए, मो मगन लपटत रहे, हा हा आवे जाए। टहत टहत अब टह परे, साध जना सरनाए, दुख के पाहे काटिया, नानक लिए समाए। श्लोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन।

मनी मिटाए जीवत मरे गुरपुरे उपदेश मनुआ जीते हर मिले तै सूत्र नवेश ना को जाने आपनो एक टेक आधार रैन दिन सिमरत रहे सो प्रभु पुरख अपार रेन सगल या मन करे एऊ कर्म कमाए हुक्मे बूझे सदा सुख नानक लिखिया पाए सलोक मर्तन तन अर पौत से प्रभ में लावे मोहे नानक प्रम पौ कटिय चुके धमकी जो है पौड़ी सत्ता दास्य प्रीत कर गुण निद गोविंद राय फल पावे मन बाशते तपत तो हारी जाए त्रास में ते जम पंथ की जास बसे मन नाओ गत पावे मत होए परदास महली पावे ठाओ ताहू संग न तन चले द्रै जो बन ने राज संत संग सिमरत रहो एह तुहारे काज साता कछ न होई है जो ताप निवारे आप प्रतिपाल।

करत जीवन हारा मन मूर्ख क्यों ताहे बिसारा दोष नहीं काहू को मीता माया मोह बंद प्रभु कीता दर्द निवारे जाके आपे नानक तेते गुरमुख त्रापे सलोक तर जीरे इक टेक तू लाहे बेडानी आस नानक नाम ते आई है कारज आवे रास पौड़ी सदा तावत तो मिटे संत संग होई बास तुरते कृपा करो आप तो होए मने परगास तन सच तेउ सच कसाहा हर पूंछी नाम बिसाहा तीरज जस सोबा तन बनया हर हर नाम सरवण जय सुनया गुरमुख जय कटे हर रहे समाही नानक ते तै जन मिली वडाई सलोक नानक नाम नाम जप जपया।

मन तन नाम बसाही नाम निदान गुरमुख जो जपते बिख माया मैं नाओ खपते नन्ना कार ना हो ताता कहो नाम मंत्र गुर दीन ना दीन जा कहो निदान हर अमृत पूरे तै बाजे नानक अनहर तूरे श्लोक पत राखी गुरपार ब्रह्म तज पर पंच मो बेकार नानक सो अराधि अंत ना परावार पौड़ी पप्पा परमत पार न पाया पतत पावने अगम हर राया होत पनीत कोट अपराधु अमृत नाम जपे मेल साधु पर पच त्रो मो मिटनाई जाको राखो आप गोसाई पात साष्टर सिरसो नानक दूसर अवर नको सलोक पाहे काटे मिटे गवन फते पई मन जीत नानक गुरते चित पाई फिरन मिटे नित नीत पौड़ी पप्पा फिरत फिरत तू आया दुर्लभ दे कल जुग में पाया फिर या अवसर चरे नहा था नाम जपो तो कटिये पासा फिर जो आवन जान न होई एक एक जपो जप सोई करो कृपा प्रभ करने हारे मेल लेहू नानक बेचारे श्लोक बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म दीन दयाल गोपाल सुख संपे बो भोग रस नानक सादर वाल पौड़ी बब्बा ब्रह्म जानत ते ब्रह्मा वैष्णो ते गुरमुख सुच धर्मा वीरा आपन बुरा मिटावे ताहू बुरा निकट नहीं आवे बाद्यो आप हो बंदा दोसर धेत आगो को धंदा भात जीत सब रही स्यान जिसे जनावे तो जाने नानक श्लोक पै पंजन अगदुग नास मने अराधे हरे संत संग जय रिदवस्यो नानक तेना प्रमय पौड़ी पब्बा परम मिटावो अपना या संसार सगल है सुपना परमेश्वर नर देवी देवा परमे सिद्ध साधक ब्रह्मेवा परम परम मानो दहकाये दुतर महाबिखम ए माये गुरमुख ब्रह्म पै मो मिटाया नानक ते परम सुख पाया श्लोक माया डोले बहुविधि।

अंत पौड़ी ममा जाहु मर्म पछाना पेड़त साध संग पतियाना दुख सुख उआ कै समत बेचारा नरक स्वर्ग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निरलेपा पूरन कट कट पुरख विसेखा उआ रस में उआहू सुख पाया नानक लेपत नहीं ते माया श्लोक यार मीत सुन साजनो बिन हर छूटन नाहे नानक ते बंधन कटे गुर की चरणी पाए पौड़ी यया जतन करो बो विदिया एक नाम बिन हर तो लो सिदिया याहू जतन कर हर कर होत छुटारा।

निर्गुण नरनाथा मन बच करम जय आप जनाई नानक तय मत प्रगटियाई श्लोक रोस न काहू संग करो आपने आप विचार होए ने माना जगत जन जगत रन दरगत दरगे तो से जे पाए जन गुरमुख राम नाम लेवलाई रहत रहत रह जाहे बेकारा गुरु पूरे के सब दे पारा राते रंग नाम रसमाते नानक हर गुर की नीदाते श्लोक लालच झूठ बिखे बेयाद यादे ही मैं आबास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सुख निवास पौड़ी लला लावो औखद जाहो दुख दर्द तै मिटे खिनाहो नाम औखद जैर देह तावे ताहे रोग सुपने नहीं आवे हर औखद सब कट है पाई गुरपुरे बिना भेद न बनाई गुरपुरे संजम कर दिया नानक तो फिर दुख ना थिया श्लोक वासुदेव सर्वतम।

0: हे ठाकर होदार सरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दीजे नाम दान रखो ही है परोए। श्लोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा ज्ञान पंजन गुरुदेव बंद सहोदरा गुरुदेव दाता हर को हर नाम उपदेशे गुरुदेव मंत्र रोदरा गुरुदेव सात सतमत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मंजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जाप उदरा गुरुदेव संगत प्रभु मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जत लगतरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा। इस लोक आद अंत गौड़ी सुखमनी महला पांचवा श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुरय नमे जुगाद गुरय नमे सतगुर नमे श्री गुरुदेव नमे अस्पति सिमरो सिमर सिमर सुख पावो काल क्लेश माहे मिटावो सिमरो जाप विशंबरे के नाम जपत अगनत अनेकी वेद पुराण सिमरती सुदासर कीने राम नाम एक अखर किनका एक चिस जीव सावे कथा की मैं मागनी नयावे कांखी एक दर सुहारो नानक उन संग मोहे उदारो सुखमय सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ प्रभ के सिमरण गर्भ न बसे प्रभ के सिमरण दुख न जपे न से प्रभ के सिमरत सिमरण काल पर हरे प्रभ के सिमरण दुश्मन रहे प्रभ सिमरत कछु बिघन न लागे प्रभ के सिमरण अनह जन जागे प्रभ के सिमरण पौना व्यापे प्रभ के सिमरण दुख न संतापे प्रभ का सिमरण सार के सांग सर्वणी दान नानक हर रंग प्रभ के सिमरण हृदय सद नौ निज प्रभ के सिमरण ज्ञान ध्यान तत बोध प्रभ के सिमरण जप तप पूजा प्रभ के सिमरण विण से दूजा प्रभ के सिमरण तीते स्नानी प्रभ के सिमरण दरगह मानी प्रभ के सिमरण होय सुपरा प्रभ के सिमरण सुफल परा से सिमराय जनाब सिमराय नानक ताक लागो पाए प्रभ का सिमरण तब ते ऊंचा प्रभ के सिमरण उदरे मूचा प्रभ के सिमरण तृष्णा बुझे प्रभ के सिमरण सब कुछ सूझे प्रभ के सिमरण नाही जंत्राचा प्रभ के सिमरण पूर्णाचा प्रभ के सिमरण मन की मर जाए अमृत नाम हृदय माहे समाये प्रभ जी बसे साध की रचना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमर से तन मानते प्रभ को सिमर से पति मानते प्रभ को सिमर से जन परवान प्रभ को सिमर से पुरख प्रधान प्रभ को सिमर से बे मोहताजे प्रभ को सिमर से सर्व के राजे प्रभ को सिमर से सुखवासी प्रभ को सिमर सदा विनाशी सिमरण ते लागे जन आप दयाला नानक जन की मंगेर वाला प्रभ को सिमर से पर उपकारी प्रभ को सिमर सतन सद बलिहारी प्रभ को सिमर से मुख सुहावे प्रभ को सिमर तेने सुख बिहावे प्रभ को सिमर तेने आत्म जीता प्रभ को सिमर तेने निर्मल रीता प्रभ को सिमर तेने आनंद कनेरे प्रभ को सिमर से हरनेरे संकेर पाते अंतिम जाग नानक सिमरण पूरे पाग प्रभ के सिमरण कार्य पूरे प्रभ के सिमरण कबू न चूरे प्रभ के सिमरण हर गुण बानी प्रभ के सिमरण सहज समानी प्रभ के सिमरण नेह चले आसन प्रभ के सिमरण कमल वेगासन प्रभ के सिमरण अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरण कांतना पार सिमर से जन को जन जन को प्रभु माया नानक तिन जन सरणी पाया हर सिमरण कर भगत प्रगटाए हर सिमरण लग बेद उपाय हर सिमरण पैसे जति दाते हर सिमरण नीचो कुंट जाते हर सिमरण सारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरण क्यों सगले अकारा हर सिमरण मैं आप निरंकारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमत हर सिमरण तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख पंजना कड़कड़ नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अस्पति जय मात पिता सुत मीत न पाई मन उहा नाम तेरे संग सहाई जय महाप्याण दूत जमदल ते केवल नाम संग तेरे चले जय मुस्कल होवे अत पारी हर को नाम खिन माहोदारी अंक पहचरण करत नहीं तरे हर को नाम कोट पाप पर हरे गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सगल सिरस को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी वंदना परे हर का नाम जपत निस्तरे अंत माया अंग तिख न बुझावे हर का नाम जपत अगावे जय मार्ग ए जात अकेला ते हर नाम संग होत सहेला ऐसा नाम मन सदा ते आई है नानक गुरमुख परम गत पाई है शूरत नहीं कोट लख बाही नाम जपत ते पार पराही अनक विघन जय आय संगारे हर का नाम तत्काल उदारे अनक जोन जन मैं मर जाम नमो नाम जपत पावे बसराम। हौ मैला मल कबु न तोवे हर का नाम कोट पब खोवे, ऐसा नाम जपु मन रंग नानक पाई है साध के संग। जय मार की गण जाहे न कोसा हर का नाम उह संग तोसा, जय पैणे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा। जहा पंथ तिर को ना सिवानु हर का नाम तह नाल पहचानु, जय महा प्याण तपत वो काम तर ते हर के नाम की तुम्हें ऊपर शाम। जहा त्रिखा मन तुझु आकर रखे तय नानक हर हर अमृत बरख है। भक्त जना की बरतन नाम संत जना के मन बस राम, हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट। हर जग करत संत दिन रात हर उखद साध कमात, हर जन के हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की न दान। मंतन रंग रति रंगी के नानक जन के बिरत देके, हर का नाम जन को मुक्त जगत हर के नाम जन को तृप्त भगत। हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे न पांग, हर का नाम जन की वड्याई हर के नाम जन सो बापाई। हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नहीं वियोग, जन राता हर नाम के सेवा नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन के मालक जीना हर तन जन को आप प्रभ दीना, हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अवरना जानी। ओत पोत जन हर रचना ते सुन समाध नाम रस महत नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपे हर का भगत प्रगट नहीं छपे, हर की भगत मुक्त वो करे नानक जन संग के ते तरे। पार जात ए हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम, सबके उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर दुख लथा। नाम की महिमा संतरित बसे संत प्रताप दुष्ट सपन से, संत का संग वड पागी पाई है संत की सेवा नाम से आई है। नाम तल कश अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। श्लोक बहुत शास्त्र बहुत सिमरती देखे सर्ब टटोल, पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। अस्परी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान हर शास्त्र सिमरत वख्यान, जोग व्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बन मदे फिरया। अनक प्रकार किए वो जतना पुन दान हो मैं बैर बहु रतना, शरीर कटाई हो मैं कर राती वर्तन एम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपी एक बार, नौ खंड पृथ्वी तिर चिर जीवे महा दास की सर थे वे। अगन माहे होमत परान कनक सब है वर भूमि दान, जवड़ी कर्म करे बो आसन जैन मार्ग संजय मत साधन। निमक निमक कर श्री कटावे तो भी हो मैं मैर न जावे, हर के नाम समसर कुछ नाही नानक गुरमुख नाम जपत कत पाही। मन कामना तीर्थ दे छूटे गर्भ गमान न मंटे हूटे, सोच करे दिन सुवर दात मन की मैर न तनते जात। इस दे ही कबो साधना करे मन ते कबू न बिखे अटरे, जल तो वे बोधे अनीत सुध कहा हुए काशी पीत। मन हार हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उतरे पतित बहुमूच। बहुत अनक जन का तो व्यापे अनक जतन करते सुना तरापे, तेख अनेक अगर नहीं बूझे को फोटो पाव दर गए नहीं चीजे। शूर नाही उब प्याल मोह व्यापे माया जाल, अवर कर तू सगली जमडाने गोविंद भजन वेल बिन तेल नहीं माने। हर का नाम जप दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए, सार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे, जे को अपनी शोभा रे साध सांगे होमे छोरे। जे को जन मरण ते डरे साध जना की सरनी परे, जिस जन को प्रभु दस प्यासा नानक ताके बल बल जैसा। सकल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटी अभिमान, आपस को जो जाने नीचा सो गणी है सब ते ऊंचा। जाका मन होई सगल की रीना हर हर नाम तेने कड़कड़ सीना, मन अपने ते बुरा मिटाना फेके सगल सृष्टि साजना। सुख दुख जन श्रम सम दृष्टिता नानक पाप मन नहीं ले पा, निर्धन को तन तेरो नाओ निथावे को नाओ तेरा थाओ। निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देवो दान, करण करावन हर स्वामी सगल कटा के अंतर जामी। अपनी गतमत जानो आपे अपन संग आप प्रभराते, तुमरी उस्त तुम ते होए नानक अवर न जानते कोई। सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग गुरमत में हिरिया। सगल उदम में उदम फला हर का नाम जपू जी सदा, सगल बाणी में अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बथानी। सगल थान के उत्तम थान नानक जैकट बसे हर नाम। श्लोक निर्गुण आरे आनिया सो प्रभ सदा समाल, जिन की आतिस चीत रख नानक निभे नाल। अस्परी रमैया के गुण चेत पुराने कमन मूर्ते कमन दृष्टानी, जिंतु साज सवार सिगारिया गर्भ अघन में जिने उबारिया। बार बिरसा तुझे प्यारे दूध पर जो बन भोजन सुख सूद, वृत पया उपल तक सैन मुख प्यो बैठ को देन। ए निर्गुण कन कुछ न बुझे बक्स ले तो नानक सीजे। जय प्रसाद ऊपर सुख बसे सूत पात्र मीत बंता संगत जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाव कमला जय प्रसाद भोगे सब रसा सगस नगरी संग सात बसा दीने हस पाव करण नेत्र रचना तिसे त्याग अवर संगरचना ऐसे दोख मुड़ियां दप्यापे नानक काढ़ लेहु प्रव्यापे आदि अंत जो राखन हार तिस्यो प्रीत न करे द्वार जाकी सेवा नवन दपावे तस्यो मुड़ा मन नहीं लावे जो ठाकर सब सदा हजूर है ताको अंधा जानत दूर है जाके टहल पावे डर गए मान तिसे बिसार है मगद जान सदा सदा है पूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग गौड़ी संग्रच साच छोड़ झूठ संग मचे जो शरणा सु असर करवाने जो हो मन सो दूर पुराने छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाई तिस पर हरे चंदा दे पोतारे तोय गर तब प्रीत पसन संग होए अंधक में पतत बिकराल नानक काड़ लेहु प्रभ दयाल पर सतूत पशु की मांस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर तेख अंतर मन माया शक्त नहीं कर कश करे छपाया बाहर ज्ञान से आने स्नान अंतर व्यापे लोभ सुवान अंतर अकन बाहर तन स्वा गल पाथर कैसे तरे था जाके अंतर बसे प्रभाप नानक दे जन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गह देहु उड़ने बहावे कहा बुजारत बुझे डोरा निश्चय है तो समझे पूरा कहा बृहस्पत गावे गुंग जतन करे तो भी सुरपंग कहे पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत ऊहा उस गवन सरकार करुणा में देन बेनती करे नानक तुमरी कृपा करे संग कहाई सुहा बिना चीज जब जो पैरिता से प्रीत बलुआ के गए पीतल बसे अंध के माया रंग रसे दृढ़ कर माने मन प्रतीत काना वे मुड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रो याहू दुख बिहानी कई जन्म नानक राख लेहु आपन कर कर्म तू ठाकर तुम पैर दास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बार्थ तेरे तुमरी कृपा मैं सुख नेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते हुए सुआज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभु छोड़ के लागे आन सो आए नानक कहू नसी जई बेन नावे पत जाए अस्पति दस बस सुगले पासे पावे एक बस करण बिछोट जवावे एक बीना दे दस बी हर ले तो मुड़ा कहो का करे तेरे जिस ठाकर त्यो नाही चारा तातो की जय सदरम सारा जाके मन लागा पर मीठा सर्व सुख ताहो मन बूठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक पहन पाया अगन साहु अपनी दे रास खात पीत बरते अंध औलास अपनी अमान कुछ बाहुल चाहे ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुत इसका विश्वास न होवे जिसकी वस्तु आगे रखे प्रभु की आज्ञा मान है माथे उससे चौगन करे निहाल नानक साहब सदा दयाल अणख पात माया के हित सर पर होवत जाना ने दृष्टि छाया से रंग लावे ओ बिन से ओ मन पछतावे जो दिस सचलन हार लप्त रहे होते अंधधार बिटाउ सो जो लावे ने ताको हाथ ना आवे के मन हर नाम के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तंतन कुटुंब समाया मिथ्या हम है ममता माया मिथ्या राज जोभन तनमाल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथस्य बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया एक हस्ता मिथ्या त्रोभ मोह विमान मिथ्या आप सुपर कर्तगमान असुर पाग साध की शरण नानक जप जप जीव हर के चरण मिथ्या चरण पर निंदा सुन है मिथ्या हस पर दर्भ को रह मिथ्या नेत्र पेश पर तिर पाद मिथ्या रसना पोज अन स्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन ही पर उपकारा मिथ्या वास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सपे सफल दे नानक हर हर नाम लय बिरती साकत की आर्जा साच बिना कह होवत सुचा बिरथा नाम बिना तण्यांध मुख आवतता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बेहाये मेघ बिना जो खेती जाये गोविंद भजन बिन बिरसे सब काम जो के पण के निरार्थ नाम संत संत जन जय कट बस्यो हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ रहते अवर कुछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुख गंडलावत जानन हार प्रभु पर बीन कबार के सना का हो पीन अवर उपदेश से आप न करे आपत जावत जन में मरे जिसके अंतर बसे निरंकार किसकी सीख तरे संसार जो तुम पाने तन प्रभ जाता नानक उन जरन चरण पचाता करो बेनती पार प्रभु जाने अपना किया आपे माने आपे आप करतन वेरा किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा अपाव स्यान सगल तेरा है सब कुछ जाने यतन की रहत जिस पावे तिस लय लड़ लाए थान थान तर रह समाय सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरि श्लोक काम क्रोध अर लोभ मो बिन सजाए अमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद कर देव अस्पति जय प्रसाद श्री अमृत काहे तिसको तिस ठाकर को रखमन माहे जय प्रसाद सुनंद तन लावे तिसको सिमरत परमगत पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मणि अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आहर पैर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याए त्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हडावे तैसे त्याग कतवर लुभावे जय प्रसाद तुझे सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावे जय जय प्रसाद तुझ सबको माने मुखता तो जस रसन बखाने जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब तर गाय मन पावे नानक पत्ते ती कर जावे जय प्रसाद अरो कंचन देही लेव लावो तिस राम स्नेही जय प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सदर श्रीधर ठाके मन सरणी पर ठाकर प्रभ ताके जय प्रसाद तुझको ना पहुँचे मन सा सिमरो प्रभुचे जय प्रसाद पाए दुर्लभ दे नानक ताकी भक्ति करे जय प्रसाद पोखन पहरी जय मन तिस सिमरत को आस्ती जय जय प्रसाद असवहस असवारी मन तिस प्रभ को कबूना बिसारी जय प्रसाद बाग मिलख तना राख पोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बणत बनाई ऊर्स बैठ सद तिसे ते आई जो एक अलख नानक इहा उहा नानक तेरी रखे जय प्रसाद करे पुनबोधान मन आठ तह कर तिसका ध्यान जय प्रसाद उचार बिहारी तिस प्रभ को सतारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर सदा अनुप जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत रहे गुरु प्रसाद नानक जस कहे जय प्रसाद सुने करण्या नाद जय प्रसाद देखे विस्माद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहगे बसना जय प्रसाद हस्कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले जय प्रसाद परमगत पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभ त्याग बरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद प्रगट संसार तिस प्रभ को मोह न मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साच जय रे मन मेरे तू ताको राच जय प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सोनाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा दे हुए प्रगास प्रभ दया ते कमल विकास प्रभ सुपरसान बसे मन सोए प्रभ दया ते मति उत्तम होए सर्वेण दान प्रभ तेरी मया आपे कशना कन हो लाया जित तलावो तित लगे हरनाथ नानक इनके कसना हाथ श्लोक अगम गाद पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मेता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अस्परी साध के संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रगटे सुज्ञान साध के संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब होतन बेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा भरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रमाई समानी साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा पर फूले साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पंचा साध संग होए सब कीरेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग नाका तो तावे साध संग सत मन पावे साध के संग माया ते तेन साध संग नानक प्रभ सुपरसान साध संग दुश्मन सवनीत साध के साधु के संग महापनीत साध संग किस से नहीं बैर साध के संग न बीजा पैर साध के संग नहीं तो मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग नहीं होता साध के संग तजे सब आप आपे जाने साध बड़ाई नानक साध प्रभ बने आई साध के संग न कबूतावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस गोचर रहे साधु के संग अजर सहे साध के संग बसे धनी उचे साधु के संग महल पहुँचे साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब सोले उदारे साध संग साजन मीट कटो मिने सारे साधु के संग सोतन पावे जिस तन ते सबको वरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सफल जन्म साध के संग नहीं कष्टाल दर्शन पेट होत निहाल साध के संग कलोकत हरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग इह उह सहेला साध संग बिखरत हर मेला जो इसे सोई फल पावे साध के संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसे नानक उदरे साध सुन रसे साध के संग सुनो हर नाऊ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मनते बिसरे साध संग सर पर निसरे साध के संग लगे परम मीठा साधु के संग कटकर रीठा साध संग पाई आज्ञाकारी साध संग गत पाई हमारी साध के संग मेरे सब रोग नानक साध पेटे संजोग साधकी महिमा वेद न जाने जेता सुने तेता बखियाने साधकी उपमा तह गुणते दूर साधकी उपमा रही भरपूर साधकी शोभा का नाही अंत साधकी शोभा सदा बेअंत साधकी शोभा उठते उची साधकी शोभा मूछते मूछी साधकी शोभा साध बने आई नानक साध प्रभु भेद ना पाई सलोक मन साचा मत साचा सोए अवर न पेखे एक सुबिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अस्परी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल लेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सुर सब तो सुख ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंग को लगे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी के तीर जेक जो बसा खोदे को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यही गुनाओ नानक जो पाव का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला जैसे मैल ना लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उचते ऊंचा मन अपने है सबसे नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभु आप तरे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी सीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी से कुछ बरा न पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी के ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी के परोपकारो महा ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी के होए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगलो दार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग ब्रह्म ज्ञानी के सत्य प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सब जागत ब्रह्म ज्ञानी अंब त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कहो अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बढ़ जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी के सगल मनवाहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने पेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथा न जाए अदाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि करता ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक उर तारे जो अंतर नाम सर्व मैं देखे भगवान निमख निमख ठाकर नमस्कार नानक ओ पर सगल निस्तार अस्पदी मिथ्या नाही रचना परस मन में प्रीत निरंजन दस प्रत रूप ना पेखे नेतर साधकी टहल संत संग हेत करना सुने काहू की निंदा सबसे जाने आप तो मंदा
1: गुरु स्वाद देखिया पर हरे मन की बात न मन से कर इंद्री जित पंच को से रहे तो नानक को मजे को ऐसा पर्स वैष्णो सो जी सुपर सुपर सन विष्ण की माया ते होए पिन कर्म करत होवे नह कर्म किस वैष्णो का निर्मल कर्म काहू फल की इच्छा नहीं पाछे केवल फल की तिन संग्राचे मंथन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरे नाम जपावे नानक को वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मन से बिन से सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साथ संग पापा मल खोवे तिस भगवती कीमत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मंथन अर्पे विष्ण प्रीत हर के चरण हृदय वसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे तो पंडित जो मन पर बोधे राम नाम आत्म में सोधे राम नाम सार रस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय वसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद पुराण सिमृत बूझे मूल सुखम में जाने स्थूल चौवर ना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवर ना मैं जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, साध संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उतारे, पशु प्रेत मुग्ध पाथर को तारे, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुग किते न पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नगरी आया, दास संतन पाए तिन पाया, सदा नित निक कर जान, सो दास दर गए परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोजी परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसे जुग नानक राम दास, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे, तैसा हर्ख तैसा उसोग, सदा अनंत नहीं वियोग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो बरताए साई जुगत, नानक ओ पुर कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित चित कर रखे तैसा तिन नाओ, आपे कर्म करावन जोग, प्रभु पावे सोई फुन होग, पसरेव आप होय अंत तिरंग, लखे न जा पार ब्रह्म का के रंग, जैसी मध्य तैसा परगास, पार ब्रह्म करता अभिनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पय निहाल, सलोक उत्तज करे अनेक जन, अंत न पारा वार, नानक रचना प्रब्रची, बहुविद अनेक प्रकार, अष्टपदी, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन पर मैं उदासी, कई कोट बेद के सोते, कई कोट तपिस्तर होते, कई कोट आत्म ध्यान तारे, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नव तन नाम से आवे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्व कोहरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया शर्मा, कई कोट पर देश पर महा, जित चित लावो तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट सस्य सुर नस्तर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर सतर, सगल समगरी अपने सुतारे, नानक जिस तिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अर्शास्त्र, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिरजीवे, कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीवे, कई कोट जकिनर पिशाच, कई कोट पूत प्रेत मुसुकर मिर्गाच, सबते नेरे सबों ते दूर, नानक आप अल्पत रह परपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बहु जुन्नी फिरे, कई कोट बैठ तीखा है, कई कोट काले थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाना तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ के हाथ है, कई कोट पय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिल्यो प्रभ अविनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होय आप सुप्रसन्न, नानक तेजन सदा तन तन, कई कोट खारी खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होय अवतार, कई जुग की नो विस्तार, कई बार पसरो पासार, सदा सदा एक एकंकार, कई कोट की ने बहुपात, प्रभते होय प्रह्मा समात, ताका अंत न जाने कोय, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म परगास, कई कोट तत के बेते, सदा निहारे एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर पय सद सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गावे, आत्मन रस सुख सहज समावे, अपने जन को साथ साथ मारे, नानक कोई परमेश्वर के प्यारे, सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहारने जल थल महियल सोए अष्टपदी करन करावन करने जोग ज्योतिष पावे सोई होग खिमे थाप उठापन हारा अंत नहीं किछ पारा वारा हुक्मे तार अदर हावे हुक्मे उपजे हुक्म समावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक समय रह समाई प्रभ पावे मानक पावे प्रभ पावे का पाथर तरावे प्रभ पावे बिन सास ते राखे प्रभ पावे ता हर गुण पाखे प्रभ पावे ता पतित उदारे आप करे आपन विचारे दुहा सिरिया का आप स्वामी खेले बिकसे अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहो मानक ते क्या हो आवे ज्योतिष पावे सोई करावे इसके हाथ हुए ता सब किछले ज्योतिष पावे सोई करे अनजानत लिखिया मैं रचे जे जानत आपना बचे परमे पूला दह दिस पावे निमख मां चार कुंठ फिर आवे कर कृपा जिस अपनी भक्त दे नानक तेजन ना मिले खिमे नीच कीट को राज पार ब्रह्म ग्रीव निवाज जाका दृष्ट कछ न आवे तिस तत्काल दह दिस भगतावे जाको अपनी करे बख्शीस ताका लेखा न गने जगदीश जियो पिण सब तिसकी रास कट कट पूरन ब्रह्म प्रगास अपनी बणत आप बनाई नानक जीवे देख वडाई इसका बल ना ही इस हाथ कर्म करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो ज्योतिष पावे सोई फुंतियो कभू ऊंच नीच मैं बसे कभू सोग हर खरंग हसे कभू निंद चिंद व्यवहार कभू ऊब आकाश पयाल कभू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कभू नृत्य करे बहुपात कभू सोए रहे दिन रात कभू महाक्रोध विकराल कभू सर्व की होतरवाल कभू होए बहे बड़ राजा कभू पे खारी नीच का साजा कभू अपकीरत में आवे कभू पला पला कहावे ज्यों प्रभ राखे तिव ही रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कभू होए पंडित करे बखान कभू मोन तारी लावे ध्यान कभू तटी रथ स्नान कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कभू कीट पर हस्त पतंग होए जिया अनेक जोन परमे परमिया नाना रूप क्यों स्वागी दिखावे ज्यों प्रभ पावे तिवे नचावे ज्योतिष पावे सोई होए नानक दूजा अवर न कोए कभू साध संगत एह पावे उस स्थान ते बहुर न आवे अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंतन नाम रते इक रंग सदा वसे पार ब्रह्म के संग ज्यों जल महजल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ के सद कुर्बान सलोक सुखी वसे मस्कीनिया आप निवार तले वडे वडे हंकारियां नानक गर्व गले अष्टपदी जिसके अंत राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुआन जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत आपस को कर्म वत कहावे जन्म मरे बोह जून परमावे तन पूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानक इहा मुक्ता गय सुख पावे धनवंता होए कर गरवावे त्रिस मान के संग न जावे बहु लश्कर मानक ऊपर करे आस पल पीतर ताका होए बिनास सबते आप जाने बलवंत खिमे होए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी तन बनाए तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सोजन नानक दर गय परवान कोट कर्म करे होतारे शरम पावे सगले बिरथारे अनित तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म नहीं डरवे हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो पला कहावे तिसे पलाई निकट न आवे सर्व की रेन जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझसे कछ होए तब इस को सुख नाही कोए जब एह जाने मैं किछ करता तब लग गर्व जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी नीत तब लग निचल नाही चीत जब लग मोह मगन सग माए तब लग तरम राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे सहस खटे लख को उतावे कृपनावे माया पाछे पावे अनित भोग बखिया के करे नह तिकतावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजय, सुपन मनोरथ तीर्थे सब काजय, नाम रंग सर्व सुख होए, वटभागी किसे प्राप्त होए। करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करन करावन करने हार, इसके हाथ कहाँ बिचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए, जो किच कीनो सो अपने रंग, सबते दूर सबहु ते के संग। बूझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक, मरे न बिनसे आवे न जाए, नानक सद ही रह समाए। आप उपदेशे समझे आप, आपे रचिया सबके साथ, आप कीनो अपन विस्तार, सब किछ उसका हो करने हार। उससे भिन्न कहो किछ होए, थान थनंतर एक कै सोए। अपने चरिताप करने हार, कौतक करे रंग अपार, मन मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किने वखियानी, सच सच सच सब कीना, कोट मदे किने विरले चीना, भला भला भला तेरा रूप, सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी सरवण बखाणी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम नाम जपे नानक मन प्रीत। श्लोक संत सरन जो जन परै, सोजन उदरन हार, संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। अष्टपदी संत के दुखन आर जा कटै, संत के दुखन जनते नहीं छुटै, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक मह पाए। संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन शोभाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान परसट होए। संत कृपाल कृपा जे करे, नानक सत्संग निंदक पी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन कागजो लवे, संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन तिरगे जोन किरमाए, संत के दुखन तृष्णा मह जलै, संत के दुखन सब को शलै। संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पाए ता ओए पीगत पाए। संत का निंदक महाताई, संत का निंदक हिन टिकन न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सदा रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग। संत की निंदा दोख मह दोख, नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख, संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किसे का नहीं मित, संत के दोखी को दान लागे, संत के दोखी को सब त्याग, संत का दोखी महाहंकारी, संत का दोखी सदा भिकारी, संत का दोखी जन्म मरे, संत की दुखना सुख ते टरे, संत के दोखी को नाही थाओ, नानक संत पावे ता ले मिलाए। संत का दोखी अदबीच से टूटे, संत का दोखी किते काज न पहुँचे, संत के दोखी को उद्यान पर माई है, संत का दोखी उजड़ पाई है, संत का दोखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मित की लोथा, संत के दोखी की जड़ किछ ना है, ना अपन बीज आपे ही खाहे। संत के दोखी को अवर न राखन हार, नानक संत पावे ता ले उबार, संत का दोखी उम्बल लाए, ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दोखी भूखा नहीं राजै, ज्यो पावक इधर नहीं त्रापै, संत का दोखी छुटे अकेला, ज्यो बुआर तिल खात्मा दुहेला, संत का दोखी तरम ते रहत, संत का दोखी सद मिथ्या कहत, संत किरत निंदक का तुर ही पया, नानक ज्योतिष पावै सोई थिया। संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दोखी को दरगे मिले सजाए, संत का दोखी सदा सहकाई है, संत का दोखी न मरे न जीवाई है, संत के दोखी की पूजे न आसा, संत का दोखी उचले निराशा, संत के दोख न तिष्टे कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया किस न मेटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए। सब का तिसके हो करने हार, सदा सदा तिस न तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करे करो दिन रात, तिसे त्यावो सास गिरास, सब किछ वर्ते तिसका किया, जैसा करे तैसा को किया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, वटभागी नानक जन से सलोक। तजो सियानप सुरजनो, सिमरो हर हर राय, एक हास हर मन रखो, नानक दुख परम पो जाए। अष्टपदी मानस की टेक दिव थी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अगाए, बहुत न कृष्णा लागे आए, मारे राखे एको आप, मानस के कुछ नाही हाथ। तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए। उस्तत मन में कर्ण रंकार, कर्मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सोहेला कर ले जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साज संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म सर्वन हर कथा, हर दरगे नानक उजल मथा। वटभागी तेजन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, से तन मंत गणी संसार। मंतन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एक एक एको एक एक पछाने, इतुत कियो सोजी जाने, नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिन्हें निरंजन जान्या। गुर प्रसाद आपन आप सूजै, तिसकी जानो तृष्णा बूजै, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते वर ओ हर जन रहत। अंदिन कीर्तन केवल वखान, गृहस्थ मैं सोई निर्बान, एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिय जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन पूख, नानक तिसे न लागे दुख। जिसको हर प्रभ मनचित आवै, सो संत सहेला नहीं डुलावै, जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक को किससे डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कारज में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तब सब बुझिया, जब देखूं तब सब किच मूल, नानक सो सुखम सोई असूल। नह किस जन्मे नह किस मरे, आपन चलित आप ही करे, आवन जावन दिष्ट अनदिष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल मह आप, अनित जुग रच थाप उथाप, अविनाशी नाही किच खंड, तारन तार रहो ब्रह्मांड। अलख अपे पुरख प्रताप, आप जपाए तन नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो शोभा बंत, सगल संसार उदरे तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदारन, प्रभ के सेवक दुख विसारन। आपे मेल लय कृपाल, गुर का सब जप पय निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनो कृपा करे बट पागे, नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख का उत्तम कर मान। जो किस करे सो प्रभ के रंग, सदा सदा वसे हर संग, सहज सुभाए होवे सो होए, करने हार पछाने सोए, प्रभ का किया जन मीत लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिसते उपजे तिस महासमाए, ओए सुख निदान उन्हों बन आए, आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान। श्लोक। सर्व कला भरपूर प्रभ, दिवसा जानन हार, जाके सिमरन उदरी है, नानक तिस पलिहार। अष्टपदी। टूटी गांडन हार गोपाल, सर्व जिया आपे प्रतिपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस ते बिरथा कोई नाहे।

जो मंदिर को थामे थमण त्यों गुर का शब्द मने अस्थमण जो पाखान नाव चढ़तर है प्राणी गुर चरण लग निस्तर है जो अंधकार दीपक प्रगास गुरदर्शन देख मन होए विकास जो महा उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बाछो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काहे बिल्लाई है पूर्व लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख सब देवन हार अवर त्याग तू तिसे चितार जो किस करे सोई सुखमान पूला काहे फिरे अजान कौन बस आई तेरे संग लप रहे हो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पत से पी कर जाहे जिस बखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तजब मान ले मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाद खेप संत संचाल अवर त्याग दिखया जंजाल तन तन कहे सब कोए मुख उज्जल हर दरगह सोए एह व्यापार बिरला व्यापार है नानक ताके सब बलिहार है चरण साल के तोय तो पियो अर्प साल को अपना जियो साध की तूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वट भागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए अनेक बिघन ते साधु राखे हर गुण गाये अमृत रस चाखे उठ गही संत दर आया सर्व सुख नानक तह पाया मृत को जीवालन हार भूखे को देवत आधार सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखिका लहना पाहे सब किस इसका हो करने जोग तिस दिन दूसर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सबते उच्च निर्मल ए करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल किया जाके मन गुर की प्रतीत तिस दिन आवे हर प्रभ चीत भगत पग सुनिए तहलोए जाके हृदय एको होए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सतमुख कहत साची दे साचा कार सच वरते साचा पासार पार ब्रह्मजिन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग किछ त्रह गुण ते प्रपिन तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभु मन में राख मानक की तू प्रीत त्याग तिसते परे नाही किछ कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बीना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंद साथ तेरे की चरनी पाओ नानक कै मन ए अनराओ मनसा पूरन सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र ना जाने होर अंध रूप मंगल सज जाके सर्व थोक सुनिए कर ताके राज मह राज जोग मह जोगी तप मह तपीसर गह सत मह भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मितना है सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म की जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान त्यान जिंदे जनदास नाम से आवे से तह गुण मैं जाको परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेह करे एक रंग नाना बिद की नो विस्थार प्रभु बनासी एक अंकार नाना चलित करे खिन माहे पूर रहो पूरन सब ठाए नाना बिद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगल अकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन सरवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सोजन गत पाए रूप सत जा का सत स्थान पुरुष सत केवल प्रदान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब महासमानी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब फली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत्य जन जाके हृदय प्रवेश सत नित बुझे जय कोए नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिर तो करने हार अब न बूझ करत भी चार।

करते की मितना जाने किया। नानक सो तिस पावै सोबर नानक जो तिस पावै सोबर पिया, बिस्मन बिस्म पय बिस्माद, जिन बुझिया तिस आया स्वाद, प्रभ के रंग राजन रह, गुर के बचन पदारथ लह, ओदा ते दो काटन हार, जाके संग तरह संसार, जन का सेवक सोबट भागी, जन के संग एक लिव लागी, गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुरु प्रसाद नानक फल पावे, सलोक आद सच गाद सच, है पी सच नानक होसी पी सच, अष्टपदी चरण सत सत परसन हार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखन हार, नाम सत सत त्यावन हार, आप सत सत सवतारी, आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभक्ता, सुत सत सत ज संता, भुजन हार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जिन मान्या, कर्म करावन तिन मूल पछान्या, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिन तिस मन प्रगटाया, पैसे निरपो होए बसाना, जिससे उपजा तिस मह समाना, बस्त महले बस्त गदाई, चाको पिन न कहना जाई, बुझे बुझन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग, सेवक को प्रभ पालन हारा, सेवक की राखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ तारे, नानक सो सेवक सास सास समारे, अपने जन का पर्दा टाके, अपने सेवक की सर पर राखे, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत राखे, ताकि गतमित कोई न लाखे, प्रभु के सेवक को न पहुँचे, प्रभु के सेवक ऊँचते ऊँचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, निकी कीरी महकल राख है, पसम करे लश्कर को लाख है, जिसका सासना काटत आप, ताको राख देकर हाथ, मानस जतन करत बहु पात, तिसके कर्तव्य बैठे जात, मारे न राखे अवर न कोए, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जब नानक प्रभ अलख बिडानी, बारम बार बार प्रभ जपिय, पी अमृत मन तन तरपिय, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किस अवर नाही दृष्ट आया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम रसो जन तृप्तान, मन तन नाम है नाम समान, उठत बैठत सोवत नाम, कह नानक जन कैसत काम, बोलो जस जेवा दिन रात, प्रभ अपने जन की निदात, करे भगतात्म के चाये, प्रभ अपने सो रहे समाये, जो हुआ हो वसो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखान्यो, तिसका गुण कह एक न जान्यो, आठ पहर प्रभ बसे हजूर है, कहो नानक से ही जन पूरे, मन मेरे तिन की ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सोजन सर्व ठोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर सब पाप मिटावे, अवस्यानप सगली छाड़, तिसजन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा, नानक तिसजन कै पूजे सद पैरा, सलोक सतपुरख जिन जानेया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग सिख उदरे, नानक हर गुण गाओ, अष्टपदी सतगुर सिखी करे प्रतिपाल, सेव कह गुर सदा दयाल, सिखी गुर दुरमत मलहिरे, गुर बचनी हर नाम उचरे, सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हाटे, सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वट भागी हे, सतगुर सिख का हल पल सवारे, नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे, गुर के गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन मह सहे, आपस को कर कछना जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे, मन बेचे सतगुर के पास, ते सेवक के कारज रास, सेवा करत हुए निहकामी, जिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस विश्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर को बल जाओ, सर्व नाम जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म, एके आप नहीं कछ परम, सह स्यानप लय न जाइए, नानक ऐसा गुरबट भागी पाइए, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परस चंदन निर्मल रीत, पेटक संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे,
सुनकर बचन करना धन्य है। मन संतोष खातम पति आने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत इस पेखे हो संद गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक किस भावे किस लय मिलाए। जेहबा एक उस्तत अनेक सतपुरख पूरन विवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई। अनेक भगत बंदन नित करे चरण कमल हृदय समरै सद बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एह रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सोए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग न लेप मन में राखे हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे नानक पर मोह दुख तहते नासे तप्त महा ठांड वरताई अंध पया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेश है साधु के पूर्ण उपदेश है। पौचुका निरपौ होय बसे सगल ब्याध मंत्रे खै नसे जिसका सातन कृपा तारी सात संचप नाम मुरारी थित पाई चुके परम गवन सुन नानक हर जस सरवन। निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला ताजन सगली मोही अपने चित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर्व निरंतर एको सोए। ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगाश साध कै संग रच रचना अपनी कलतारी अनेक बार नानक बलिहारी सलोक। साधना चाले बिन भजन दिख्या सगली सार हर हर नाम कमावना नानक ए संसार अष्टपदी। संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर पाव सब मीत बिसारो चरण कमल विद में उतारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवथ। एतन संचो होवो भगवंत संत जना कै निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुन टुट सावै सो तन हर सेवा ते पावै। जिस सुख को नित बाछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा पज हर की सरनी। अनेको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवकद लाए सर्व निदान महर नाम निदान जप नानक दर गय परवान मन पर बोधे हर के नाए दैद सावत आवे ठाए ताको बिघन न लागे कोए जाके हृदय वसे हर सोए। कलताती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भोबिन से पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रगास। तितकर जाए बसे अविनाशी कोह नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जनम नरेसो काचो काचा आवागवन हिते प्रभ सेव आप त्याग सरन गुरदेव। यों रतन जन्म का होए उदार हर हर सिमर प्राण उदार निको पावन छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचार हर की भगत करो मन लाए मन पंचत नानक फल पाए। संगन चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूरख मना सुत मीत कटुम्बर बनता इनते कहो तुम कवन सनाथा। राज रंग माया बिस्तार इनते कहो कवन छुटकार अशक तीरथ सवारी झूठा डम झूठ पा सारी जिंदी है तिस पूजे न बिगाना ना विसार नानक पछताना। गुर की मत तू ले आने भगत बिना बहु डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे। आप जपो अपना नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार पूछत हर को नाओ सहज सुबाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतरस मैल बिंस जाए हो मैं बिख फैल। हो चिंत बसे सुख नाल सास ग्रासन नाम सुमाल सार स्यानप सगली मना सास संग पावे सचतना हर पूंजी सच करो बिहार इहा दुख इहा सुख दरगे जयकार सर्व निरंतर एको देख कह नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको साला एक सिमर एको मन आह। एकस के गुण गाओ अनंत मंतन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर रहो पूर रहो प्रव्याप। अनेक विस्तार एक ते पए एक अराध पराछत गए मंतन अंतर एक प्रभराता गुरुप्रसाद नानक एक जाता सलोक। फित फित प्रभ आया परया तौसर नाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी। जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगियो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो।
चरण कमल से लागे प्रीत, भगत करो प्रभु की नितनीत, एक कोट एक को आधार, नानक मांगे नाम प्रभु सार, प्रभु की दृष्ट महासुख होए, हरस पावे बिरला कोए, जिन चाख्या से जन तृप्तान, पूरन पुरख नहीं डोलान, सुबर परे प्रेम रस रंग, उपजे चाव साध के संग, परे सर नाम सब त्याग, अंतर प्रगास अंदिन लिव लाग, बट भागी जप्या सब सोए।

तिलक जान लख लख धर्म विचारे वामन तदन ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे वामन तदन रत्न पाए वामन तदन इंद्र अंदरासन बैठे देवत्यां दर नाले वामन तदन सिर समाधि अंदर वामन तदन साध विचारे वामन तदन जति सती संतोखी वामन तदन ही करारे वामन तदन पंडित पानी।

न जाती रचना जे नर चाई अरंगी रंगी पापी कर कर जिनसी माया जे न पाई कर कर देखे कीता अपना ज्योति जीव दे आई ज्योतिष भावे सोई करती

हमारे दीन बंद जो सुन के हमता तुम हो पूरी चतुर्दश संता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजी अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सगल काल का किया समासा जवन का योगी सेव कियो वेदराज ब्रह्मा जुतियो जवन का सब लोक सवारा नमस्कार है तहे हमारा जवन का सब जस बनायो देव दैन जशन पुजायो आद अंत एक है अवतारा आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार के सी को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो घड़ घड़ के अंतर की जानत कलेबरे की पीर प्रशांत कीती ते कुंचर असूला सपर कृपा दृढ़ कर पुला संतन दुख पाए के दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की तीर्थ का नय घड़ घड़ के पढ़ पढ़।

जेते बदन सिर सब धारे आप अपनी बुद्ध चारे तुम सभी तेरे निरालम जानत भेद भेद अरियालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद संभ साका मूढ़ चात भेदा जाको भेद न पावत वेदा साको कृपा निर्मांत महामूढ़ कष्ट न जानत महादेव को कह सदा शिव निरंकार का कीमत न देव आप अपनी बुद्ध जेती वर्णत तन पेन तेती तुमरा लसा न जय पुसारा केवल सजा प्रथम।

कौ फूल राजा हवाई बैठा कौ संत भयो संतर इकट्ठा सगरी से चंपो आद गाछ रूप चंपो अब रक्षा मेरी तुम करो सिख अबार असिख संग हो द्वितीय ते अथवा तद पाता सकल मलेच करो रण पाता जे अब कोई कम सरनी परे जन के दोष दुख है मरे पुरख जम पग परे त्योहारे जन के तुम संकर सब तारे जो कल को एक बार क्या है ताके कारण इतने आए है रचा हुई कहीं सब काला दोस्त अरेस्ट करे सब काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो ताके साथ तन कुमोहार हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दोस्त क्या शब सके न कोई एक बार जब तुम्हें संभारा कार पास से काहे अंबारा जिनर नाम से आरोपा दाद दोस्त दोख से रहा खड़ग केत में शरण तिहारी आपा गए हो कुमारी सर्व थर्म हो सुहाई।

तू सदा रहो हर नाल, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब सारना संगीकार हो करे तेरा, कार्ज सब सवारना सबना गला सबना सुखमानी, शोक मनो वसारे कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब किसे, जिस देह सो पावे सदा सिर तसला तेरी, नाम मन वसावे नाम जन कह मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर सान सुख।

जाको हर रंग लागो इस जुग में है। सो कहियत है सूरा आत्म जिणय सगल वस ताकै।

गुरमुख गुरु मन पावे जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी तिस सत गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नानक तोड़ मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपे अवरे नाम जपावे पौड़ी जो तुद सच ते आई दे से विरले थोड़ी जो मन चित एक अराध दे तिन की बरकत काहे असंख करोड़ी सुदनो सब ते आई दी से थाए पए जो साहेब लोड़े जो बिन सतगुर से वेखा दे पैन दे ते मुए जम मुए मर जम मैं कोड़े ओए हाजर मिठा बोल दे बाहर विस्कड मुख कोले मन खोटे दए विछोड़े सलोक महला चौथा मल जूई परया नीला काला खितोलड़ा तिन वे मुख वेख मुखे नो पाया पास न दे कोई ब्रह्म जगत मैं गूढ़ पहे सग भी मल लाए मन मुख आया पर आई जो निंदा चुगली नो वे मुख करके भेजया ओथे भी मुहा काला दुहा वे मुखादा कराया तड़ सुनिया सबत जगत विच पाई वे मुख सन नफरे पौली पौदी पाहा होए के उठ कर आया अगे संगति कुड़मी वे मुख रलना ना मिले ता वोटी पति जी फिर आन कर पाया हलत पलत दो वे गए नित भूखा फुके ते हाया तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओ सच दया आप कराया जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो साचे मर सचाया ए अखर तिन्ने आखिया जिन जगत सब उपाया महला चौथा साहेब जिसका नंगा भूखा होवे तिसका नफर कैथो रज खाए जे साहेब कह करवत होवे सो नफरे हथ आवे अनहोदी कैथो पाए जिस दी सेवा कीती फिर लेखा मंगी है सा सेवा औखी होए नानक सेवा करे हर गुर सफल दर्शन की फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी नानक विचारे संत जन चार वेद कहंदे भगत मुखे ते बोल दे से वचन होवंदे प्रगट पहारा जापदा सब लोक सुनंदे सुख ना पाए ने मुगद नर संत नाल कहंदे ओए लोचन ओना गुने नो ओए अहंकार चढ़ंदे ओए विचारे क्या करे जा पाग तुर मंदे जो मारे तिन पार ब्रह्म ते किसे न संदे वैर करे निर्वैर नाल धर्म न्याय पचंदे जो जो जो संत सरापिया से फिरे पवंदे पेड़ू मुंडा हू कटिया तिस डाल सुकंदे सलोक महला चौथा अंतर हर गुरु त्याई दा वड्डी वड्याई तुस दित्ती पूरे सतगुर कटे नाही एक तिल किसे दी कटाई सच साहेब सतगुर कै वल है ता चकचक मरे सब लोकाई निंदका के मुह काले करे हर करते आप वधाई ज्यो ज्यो निंदक निंद करे त्यो त्यो नित नित चढ़े सवाई जन नानक हर आराध्या तन पैरी आन सब पाई महला चौथा सतगुर तेती गणत जे रखे हलत पलत सब तिसका गाया नित चहिए पाई चगू सुटे चखदा चखदा चढ़ पाया नित अपाव करे माया तन कारण अगला तन भी उड़ गया क्या ओ खोटे क्या ओ खावे जिस अंदर सहसा दुख पाया निर्वैरे नाल जे वैर रचाए सब पाप जगते का तिन सिर लाया उस अगे पिछे टोई नहीं जिस अंदर निंदा मोहे अंब पाया जे सोने नो ओ हथ पाए ता खेहु सेत रल गया जे गुर की सरणी फिर ओ आवे ता पिछले अवगन भगत लया जन नानक अणगन नाम ते आया हर सिमरत किल विख पाप गया पौड़ी सोहे सच्चा सच तू सबदा दो ऊपर तू दे बाण जो तुद सच त्याई दे सच सेवन सचे तेरा मान ओना अंदर सच मुख उजले सच बोलन तेरे सच तान ते भगत जिनी गुरमुख सलाही है सच शब्द निशान सच जे सचे सेव दे तिन वारी सद कुरबान सलोक महला चौथा तुर मारे पूरे सतगुर से हुन सतगुर मारे जे मेलन नो बहुत तेर लोची है ना दे मिरन कर तारे सत संगत टोई न लहन विच संगत गुर विचारे कोई जाए मिले हुन ओना नो तिस मारे जम जंदारे गुर बाबे फिटके से फिटे गुर अंगद कीते कुटियारे गुर तीजी पीड़ी विचारिया क्या हथ ए ना विचारे गुर चौथी पीड़ी टिकिया तिन निंदक दुस्त सब तारे कोई पुत सिख सेवा करे सतगुर की तिस कार्ज सब सवारी जो इच्छे सो फल पाए सी पुत तन लखमी खड़ मेले हरने सारे सबने दान सतगुर विच
जिस अंदर हर उतारे सो पाए पूरा सतगुर जिस लिखिया लिख ले लारे जन नानक मांगे तोड़ तैना जो सतगुर जो गुरसिख मित प्यारे महला चौथा जिनको आप दे वड़ियाई जगत भी आपे आन तिन को पैरी पाए डरिए ताजे किस आप दुखी से सब करता अपनी कला वदाए देखो पाई ए अखाड़ा हर प्रीतम सचे का जिन आपे अपने जोर सब आन निवाए अपने भगता की रख करे हर स्वामी निंदका दोषा के मुल बोकाल कराए सतगुर की वड़ियाई नित चढ़े सवाई हर कीरत भगत नित आप कराए अनदिन नाम जपो गुर सिखो हर करता सतगुर कर वसाई सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो हर करता आप मोह कढ़ाए गुर सिखा के मोह उजल करे जय हर प्यारा गुर का जयकार संसार सब तकराए जन नानक हर का दास है हर दासन की हर पैज रखाए पौड़ी तू सच

बखस महला तीजा मनमुख अहंकारी महल न जाने खिन आगे खिन पीछे सदा बुलाइए महल न आवे क्यों कर डर गए तीजे सतगुर कब महल विरला जाने सदा रहे कर जोड़ अपनी कृपा करे हर मेरा नानक लए बहोड़ पौड़ी सा सेवा की सफल है जित सतगुर का मन मने जा सतगुर का मन मनया ता पाप समर्पण उपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने जिन सतगुर का पाना मनया तिन चढ़ी चवगन वने ए चाल निराली गुरमुखी दुरदीखिया सुन मन पिने चलोक महला तीजा जिन गुरु गोपिया अपना तिस ठौर न ठाओ हलत पलत दोवे गए दर गए नाही थाओ ओ वेला हाथ न आवई फिर सतगुर लगी पाए सतगुर की गणते तुसी है दुखे दुख विहाय सतगुर पुरख निर्वैर है आप लए जिस लाए नानक दर्शन जिना विखा लेना तिना दरगा लए छड़ाए महला तीजा मनमुख ज्ञान दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मतहारी कोड़ तो सत ओ पाप कमावे क्या ओ सुने क्या आँख सुनावे अन्ना बोले खोए उजड़ पाए मन मुख अंधा आवे जाए बिन सतगुर पेटे थाए न पाए नानक पुरब लिखिया कमाए पौड़ी जिनके चित कठोर है से बहे न सतगुर पास उथे सच वरतदा कुड़ियारा चित उदास उए वल शल कर चतकड़ दे सिर जाए बहे कुड़ियारा पास विच सच्चे कूड़ न गड़ई मन वेख को निर्जास कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले सचियार सिख बैठे गुर पास सतगुर पास सलोक महला पंजवा रह

आप अमे न तब सोच खे न करदा पच मुआ विच देई पखे सच्चे साहिब मारिया कौन ते सुनो रखे नानक प्रभु शरणागति जो पुरख रखे सलोक महला पंजवा नरक कुरबो दुख तने अकीर्त कना का थान तिन प्रभु मारे नानका होय मोहे हराम महला पंजवा अवखद सबे कीर्तन निंदक का दारू नाही आप पुलाए नानका पच

आया तेन हर जना चख सादी दिथा पार ब्रह्म जिस लिखिया तिस मन ते सैव उठा एक निरंजन रव रहिया पाओ दया कुठा हर नानक मंगे जोड़ कर प्रभ देवे तुठा सलोक महला पंचवा जा चढ़ी सा सार जो जा चंदी हे कड़ो गाली दया विकार नानक तनी वे होनिया महला पंचवा ने जे वेदा मन पछाणू विरले थियो जोड़न हारा संत नानक पादो पदरो पौड़ी सोई सेवे जियड़े दाता बस संद किलवत सब विनाश होन सिमरत गोविंद हर मार्ग साधु दसिया जपिए गुरमंत माया स्वाद सब फेकिया हर मन पवंद त्याए नानक परमेसरे जिन्नी दित्ती जेंद सलोक महला पंजवा वत लगी सच्चे नाम की जो भी जे सो खाए किसे प्राप्त नानका जिसनो लिखिया आए महला पंजवा मंगनाता सच एक जस तुस देवे आप चित खादे मन तृप्ति है नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग मैं से खटे जिन हर तन रास दुतिया पाओ न जानती सच्चे दी आस नेचल एक उसरे विया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसर तिस बिरथा सास कंठ लाए जिन रखिया नानक बल जास सलोक महला पंचवा पार ब्रह्म फरमाया मीहो वठ बुठा सहज सबाए अन तन बहुत उपजया पृथ्वी रजी तप्तर अगाए सदा सदा गुणे उचरे दुख दालद गया बेलाए पुरब लिखिया पाया मिलिया तिसैर जाए पार ब्रह्म जे वालिया नानक तिसे ते आए महला पंचवा जीवन पद निर्वाण एक सिमरी है दूजे नाही जाए जन जाए किन बिद तीरी है बिठा सब संसार सुखना नाम बिन तन तन होती चार जाने एक जन रंग रूप सद रस बाद कै करे परानिया जिसे पुलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावई नानक सरण द्वार जे तुद पवाही पौड़ी जमन मरण ना तेन को जो हर लड़ लागे जीवत से परवान होए हर कीर्तन जागे साध संग जन पाया से ही बड़ पागे नाम विसरिय त्रिग जीवना तूटे कछ तागे नानक तोड़ पनीत साध लख कोट पेरागे सलोक महला पंचवा सरण सुवन्नी खड़ रतन जड़ावी हर प्रेम पुरख मन बठा सभे काज सुह लड़े थिये गुर नानक सतगुर तूठा महला पंचवा फिर दी दे दिसा जल पर्वत बन राए जिथे दिठा मृत को इल बैठी आए पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़ी है सो सच कमावो नेड़े देखो पार ब्रह्म एक नाम ते आवो होए सगल की रेणुका हर संग समावो दुख न देई किसे मत जी पत स्यो कर जावो पतत पुनीत करता पुरख नानक सनावो सलोक दोहा महला पंचवा एक से एक जे साजन की मैं किया सर्व कला समरथ जियो हमारा थानी है हर मन तन संदड़ी वत महला पंजवा जेकर गहे प्यारड़े तुद ना छोड़े मूल हर छोड़न से दुर्जना पड़े दो जत कै सूल पौड़ी हर सबने दान कर जिस दे कर हर करे तू होवे जब जब जीवे संत जन पापा मल खोवे चरण कमल हृदय वसे संकट सब खोवे गुरपुरा जिस पेटिया मर जन्म न रोवे प्रभ दर्श प्यास नानक कनी कृपा कर देवे सलोक दखना महला पंजवा पूरी परम वाए पर मोहब्बत हिक तू जिथो वही जाए थिताऊ मौज दो सोई महला पंजवा चढ़के कोड़ कोड़े कुंदे पकड़

पावनी से हस्त पवेता अड़सठ तीर्थ मजना सब पन तेन केता संसार सागर ते उदरे दिखिया गढ़ जेता नानक लड़ लायो धारियन द सेवा सेव अमिता सलोक महला पंजमा तंदड़े कोलार चित न आवे हे कड़ो नानक से तन फुटान जना स्याई वेसरे महला पंजमा प्रेतो की तोन देवता तिन करणे हारे सब सिख उबारन प्रभ काज सवारे निंदक पकड़ पछाड़न झूठे दरबारे नानक का प्रभ वड़ा है आपे काज सवारे पौड़ी प्रभ बेअंत किच अंत नहीं सब ते सह करना अगमा गोचर साहेबो जिया का परना हस दे पर प्रतिपाल दा पर पोखन करना मेहरबान बखसान आप जप सच है करना जो तद पावे सो पला नानक दास सरना सलोक महला पंजवा तेना पुखा ना का रही जिसदा प्रभ है सोए नानक चरणी लग गया है उदरे सब कोए महला पंजवा जाचक मंगे नित राम नित नाम साहेब करे कबूल नानक परमेश्वर जजमान तिस पूख ना मूल पौड़ी मन रत्ता गोविंद संग सब पोज सच पोजन जोड़े प्रीत लगी हर नाम स्यो ए हसी तोड़े राज मिलख खुशी है कनी त्याए मुख ना मोड़े ताड़ी दर प्रभ मंगना दर कदे ना छोड़े नानक मन तन चाओ ए नित प्रभ को लोड़े सुध कीचे राग गौड़ी भगता की वाणी एक ओंकार सतगुर सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद गौड़ी गोवारेरी श्री कबीर जियो के चौपदे अब मोहे जलत राम जल पाया राम उदक तन जलत बुझाया रहाओ मरण मारण कारण बन जाइए जो जल बिन भगवंत ना पाइए जे पावक सुर नर है जारे राम उदक जन जल तो बारे पव सागर सुख सागर माही पीव रहे जल निखटत नाही तै कबीर पज सरंग पानी राम उदक मेरी तिहा तिखा बुझानी गौड़ी कबीर जी माधो जल की प्यास न जाए जल में अगन उठी अधिकाई रहाओ तू जल निद हो जल का मीन जल में रहो जल बिन थीन तू किंजर हो सोटा

0: है तू सतगर हो नौत तन चेला कह कबीर मिले अंत की बेला गौड़ी कबीर की। जब हम एको एक कर जाने तब लोगो कहे दुख माने हम अब तय अपनी पत खोई हमरे खोज परो मत कोई रहाओ हम मंदे मंदे मन माही साज पात का हो त्यो नाही आप अपत ताकी नाही लाज जब जान हो गए तो
1: उग्र हो गए तो प्रसाद प्रवान सर्व त्याग पज केवल राम गौड़ी कबीर जी नग्न फत जो पाइये जोग बन का मृग मुक्त सब हो क्या नांगे क्या बस चाम जब नहीं चीन सतमराम अनाओ मूंड मंडाए जो सद पाई मुक्ति पे न कहिया गाई मूंड मंडाए जो सद पाई मुक्ति पे न गैया काई बिंद राख जो तरिए पाई खुसरे क्यों ना परमगत पाई कौ कबीर सुनो नर पाई राम नाम बिन किनगत पाई गौड़ी कबीर जी संध्या प्रात स्नान कराही जो पै दादर पानी माही जो पै राम नाम रत नाही सब धर्म राय कह जाही रहाओ कया रत मारू पर चाही जिनको दया सुपने पी नाही चार चरण कहे बहु आगर साधु सुख पावे कल सागर कौ कबीर बहु कहे करीजे सर्प छोट मां रस पीजे कबीर जी कौड़ी क्या जब क्या तप क्या व्रत पूजा जाके हृदय पाओ है दूजा रे जन मन मा दो क्यों लाइये चित्राई ना चतर पूज पाइये रहो पर हर लोभ हर लोकाचार पर हर काम क्रोध अहंकार कर्म करत बदे अंगमेव मिल पाथर की कर ही सेव कौ कबीर भक्त कर पाया पोले पाए मिले रघुराया गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती ब्रह्म बेनते सब उत्पाती कौ रे पंडित बामन कब के होए बामन कह कह जन मत खोए रहो जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो पान बाट कहे नहीं आया तुम कत ब्राह्मण हम भक्त सूत हम कत लोहु तुम कत दूत ओ कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कही अत है हमारे गौड़ी कबीर जी अंधकार सो कबे न सोई है राजा रंग दो में रोई है जो पे रस न राम न कहबो उजपत बिनसे रोक चरबो राओ जा देखिए तरवर की छाया प्रभ गए प्राण गए कौका की माया जा जंती में दियो समाना मुए मर्म को का कर जाना हंसा सरवर का शरीर राम रसायन पियो रे कबीर गौड़ी कबीर जी जोत की जात जात की ज्योति तित लागे कंचुआ फल मोती कौन सो कर जो निरपो कहिए आओ पज जाए अभय हो रहिए रहो तार तीर्थ नहीं मन पति आए चार चार रहे और जाए पाप पुण दो एक समान निजकार पार्श सजो गुणयान कबीर निर्गुण नाम नरोस इस पर चाहे पर चरोस गौड़ी कबीर जी जो जन परमत परम जाना बातनी ही बैकुंठ सुमाना ना जाना बैकुंठ काही जान जान सब कहे काही राव कैन कामन मैं पति आई है तो मन माने जा दे पहामे गई है जब लग मन बैकुंठ किया तब लग होए नैन चरण वास कौ कबीर कहिए काहे साध संगत बैकुंठ आहे गौड़ी कबीर जी पूजे निवजे निवज समाई नैने देखते जग जाई लाज न मरो कहो कर मेरा अंत की बार नहीं कचेरा रहो अंक जतन कर काया पाली मरती बार यगन संग जाली चोवा चंदन मर्दन अंगा सोतन जले काट के संगा कौ कबीर सुनो रे गुनिया बिनसे को रूप देखे सब दुनिया गौड़ी कबीर जी और मुए क्यार सो करीजे तो कीजे जय अपन जीजे मैं न मरो मरबो संसारा आ मोहे मिलो है चिया मनहारा रहो आ देही परमल महकंदा तांसक बिसरे परमानंदा कूटा एक पंच पनहारी टूटी लाज परे मतहारी कौ कबीर एक बुद्ध बिचारी ना कूटा ना पनहारी गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनक जन्म किए भोरंगा ऐसे कर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए रहो जोगी जति तभी ब्रह्मचारी कबहू राजा छत्रपद कबहू पेखारी साक्त मरे सम सब जीवे राम रसायन रसना पीवे कौ कबीर प्रभु कृपा की जय हार परे अपूरा दी जय गौड़ी कबीर जी नायरला गौड़ी कबीर जी नारला लिखिया महला पंजवा ऐसो चढ़दे क्यों कबीर दद के भोले परोले नीर रहाओ हरी अंगूरी गदहा चरे नित नित ओठा सही गे मरे माता पैसा अमोहा जाए खुद गुर चरे रसा तल जाए कौ कबीर प्रगट पई खेड लेले को चुंगे नित भेड राम नव तुमत प्रगटी आई कौ कबीर गुर सो जी पाई गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यो जल छोड़ बार अपयो मीना पूर्व जन्म हो तब काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजिले बना समत पई थोरी रहाओ सगल जन्म सर पुरी गुआया मरती बार मघर उठाया बहुत वर्ष तब की आकाशी मन पया मगर की बासी काशी मगर सम विचारी पोषी भक्त कैसे उतर सुपारी कौ गौर गज से वो सब को जाने मुआ कबीर अंत श्री रामय गौड़ी कबीर जी चोआ चंदन मर्दन अंगा सोतल जले काट कै संगा ये तन तन की कवन बडाई धरन और परे उरवार न जाई राव राज्य सोवेदन करे काम एकन ले न हर को नाम आदोर मुख खयत भोर मरती बार कसबन जो चोर गुरमत रस रस हर गुण गावे रामे राम राम सुख पावे कृपा करके नाम दृढ़ाई हर हर बात संगंद बसाई ऐत कबीर चेतरे अंदा सत राम झूठा सब धंधा गौड़ी कबीर जी ते पदे चार तुके जमते उल्ट्यो पै है राम दुख बन से सोखियो बसराम बैरी उल्ट पै है मीता साक्त उल्ट सो जान पै चीता अमोय सर्ब कुशल कर मानिया सांत पई जब गोविंद जानिया राव तनमय होती कोटो पात उठ पई सुख है समात आप शाने आपे आप रोग न बापे तीनों ताप अमन उठ सनातन हुआ तब जाने जब दीप हुआ कौ कबीर सुख से समावो आप न डरो न अब डरावो गौड़ी कबीर जी पिंड मुए जो के कर जाता शब्द अतीत अनाह डराता ये राम जानिया तने पछानिया जो गूंगे सा कर मन मानिया ऐसा ज्ञान कते बनवारी मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी रहाओ सो गुर करो जब और न करना सो पद रहो जब और न रवना सो ध्यान करो जब और न धरना ऐसे मरो जब और न मरना उल्टी गंगा जमन मलावो बिंजल संग मन में नहावो लोचा संसर ए ब्योहारा तत विचार क्या और बिचारा अब तेज बाय पृथ्वी आकाशा ऐसी रेत रहो हर पासा ऐसी रहत रहो हर पासा कह कबीर निरंजन चाहो चित कर जाओ जब और न आवो गौड़ी कबीर जी ते पदे कंचन से पाइये नहीं तोल मन दे राम लिया है मोल आ मोय राम अपना कर जान्या सहज भाई मेरा मन मान्या रहाओ ब्रह्मे कद कद अंत न पाया राम भक्त बैठे करे आया कौ कबीर चंचल मत त्यागी केवल राम भक्त निज भागी गौड़ी कबीर जी जे मरने सब जगत त्रासया सो मरना गो सबत प्रगासया अब ऐसे मरो मरन मन मान्या मर मर जा तेर जिन राम न जान्या रहाओ मरनो मरन कहे सब कोई सजे मरे अमर होए सोई कौ कबीर मन पया आनंदा गया परमरिया परमानंदा गौड़ी कबीर जी कतने ठोर मूल कत लावो खोजत तनमय ठोर न पावो लागी होय सो जाने पीर राम भक्त अनिहाले पीर रहाओ एक पाए देखो सब नारी क्या जानो से कौन प्यारी कौ कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हरता को मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके अर्था ठाकुर पाई मुक्त अनंत पगारण जाई अब कौ राम परोसा तोरा तब काहू का कमल न हो रहाओ तीन लोग जाके है पार सो काहे न करे प्रतपार ओ कबीर एक बुद्ध विचारी क्या बस जो सिख दे मैं तारी गौड़ी कबीर जी बिन सत सती हो कैसे नार पंडित देखो हृदय विचार प्रीत बना कैसे बदे स्नेह जब लग रस तब लग नहीं नेह रहाओ सां सत करे जी अपने सोर मैये को मिले न सपने तन में तन ग्रह सौ शरीर सोई सागन कहे कबीर गौड़ी कबीर जी ਵਿਖਿਆ ਵਿਆਪਿਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਵਿਖਿਆ ਲੈ ਡੂਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰਨਰ ਨਾਮ ਚੌਕ ਕਤ ਬੋੜੀ ਹਰਸੋਂ ਤੋੜ ਵਿਖਿਆ ਸੰਗ ਜੋੜੀ ਰਹਾਉ ਸੁਰਨਰ ਦਾਦੇ ਲਾਗੀ ਆਗ ਨਿਕਟ ਨੀਰ ਪਸ ਤੀਰਥ ਨਾ ਝਾਗ ਚੇਤਤ ਚੇਤਤ ਨਿਕਸ਼ੋ ਨੀਰ ਸੋਜਲ ਨਿਰਮਲ ਕਸ਼ਟ ਕਬੀਰ ਲੋੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੇ ਕੁਲ ਭੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਪਈ ਮੈਂ ਤਾਰੀ ਜੇ ਨਾ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ ਜਨਮਤ ਕਸ ਨਾ ਮੋਹ ਅਪਰਾਧੀ ਰਹੋ ਮੁੱਚ ਮੁੱਚ ਗਰਭ ਗਏ ਕੀਨ ਬਚਿਆ ਬੁੱਢ ਭੁਜ ਰੂਪ ਜੀਵੇ ਜਗ ਮਜਿਆ ਓ ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਨਾ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਕੂਚ ਕਰੂਪ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੋਜਾਂ ਲੈ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਓ ਕਣਕੇ ਸੰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਓ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੇ ਰਹਾਓ ਏ ਕਟ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਤਿਨਕੀ ਪਗ ਪੰਕਜ ਹਮ ਧੂਰ ਜਾ ਚਲਾ ਮਤ ਕਾ ਧੀਰ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਮੇ ਕਬੀਰ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗਗਨ ਸਾਲ ਚੂਏ ਮੇਰੀ ਭਾਠੀ ਸੰਚ ਮਹਾਰਾ ਸਤਾਨ ਭਇਆ ਕਾਠੀ ਵਾਕੋ ਕਹੀਏ ਸਹਿਜ ਮਤਵਾਰਾ ਪੀਪ ਰਾਮ ਰਸ ਧਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ ਰਹਾਓ ਸਹਿਜ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੋ ਮਲਿਆਈ ਆਨੰਦ ਮਾਤੇ ਆਂਦਨ ਜਾਈ ਚੀਨਤ ਚੀ ਨਿਰੰਜਨ ਲਾਇਆ ਕਉ ਕਬੀਰ ਤੋ ਅਨੁਭਵ ਪਾਇਆ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਵ ਮਨੇ ਬਿਆਪੀ ਮਨੇ ਮਾਰ ਕਵਣ ਸਿੱਖ ਸਾਪੀ ਕਵਣ ਸੁਮਨ ਜੋ ਮਨ ਮਾਰੇ ਮਨ ਕੋ ਮਾਰ ਕਹੋ ਕਿਸ ਤਾਰੇ ਰਹਾਓ ਮਨ ਅੰਤਰ ਬੋਲੇ ਸਭ ਕੋਈ ਮਨ ਮਾਰੇ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਕਉ ਕਬੀਰ ਜੋ ਜਾਣੇ ਭਿਓ ਮਨ ਮਸੂਦਨ ਤ੍ਰੇ ਪਵਣ ਦਿਓ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਓਏ ਜੋ ਦੀਸੇ ਅੰਬਰ ਤਾਰੇ ਕਿਨਵੇ ਚੀਤੇ ਚੀਤਨ ਹਾਰੇ ਕੌਰੇ ਪਣਤਮ ਬੁਰਕਾ ਚੋ ਲਾਗਾ ਬੂਝੇ ਬੂਝਣ ਹਸ ਭਾਗਾ ਰਹਾਓ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਕਹਿ ਉਜਿਆਰਾ ਸਮੇ ਪਸਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰਾ ਕਉ ਕਬੀਰ ਜਾਣੇਗਾ ਸੋਏ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਮੁਖ ਰਾਮੇ ਹੋਏ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੇਦ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਸਾਕਲ ਜੇਵਰੀ ਲੈ ਹੈ ਆਈ ਆਪਣ ਨਗਰ ਆਪ ਤੇ ਵਰਦਿਆ ਮੋਕੇ ਫਾਦ ਕਾਲ ਸਰ ਸੰਦਿਆ ਰਹਾਓ ਕਟੀ ਨਾ ਕਟੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਈ ਸਾ ਸਾਪਨ ਹੋਏ ਜਗ ਕੋ ਖਾਈ ਹਮ ਦੇਖਤੇ ਨ ਸਭ ਜਗ ਲੁਟਿਆ ਕਉ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਕਹਿ ਛੁਟਿਆ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰ ਲਗਾਮ ਕਰਾਵੋ ਸਗਤੇ ਜੀਨ ਗਗਨ ਦੌਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਾਵੜੇ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੇ ਰਹਾਓ ਚੱਲੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤੁਝੇ ਲੈ ਤਾਰੋ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਚਾਪ ਕੁਮਾਰੋ ਕੈਦ ਕਬੀਰ ਭਲੇ ਅਸਵਾਰਾ ਦੇਖ ਸੇਵ ਰਹੇ ਇਹ ਨਿਰਾਰਾ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੇ ਮੁਖ ਪੰਚੋ ਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇਖ ਤਲੂਕ ਟਲਾਏ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਘਾਟੋ ਮੇਰਾ ਅਗਨ ਦਹਿ ਅਰ ਗਰਭ ਵਸੇਰਾ ਰਹਾਓ ਕਾਇਮ ਬਗੂਤੀ ਬਹੁਤ ਪਾਤੀ ਕੋ ਜਾਰੇ ਕੋ ਗੜ ਲੈ ਮਾਟੀ ਕਉ ਕਬੀਰ ਹਰ ਚਰਨ ਦਿਖਾਵੋ ਪਾਛੇ ਤੇ ਜਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਿਠਾਵੋ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪੇ ਭਾਵ ਕੇ ਆਪੇ ਪਵਨਾ ਜਾਰੇ ਖਸੂ ਤਰਾ ਕੇ ਕਮਨਾ ਰਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਤਰਨ ਜੀ ਰਾਮ ਜਪਤ ਤਨ ਜਰ ਕੀ ਨਾ ਜਾਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਪਰਿਆ ਸਮਾਏ ਰਹਾਓ ਕਾਕੋ ਜਰੇ ਕਾਹੇ ਹੋਏ ਆਨ ਨਟਮਟ ਖੇਲੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨ ਕਉ ਕਬੀਰ ਅਖਰ ਗਏ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ ਖਸਮ ਤਨ ਲੇਗਾ ਰਾਤ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੋ ਪਦੇ ਨਾਮੇ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਝੂਠ ਸਮਾਇਆ ਕੈਸੇ ਜੀਵਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰਾ ਜਬ ਨਾ ਹੋਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਧਾਰਾ ਰਹਾਓ ਕਉ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੋਜੋ ਅਸਮਾਨ ਰਾਮ ਸਮਾਨ ਨਾ ਦੇਖੋ ਆਨ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੇ ਸਿਰ ਰਾਚਰਾ ਚ ਬਾਦ ਸਭਾਗ ਸਸਰ ਚੁੰਚ ਸਵਾਰੇ ਕਾਗ ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੋ ਕਿਆ ਗੁਰਬਈਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਇਹ ਨਾਂਦੜਿਆ ਰਹਾਓ ਕੈਦ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਵਾਲ ਹੋਏਗੇ ਤੇਰੇ ਗੌੜੀ ਦੁਆਰੇ ਰੀ ਕੇ ਪਦੇ ਪੈਂਤੀਸ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੁਆਰੇ ਰੀ ਅਸਪਦੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਸੋ ਸੁਖ ਹਮ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਭਾਵੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਆਸਾ ਕੈਸੇ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਸਾ ਰਹੋ ਇਹ ਸੁਖ ਤੇ ਸਿਰ ਬ੍ਰਹਮਡਰਾਨਾ ਸੋ ਸੁਖ ਹਮੋ ਸਾਚ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸਨਕਾਦਕ ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਸੇਖਾ ਤਿਨਮੀ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ ਤਨ ਛੂਟੇ ਮਨ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਜੈ ਦਿਓ ਨਾਮਾ ਭਗਤ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇਨ ਹੀ ਹੈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਮ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਕਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਤਿਨ ਸਾਜ ਪਛਾਨਾ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਾ ਕਾਈ ਹੁਕਮੇ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਭੂ ਸਮਾਈ ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਦੇਹੋ ਇਸ ਮਨ ਲੀਨ ਭਏ ਸੁਖ ਦੇਹੋ ਜੀਓ ਏਕ ਹਰ ਸਭ ਸ੍ਰੀ ਰਾ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਰਵ ਰਹੇ ਕਬੀਰਾ ਗੌੜੀ ਦੁਆਰੇ ਰੀ ਐਨ ਸੇਕ ਨਾਮ ਜੋ ਜਾਗੇ ਕੇਤਕ ਸਿੱਧ ਭਏ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਰਹਾਓ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਮਨਹਾਰੇ ਇਕ ਨਾਮ ਕਲਪ ਤਰ ਤਾਰੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰੇ ਸੋਹੇ ਨਾਨਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਛਾਨਾ ਗੌੜੀ ਪੀ ਸੋਠ ਪੀ
2: रे जी नो राज्य लाज कोई नाही, हर सज कत काहू कही जाई रहो, जा कोठा करी उचा होई, सो जन पर कर जात न सोही, सो सह भरिया भरपूर, सदा संग नाही हर दूर, कवला चरण शरण है जाके, कौ जन का नाही करता के, सब को कहे दास की बाता, सो समरथ निज पत है दाता, कह कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय और न होई, काको पूज पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो, आठा सौठ गौरी लाई, हर के ब्यो कैसे जियो मेरी माई रहो, कौन का पुरुष कौन की नारी, ताकत लियो श्री बिचारी, कह कबीर ठग छो मन मान्या, गई ठगौरी ठग पहचान्या, अब मौको पे राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहो, साधु संग तिलियो रलाए, पंच दो तेलियो छिदाए, अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास के अरसलीनो अपना, सतगुर की नो परोपकार, कालीन सागर संसार, चरण कमल से लागी प्रीत, गोविंद बसे नता नित चीत, माया तत्व जय अंगार, मन संतोख नाम आधार, जब तलपुर रहे प्रस्वामी, जब पेखो तत्यंत जामी, अपनी भक्त्या पी दृढ़ाई, पूर्व वृक्ष मिलया मेरे पाई, किस कृपा करे तिस पूर्ण साज, कबीर को स्वामी गृह बनवास, जल सूतक थल सूतक सूतक उपत होई, जन्मे सूतक मोए फुन सूतक सूतक परज भगोई, कौरे पंडिया कौन पविता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता रहो, नैनो सूतक बहनो सूतक सूतक श्रम नहीं होई, ऊर्त बैर्त सूतक लाग सूतक परे रसोई, फासन की वे सब खू जाने, चूटन की एक कोई, कह कबीर अमृत बिचारे सुख सुखने न होई, गौड़ी चगरा एक नबेरो राम, जाओ तो अपने सन सो काम राव, यो मन बड़ा के जा सो मन मान्या, राम बड़ा कह राम में जान्या, ब्रह्मा बड़ा के जा सो पाया, वेद बड़ा के जहां से आया, कह कबीर हो पै उदास, तीर्थ बड़ा के अर का दास, राग गौड़ी।

मोह बले डा टूटा तुसना शान परी तर उपर दुरमत पांडा फूटा। आंधी पाछे जो जल बिरखे ते तेरा जन पीना कह कबीर मन पह परदासा उदे पान जब सीना। गौड़ी चेती एक ओंकार सतगुर प्रसाद अर्जा सुने न हर गुण गावे बत नहीं असमान गरावे। ऐसे लोगों से क्या कहिए जो प्रभु किए भगते बाज संते सदा डराने रहिए। राव आपना दे चुरू पर पानी ये निंदे जे गंगा यानी बैर से उसक टुकता चाले आव गए और नू काले। छड़क चर्चा न जाने ब्रह्मा हूँ को कहो न माने आप गए और नू खोवे आप लगाए मंदिर में सोवे। अवर्ण हसा भय काने कनकौ दे कबीर जाने राग गौड़ी बैरागण कबीर जी एक ओंकार सदगुर प्रसाद। जीत पित्र न माने कहो मुए श्राद्ध कराही पितर भी बकरे कहो क्या पावे कहुआ कुकुर खाही। मौको कुशल बतावो कोई कुशल कुशल करते जग भिनसे कुशल भी कैसे हो ही रहा हो माटी के कर देवी देवा ते श्यागे जियो देही। ऐसे पितर हमारे कहिए आपन क्या न ले ही सरजियो काटे निर्जियो पूजे अंत काल को पारी राम नाम की जप नहीं जानी पै डूबे संसारी। देवी देवा पूजे डोले पार ब्रह्म नहीं जाना कैद कबीर कुल नहीं चेत्या बिख्या सुन बताना। गौड़ी जीवत मरे मरे फण जीवे ऐसे सुन समाया अंजन माए निरंजन रहिए बहु न पल जल पाया। मेरे राम ऐसा खीर भलोइये गुरमत मन को इन बेद अमृत पी हो रहो। कौर कह बाण बजर कल चेती प्रगड़ पद प्रगासा सक अंधेर जेवड़ी परम चूका ने चल कर सगल अंधेर गेवड़ी परम चूका ने चल सब कर बासा। तिन बिन थाने तिन कुछ ढाइये ये जग बेद्या भाई दस बूढ़ी पवन चलावे जो रही लिवलाई। उन मन मन में सुन समाना दुखदा दुरमत भागी कौ कबीर अन पौ एक देख्या राम नाम लिवलागी। गौड़ी बैरागण ते पदे उलटत पवन चगर खड़ भेदे सुरत सोने अंदरागी आवन है मरे न जीवे दास सोच बैरागी। मेरे मन मानी उठ समाना गुर प्रसाद कुल पही अवरे नातड़ता बेगाना रहो। निवरे दूर दूर फुन निवरे जन जैसा कर मान्या अलौती का जैसे भया बुरे डा जन किया तिन जानिया तेरी निर्गुण कथा का ऐसे।

काम क्रोध भय जगाती मन संग बटवारा पंचात मलदान नबेरे टांडा उतरियो पारा कैद कबीर सुनो रे संतो अबैसी बने आई घाटी चरत बैल कथा कहा चलो गौण छिटकाई गौड़ी पंच पदा।

बार कोई गावे को सुने हर नाम चित लाए, कहो कबीर संसार नहीं संत परम गत पाए। गौड़ी जेते जतन करते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे, कर्म तर्म करते बो संजम आंग बोध मन जारियो रे। सास ग्रास को दातो ठाकर सो क्यों मनो बसारियो रे, हीरा लाल मोल जन्म है कवि बल्ले हारियो रे। आओ तसना त्रसा फूक भ्रम लागी हृदय नहीं विचारियो रे, उन मत माने रे मन माही गुर का सब न तारियो रे। स्वाद लुप्त इंद्री रस प्रे मद रस लय पुकारियो रे, कर्म पाव संतन संगा ने काटलो धारियो रे। ताप्त जो जन प्रम था के अब दो कर हम हारियो रे, कह कबीर गुर मिल तुम्हारा प्रेम भक्त निस्तारियो रे। गौड़ी काल भूत की अपनी मन बोरा रे।

सिख कौम का महान जरनैल सरदार हरी सिंह नलुआ दुश्मन तीना गोलियां नाल जख्मी होया जमराव के किले विच पिया। हाजर सिंह धूरमियां नूं मुखातिब करके सिख कौम के नाम अंतम संदेश दिन का इउं फरमा रहा है।

गुरु रामदास जी की पावन नगरी जिसकी ज़ियारत करने विच सब धर्मां दे लोग फखर समझते हैं, जिस दे पाक सरोवर विच नहा के कागां तो हंस ते कोड़ी कंचन हो जाते हैं, रहमतां दे सोमे बख्शां दे भंडार सोधी सुल्तान, जिस दे दर तो अमीर ते गरीब सब झोलियां भरा के मुड़ते हैं, कोई भी निराशा नहीं जाता। उस दर की शोभा श्री कुलदीप माणक जी पेश कर रहे हैं।

श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सर्वंश दान के कारण में पढ़ के दुनिया के दानी दंग हो जाते हैं। सर्व कला समरथ से सारे गुणा संपन्न कलगी धार के अनोखे से अदुत्ती दान बारे इउं जिक्र किया जाता है।

हे भाई, इस सदा कायम रहने वाला हर नाम धन गुरु की शरण पैके हासिल करो। परमात्मा वालों वरती रजन अपने भले वास्ते जान।

हिंदुस्तानी सरदार की तारा तीन सौ बवंजा है। गवर्नमेंट चलाने के सारे हक अपने हाथ विच ले ले। इस षडयंत्र उसका सब तो बड़ा सलाहकार भी उसका छोटा पुत्र संजय गांधी जिसने

0: जून की रात 11 बजे देख करी सानू मिलिट्री कैंप विच ले जाया गया। साडे पहुंचन तो थोड़े समय बाद ही गोलियां चलन की आवाज सुनाई दिती। असी सारे वाहिगुरु वाहिगुरु करन लग पए। असी सारे एहो सोच रहे सी कि कंपलैक्स अंदर तां बच गया सी पर हुण नहीं बचते। पर दूजे दिन 7 जून सवेरे पता लगा कि 2 नौजवान कंध टप रहे सन, उन्हां नूं गोलियां मार के मार दिता गया है।
1: श्रोतियों मिले सूत्रा अनुसार भावे बहुत कार्यकारी सेवादार अपने बचाव के हर वसीले की भाल विच सन, पर पंच करदी कुछ गिनती दे मजीबड़े इस सर्व उच्चतम अते जान नालों वी प्यारे पवित्र अस्थान की राखी लई तणे बैठे सन। इन्हां दा आगू सिखां विच प्रमाणित सेवादार जरनैल सिंह खालसा ने गुरु भाणे नूं मनदे सी 6 जून नूं शहीदी प्राप्त कीती।
0: सरवण करो ए श्रद्धांजलि उस बिछड़ियां रूहां नूं

आके एक बेनती है जेड़े भेटा देंदे प्रेम नाल। एक बारी दवान लग्या कि एक ने पंज दा ठोलू मारिया साडे ढोलकी वाले मत्थे ते लग्गा जी, कई दिन ठीक नहीं होया। बेनती है प्रेम नाल भाई।

मैं तन अवगण इतरे खसम ना फेरे चित महला पहला हौ बलिहारी तिन को सिफत जिना दैवात सब राती सुहागणी एक मैं दुहागण रात पौड़ी दर मंगत जाचै दान हर दीजै कृपा कर गुरमुख लेहो मलाए जन पावै नाम हर अनहद शब्द बजाए ज्योति ज्योत धर हृदय हर गुण गाए जय जय शब्द हर जग मह वरतै आप हर सेती प्रीत कर श्लोक महला पहला जिनी न पायो प्रेम रस कंत न पायो साव सुनिए घर का पौण

कुमलानी कुआर कन्या जैसे करत सिंगारा क्यों रलिया मन बाज पतारा काग उड़ावत भुजा पेरा।

आए कठन दूत जम लेना, क्या तह खटिया कहां गवाया, चलो सताप दीवान बुलाया, चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया, रहाओ करो अरदास गाम किस बाकी, लेओ नबेर आज की राती, किस पी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गजारो, साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा, ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले, जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया, कहो कबीर तेई नर भूले, खसम बसार माटी संग रूले, सूही कबीर जीओ ललत, थाके नैन श्रवण सुन थाके, थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना थाक समाया, बावरे तैं ज्ञान विचार ना पाया, बिरथा जन्म गवाया रहाओ, तब लग प्राणी तिसे सरेव हो, जब लग घट मह सासा, जे घट जाए ता भाव ना जासी, हर के चरण निवासा, जिस को शब्द बसावे अंतर, चूकै तिसह प्यासा, हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै, मन जिन ताले पासा, जो जन जान भजह अबगत को, तिनका कछु ना

मोह को नीत दसै पटवारी, ऊपर पुजा कर मैं गुर पह पुकारिया, इन्हों लिया उभारी रहाओ। नौ ढांडी दस मुनसफ धाव है, रईयत बसन ना देही, डोरी पूरी मापह नाही, बहु बिस्टाला लेही। बहत्तर घर एक पुरख समाया, उन दिया नाम लखाई, धर्म राय का दफ्तर सोदिया, बाकी रिजम ना काई।

संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया, सो रिजक अंबरावे। सब घट भीतर हाट चलावे।

निदान दीवाने चेत सनाही दुनिया पन खाने सूही ऊचे मंदर साल सोई एक घरी फुन रहन ना होई इह तन ऐसा जैसे घास की ताटी जल गयो घास रल गयो माटी रहाओ भाई बंद कटंब सहेरा ओए पी लागे काड सवेरा घर की नार उरह तन लागी ओह तो भूत भूत कर भागी

बेड़ा बंद ना सक्यो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब तरन दुहेला, हाथ ना लाए कुसुम्बड़

मूर्ख कहन ना जाई, तेरे गुण गावा दे बुझाई। जैसे सच मैं रहूं रजाई रहाउ, जो किस हुआ सब किस तुझते। तेरी सब असनाई तेरा अंत ना जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या चतराई। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना।

तहां अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहु हमारी जल थल मही अल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदिर छावा तेरे तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासी।

शब्द मोए मन मन ते मारिया ठाक रहे मन साचे तारिया अवर न सूझे गुर को वारिया नानक नाम रते निसतारिया बिलावल महला पहला गुरबचनी मन सहज ध्यानी हर कै रंग रत्ता मन मानी मन मुख परम भुले बोरानी हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछानी बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर बिन जियरा रह ना सके खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ मेरा प्रभ बिसर हो मरो दुखाली सास ग्रास जपो अपने हर भाली सद बैरागन हर नाम निहाली अब जाने गुरमुख हर नाली अकथ कथा कही है गुर भाई प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए बिन गुर करनी क्या कार कमाई हो मैं मेत चले गुर शब्द समाए मनमुख विछड़े खोटी रास गुरमुख नाम मिले साबास हर कृपा धारी दासन दास जन नानक हर नाम धन रास बिलावल महा।

प्रसाद। त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़े अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कतंब सहत सिउ, जित हुण खसम ना पाया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे, अहला जन्म गवाया। दूजा भाउ ना देही लिव लागण, जिन हर के चरण वसारी, जग जीवन दा

ऐसा एक तेरा खेल बनिया है, सब मह एक समाना, सतगुर परचै हर नाम समाना, जिस कर्म हो है सो सतगुर पाई, अन दिन लागे सहज ध्याना रहाउ, क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अभमाना, जब अपनी जोत खिंच है तू

रमन बसत नानक होत निहाल, कहां तुच्छ प्रभु बुद्ध हमारी, वर्णन सकै महिमा जो तुम्हारी। हम न

चरह शास्त्र खट पिंग किरण चढ़ जाए अंधलक बदरो सुन जो काल कृपा कराए ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी कुदरत कवन हमारी

ਵਿਵਸਥਾ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪਨ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਲਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਨਾ ਛਾਪ ਤਨਾਸਵੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੰਗੋ ਰਾਮ ਕੇ ਸਭ ਥੋਕ ਮਨ ਕਿਉਂ ਜਾਚਕ ਸੁਰਮ ਪਈਏ ਸਭ ਕੇ ਸਿਮਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਰਹਾ ਦੁਖੇ ਮੁੰਜਨ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਦ ਪੁਕਾਰ ਥੋਕ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਸੇਵੇ ਸਚ ਪਾਈਏ ਦੇ ਜੀਵੋ ਸੁਹੇਲੇ ਲੋਕ ਆਨ ਅਚਾਰ ਬਹੁ ਹਾਰ ਹੈ ਜੇਤੇ ਦਿਨ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਫੋਕ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪੈ ਸਾਕੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਬਿਨ ਸੇ ਸੋਕ ਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੂਜੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏ ਗੁਰਪਤਨੀ ਪ੍ਰਭੇ ਲਾਗੇ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਰਾਹੋ ਮਹਾ ਕਲੋਲ ਬੁਝੋ ਮਾਇਆ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੇ ਜਪ ਜੀਵਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਦਾਸ ਕੀ ਪਹਲ ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਰਾਜ ਸੁਖ ਰਸ ਸਦ ਖੁਸ਼ਿਆ ਕੀਰਤਨ ਜਪ ਨਾਮ ਜਿਸ ਕੇ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਰਤੇ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਸਨਾਤਨੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਨ ਕੀ ਕੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਰ ਨਿੰਦਕ ਟਿਕਣ ਨ ਪਾਵਨ ਮੂਲੇ ਉਦੋ ਕਹੇ ਬਿਕਾਰ ਰਹਾਉ ਜੈ ਜੈ ਦੇਖੇ ਤਹਿ ਤੈ ਸੁਆਮੀ ਕੋਹੇ ਨ ਪੁੱਛਣ ਹਾਰ ਜੋ ਜੋ ਕਰੇ ਅਵਗਿਆ ਜਨ ਕੀ ਹੋਏ ਗਿਆ ਤਤਛਾਰ ਕਰਨ ਹਾਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਰਖੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਨਿੰਦਕ ਕਾਢੇ ਮਾਰ ਸਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਪੜਤਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਰਨ ਸਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੁਖ ਪੰਜਨਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਦੇਵੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾਰਿਓ ਪੂਜਾ ਗਹੇ ਕੂਪ ਕੇ ਕੱਢ ਲੇਵੇ ਰਹਾਉ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਅੰਦਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧ ਅਨਿਕ ਦੋਖਾ ਤਿੰਨ ਛੱਡ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਆਨ ਨਾ ਰਾਖਣ ਹਾਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰਾਹੋ ਸਰਨ ਸੂਰੇ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨਾ ਜੀਵੇ ਜੰਤ ਤਾਰਨਾ ਵੇਦ ਉਚਾਰ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਾਇਓ ਗੁਣੋ ਸੁਖ ਸਾਗਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰਤਨ ਰਤਨਾਗਰਾ ਭਗਤ ਪੁਛਲ ਨਾਨਕ ਗਾਇਓ ਚਨਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਲਤ ਸੁਖ ਪਲਤ ਸੁਖ ਨੀਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰੋ ਨੋ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੇ ਮਿਟੋ ਕਾਮਨੇ ਪਾਪ ਚਿਰਾ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਮੂਆ ਜੀਜੇ ਰਹੋ ਰਾਜ ਜੁਬਨ ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਜਾ ਮਾਇਆ ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਇਹ ਮਹਾਂਤ ਕਹੇ ਆਸ ਪਿਆ ਰਮਨ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਭਾਗਵੰਤ ਲਹੇ ਸਰਨ ਸਮਰਥ ਅਖਤ ਅਗੋਚਰਾ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬਤ ਪੂਰਨ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਬਾਰਵਾਂ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਰਹਾਉ ਵੱਡੇ ਪਾਗ ਬੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕਾਮਨ ਰਾਪੇ ਸੋਕ ਗੰਤਿਤ ਜੰਨਾ ਵਿਆਪੇ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ ਨਿਰਗੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗੇ ਪਰਤਨ ਦੋਖ ਕਿਤ ਪਾਪ ਨ ਫੇੜੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨ ਆਵੇ ਨੇੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗਣ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬੁਝਾਈ ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ ਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਪਈ ਸਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ ਮੰਦਨ ਵਸਨਾ ਨਾਮ ਤਿਹਾਇਆ ਜੀਵਨਾ ਹਰ ਜੀਵਨਾ ਜੀਵਨ ਹਰ ਜਪ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਹੋ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤ ਉਡਾਏ ਅੰਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਸਤ ਰੱਖ ਅਸਵਾਰੀ ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਰਿਦੇ ਨਿਹਾਰੀ ਮੰਤਨ ਅੰਤਰ ਚਰਨ ਤਿਹਾਇਆ ਹਰ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਵਾਇਆ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀ ਕਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਜਿਨ ਤਿਨ ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਰਹਾਉ ਕੋਈ ਹੋਆ ਕ੍ਰਮ ਰਤ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਾਇਆ ਦਾਨਸੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਿਹਾਇਆ ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾ ਤੁਠਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਰਹਾਉ ਜੀਨ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਮਨ ਤਨ ਕੇ ਪਿਆਰਾ ਹੁਮੇ ਬੰਧ ਹਰ ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਿਉ ਲਾਗੋ ਨੇਹ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਹੇ ਦੇ ਬਨ ਭੋਜਨ ਜਾਈ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਲੇਪਾ ਤੋਈ ਸੰਗ ਸਮਾਈ ਰਹਾਉ ਕਉਪੋ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ ਮੁਕਰ ਮਹਿ ਜੈਸੇ ਛਾਏ ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸ ਨਿਰੰਤਰ ਕਟਹੀ ਖੋਜੋ ਪਾਏ ਬਾਹਰ ਪੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਟੇ ਨ ਪ੍ਰੰਤੀ ਖਾਈ ਸਨਾਸੀ ਸਾਧੂ ਹੈ ਜਗ ਪਰਮ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੋੜਿਆ ਮਾਇਆ ਹੱਥ ਬਿਕਾਨਾ ਰਹੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਨੀਤਾ ਤਾਗੀ ਰਸ ਲਪਤਾਨਾ ਜੋਬਨ ਤਨ ਪ੍ਰਪਤਾ ਕੇ ਮਦ ਮੈਂ ਅਹਿਨਾਸ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਤਾਸਿ ਮੰਨਾ ਲਗਾਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕਿਨ ਹੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਪਚਾਨਾ ਅਗਨਾਸੀ ਹੰਨਾ ਇਹ
सहज जोगी क्यों जुगत न जाने हो। लोभ मोह माया ममता फुन जय कट में पछाने हो। राहो पर निंदा उस तक में जाके कंचन लोह समानो। हर शोक के रहे अतीता जोगी कह बखानो। चंचल मन बह दस क्यों तावत अचल रहे ठहरानो। कहुना न कह कहुना न कह बिदको जो नर मुक्त तो है तुम मानो। तनाथी मलन अब मैं कहूँ न पाहो करो। जह बिद मन के संसार चुके बहु निज पार परयो। रहो जन्म पाए कछ पलो न गिनो ताके अधित रहो। मन बच क्रम हर गुण नाही गाए यह जी सोच तरयो। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजो। पशु जियो उधर परयो। कहू नानक प्रभु वृद्ध पछाने तब हो प्रतीत करो। तनासी मल्ला पहलवा कर दूजा अष्टपदी आए क्यों का सदगुर प्रसाद। गुर सागर रत्नी पर पूरे अमृत संत सुखो नहीं दूरे। हर रचो चुरावो प्रपावे सरवर महंस प्राण पत पावे। क्या बग बपूरा छपड़ी नाही कीचड़ दुबे मैल न जाही। राहो राख रात चरण चरण परे करे विचारी दुबिधा छोड़ पहे निरंकारी। मुकुट पदार्थ हर रस चाखे आवन जान रहे गुरु राखे। सर्वण हंसा छोड़ न जाहे प्रेम भगत कर सहज समाये। सर्वर मह हंस हंस में सागर अथक कथा गुर बचनी आदर। सुन मंडल एक जोगी बैसे नर न पूरत कहो कोई कैसे। त्रिभुवन ज्योत रहे लिवलाई सुर नर नाथ सचे सरनाही। आनंद मूल अनाथ अधारी गुरमुख भगत सहज विचारी। भगत वचल है काटन हारे हमे मार मिले पगतारे। अनिक जतन कर काल संताए मरण लिखे आए मंडल में आए। जन्म पदार्थ दुविधा खोवे आपना चीन से परम रोवे। रहते हो प्रत्यो सुनते हो एक तीरज तरम तरनी तरते एक। जत सत संयम हृदय समाये चौथे पद क्यों जे मन पति आए। साचे निर्मल मैल न लागे गुर के शब्द परम पौ पागे। सुरत मुरत आद अनूप नानक जाचे साच स्वरूप। तनासी मैला पहला सहज मिले परमान। नाते समरन आवन जान ठाकुर मैं दास दास मैं सोए। जय दे खाते अवर न कोई गुरमुख भगत सहज कर पाइये। बिन गुर बेटे मर आए आइये जाइये। रहाओ सो गुर करो जी साथ जड़ावे। अखत कथावे शब्द मिलावे हर के लोग अवर नहीं कारा। साचो ठाकुर साथ प्यारा तन मह मनुआ मह मन मह साचा। सो साचा मिल साचे राचा सेवक प्रभ के लागे पाए। सतगुर पूरा मिले मिलाए आप दिखावे आपे देखे। हतना भतीजे ना भूले देखे गर्भ दादे जिन अमृत पाया। प्रेम भगत ब्रह्म मन पति आया। पर पर फूल छोटा खाए बहुत स्यानप आवे जाए। नाम जपे पर भोजन खाए गुरमुख सेवत रहे समाये। पूज शिला तीरथ बनवासा बरमत डोलत पहे उदासा। मन मैले सूचा क्यों हुए साच मिले पावे पतसोई। आचारा विचार शरीर आद जुगाद सहज मन तीर पलकन फल पंकज में कोट धारे कर कृपा गुर मेल प्यारे। जिस आगे प्रभ पर चलाहे तुझ बिन दूजा मैं को नाही। ज्यों तुझ पावे त्यों रास जाए नानक सहज पाए गुण गाय। अष्टपदी वाला बनवा कर छठा अष्टपदी एक्यों का सदगुर प्रसाद। जो जो जुनी आए कहते उर्झायो मानस जन्म संजोग पाया। ताकि है उठ साध राखियों दे कर हाथ कर कृपा मेले हर राया। अनेक जन्म परम चीत नहीं पाई करो सेवा गुरु लाख्यो चरण गोविंद जी का मारग दे जी बतियाई। रहो अनिक पावो करो माया क्यों बचित करो मेरी करत सदही विहावे। कोई ऐसे रे पहते संत मेरी आहे सगल चिंत ठाकुर सियों मेरा रंग लावे। पड़े ले रे सगल भेद न चूके मन भेद एक किन न तिरियो मेरे करके पंचा। कोई ऐसे रे भगत जो माया ते रहते समस्त नाम मेरे हृदय सिंचा। जैसे रे तीरथ ना या उभिंद मेल लाए कर को ठाकुर एक तिल न माने। कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन इस नाने। सगल अश्रम किने मनुमान है पति ने विवेकहीन दोहित हो गए। कोई
पाइये रे पुरुष विदाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन की दुर्मत मलक होए मेरे मन की दुर्मत मलक होए करम तरम जुगता निमख न हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कहीं न लेखे जिस पे क्या सफल मूरत करे सदा किरत गुर प्रसाद क्यों नेत्रों पे खेल मन हट जो काम हो तिल न लेखे पावे बगुल जियो ध्यान लावे माया रे तारी कोई ऐसे रे सुखो दाही प्रभु की कथा सुनाई तिस पेटे गत हुए हमारी सुप्रसन्न गोपाल गाये गोपाल राय काटे रे बंधन मैं गुर के शब्द मेरे मन राता सदा सदा आनंद पेटे हो निर्भो गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पर आता सफल सफल सही सफल यात्रा आवन जान रहे मिले सादा राहो दूजा तनासी मल्ला पहला संत क्यों का सदगुरु प्रसाद तीरथ ना हो जाओ तीरथ नाम है तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुरु ज्ञान सचा थान तीरथ दस पूरक सदा दशहारा सौ नाम हम नाम हर का सदा जातियों देह प्रभ करनी तरा संसार रोगी नामदारू मेल लागे सच बिना गुर वाक निर्मल सदा चान नित साच तीरथ मजना साच न लागे मेल गया मन तोये गुनो हार प्रोहे तिस्क्यों रोये विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन न आवे आप पारस परम ध्यानी साच साचे पावे आनंद अंजन हर्त साचा दुख किल विख पर हरे साच सच नाम पाया गुरु दिखाया मेल नाही सच मने संगत हित मिलाप पूरा नावनो गावे गावन हार शब्द सुहावनो सलाहे साचे मन सतगुर पुनदान दया मते फिर संग पावे सहज नावे बेनीता संगम सत सते आराध एकन कार साचा नित देवे खड़े सवाया गत संग मीता सत संगत कर नदर मेल मिलाया नो मूरख नीच आजान समझा साखिए सच गुर की साखी अमृत बाकी तिन मन मानिया मेरा कूच करे आवे बिखला दे शब्द सच्चे गुर मेरा आखन तोट न परत आखन तोट न पगत पंडारी भरपूर रहा सोई नानक साथ कहे बेंती मन सांजे मन मांजे सच सोई तनासी मन लपैला जीवा तेरे नाही मन आनंद है जियो सच साचा नाम गुण गोविंद है जियो गुर ध्यान अपना अपारा सज्जन हारा जिन सब्जी चिन गोई परवाना आया हुक्म पठाया फेर न सके कोई आपे कर देखे सिर सिर लेखे आपे सूरत से बुझाही नानक कहे भगम गोचर जीवा सच्ची नाही तुम सर अवर न कोय आया जायसी जियो हुक्मी होवे निबेड़ परम चुकायसा जियो गुरु परम चुकाये अकट कहाये सच में साच समाना आप उपावे आप समावे हुक्मी हुक्म पछाना सच्ची वडियाई गुर के पाई तू मन अंत सखाई नानक साहेब अवर न दूजा नाम तेरे वडियाई तू सच्चा सिरजन हार अलख सिरंदरिया जियो एक साहेब दुई दहाय दुई राहे वाद वंधाया जियो दुई दुई राह चलाए हुक्म सवाए जन्म मुआ संसारा नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा हुक्मी आया हुक्म न बुझे हुक्म सवरान हारा नानक साहेब शबद ज्यापे साचा से जन हारा भगत सोहे दरबार शबद सुहाया जियो बोलियो अमृत बन रसन बान रसन रसाया जियो रसन रसाए नाम तिसाए गुर के शब्द बिखाने पारस परसे पारस होए जाते रे मन पाने अमरा पद पाया आप गवाया बिरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोई दर साचे साचे के व्यापारी भूख प्यासे वाद क्यों दर जायसा जियो सतगुरु पुत्र नाथ जाई नाम तिहायसा जियो ती आयसा जियो सच नाम तिहाइये साच चवाहे गुरमुख साच पुछाना दीना नाथ दयाल निरंजन अंजन नाम खाना करनी कार त्रयो कुरमाही आप मुआ मन मारी नानक नाम महारथ मीठा कृष्णा नाम निवारी तनाश्री संत महला पहला फिर संग मुठ मुठ त्रिये खबर न पाईया जियो मस्तक लिख लिखिरा ली की अड़ा लेख पूर्व कमाया जियो लेख न मिट्टी है पूर्व कमाया किया जाना क्या होती गुनी अचार नहीं रंग राती अवगन बहन बह रोसी तंजो बदन आख की छाया बिरद पोहे दिन पुनिया नानक नाम बिना दोहागन झूठी छूटो भी चुनिया बुद्धि कर काले गुर के पाए चलो
साचा नाम तिहाइये पावे सुख महलो हर नाम तिहावे ता सुख पाए पेड़िये दिन चारे नित कर जाए पजे सुख पाए अंजन नाल प्यारे बिन भक्ति सब वासना होइए सुनियो लोक सबाए नानक शक्ति ता फिर पावे राती साचे नाहे फिर तन पावे ता फिर पावे नारी जियो रंग प्रीतम राती गुर के शब्द विचारी जियो गुर शब्द विचारी नह प्यारी निर्णय प्रगत करे हे माया मोह चलाहे माया मोह जलाहे प्रीतम रस महरंग करिए प्रभ साचे से ती रंग रंगे ती लाल वही मन मारी नानक साच वसी सोहागन पिरस्यो प्रीत प्यारी पिर कर सोहे नार जे पिर पावे जियो झूठे वैन चवे काम न आवे जियो झूठ लावे काम न आवे ना पिर देखे नैनी अवगुण यारी कंत विसारी छूटी विघ्न रैनी गुर शब्द न माने पाही फाथी साधन महल न पावे नानक आपे आप पछाणे गुरमुख सहज समावे कंस कन सुहागन नार जिन पिर जानिया जियो नाम बिना कुड़ियार कूड़ कमानिया जियो हर भगत सुहावी साचे पावी पाही भगत प्रभ राती पिर रलीला रलीला आला जोबन बाला तिसरा वे रंग राती गुर शब्द विगासी सहरवासी फल पाया गुणकारी नानक साच मिले वडियाई पिर कर सोही नारी तनासरी संत महला चौथा कर पहला एकुंकार सदगुरु प्रसाद हर जो कृपा करे ता नाम के हाव्या जियो सदगुरु मिले सुभाए सहज गुण गाया जियो गुण गाए विकसे सदा अंजन जा आप साचे पावे हे अंकार होमे तुझे माया सहज नाम समावे आप करता करे सोई आप दे ना पाइये हर जो कृपा करे ता नाम ना करे ता नाम तिहाइये जियो अंदर साचा ने पूरे सतगुरु जियो हूँ तिस सेवे दिन रात मैं कदे न विसरे जियो कदे न विसारी अंदर समारी जाना मलाये ता जीवा सगुणी ता अहमन तृप्ते गुरमुख अमृत पीवा नदर करे ता सतगुरु मेले अंदर विवेक बुद्ध विचरे अंदर साचा ने पूरे सतगुरे अंदर साचा नेह पूरे सतगुरे सत्संगत मिले वट पाग ता हर रस आवे जियो अंदिन रहे लिव लाए ता सहज समावे जियो सहज समाव्या समावे ता हर मन पावे सदा अतीत बेरागी हल पल सोभाम जग अंतर राम नाम लिव लागी हर शोक दुहा के मुक्ता जो प्रभ करे सुखावे सत्संगत मिले वट पाग ता हर रस आवे जाए दूजे पाए दुख होए मनमुख जम जो है जियो हाय हाय करे दिन राती माया दुख मोहया जियो माया दुख मोहया होमे मुरोया मेरी करत विहावने जो प्रभ देहे तिस देते नाही अंत रहे अंत गया पछतावे बिन नावे को साथ न चाले प्रतलत माया तो ये दूजे पाए दुख होए मनमुख जम जो है जियो कर कृपाले मिलावे मैल हर पाया जियो सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो प्रभ मन पावे ता हुकम सुनावे हुकम मन सुख पाया अंदिन जपत रहे दिन राती सहजे नाम तिहाया नामो नाम मिली बढ़ियाई नानक नाम मन पावे कर कृपा लेहे मिलावे महल हर पावे जियो तनासरी मल्ला पंजवा संत एकुंकार सदगुरु प्रसाद सदगुरु दीन दयाल जिसंग हर लावे जियो अमृत हर का नाम साध संग रवया जियो बचसंग साधु एक राधु जन्म मरण दुख नासे तुर करम लिखिया साच मिखिया चित जम की फांसी है बे परम नाते छुट्टी जाते जम पंथ मूल ना आविये बिनवंत नानक तार कृपा सदा हर गुण गाविये निधरिया कर एक नाम निरंजनो जियो तू दाता दा तार सरब दुख पंजनो जियो तू खर करता सुख स्वामी शरण साधु आया संसार सागर महाबिखरा पल एक मह तारया पूर रया सर्प खाई गुरु ज्ञान निक्रिय दोनों ना बिनवंत नानक सदा सिमरी सर्व दुख पे पंजनो आप लिए लड़ लाए कृपा तारिये जियो मुँह आप लिए लड़ लाए कृपा तारिया जियो मुँह निर्गुण नीच अनाथ प्रभगम पारिया जियो दयाल सदा कृपाल स्वामी नीच सपन हारिया जी जन सब बस तेरे सगल पे विचारिया आप करता आप सगल विचारिया बिनवंत नानक गुण गाहे जीवा हर जप जपो बनवारिया तेरा दरस अपार नाम मोलिया जियो नित जपो तेरे दास पूरा कतोलिया जियो संत रसन उठा आप टूटा हर रस्यो से ही मात्या गुर चरण लागे महाभागे सदा अंदिन जागया सदा सदा सदा सिंह
मंत्रम्ब स्वामी सास सास गुण बोलिए, बिनवंत नानक तूर साधु नाम प्रभ मोलिए। राग पनासरी बानी भगत कबीर जी की है। क्यों का सदगुरु प्रसाद सनक संगीत में एक सुनाना, एक नाथ तेरो मरम न जाना, सत्संगत राम के देव साई राव हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत नहीं गुण जाना, चार वेद स्मृत पुराना, कमल पात कमला नहीं जाना, कह कबीर सो परम में नाही पग लाग, राम रहे सर नाही, दिन के पैर पहर के करिया, काका वेकन कीजे काल हेरी, फिरे बदीक जियो कवन कवन विद कीजे, सो अन दिन आवन लागा, माता मात पिता पाई सुत बनीता, कहो कोई है तेरा, कहो कोई है काका राहो, जब लग जोत काया में बरते अपना, आपा पशु न बूझे, लालच करे जीवन पर दिखारना, सोचन कछु न सूझे, कहत कोई सुनो रे प्राणी, छोड़े मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, पूरो एक ही सपना, जो जन पाओ भगत कुछ जाने, ता क्यों अचर गाहे, जीवन जन जन में है, ज्यो जल जल में है, पैसना निकते त्यों दूर मिले हो जुला है, हर के लोका मो क्यों मत का पोरा, ज्यो तन खास्ती ज्यो तन खास्ती त्यो कबीरा, रमियो कहानी हो रहा राहो, कैद कबीर सुनो ले रोही ले लोही, परम न पुले हो कोही, किया काशी क्या उखड़ मग हर, राम हृदय ज्यो सोई ज्यो हुई, इंद्र लोक शिव लोकिय जेबे, उच्छे तप कर बहुर एबे, क्या मांगो कित चीज नाही, राम नाम रख मन माही, राव शोभा राज बीजे बढ़ियाई, अंत न खाऊ संग साई, पुत्र कलत लक्ष्मी माया, इनके कर सबने सुख पाया, कैत कबीर अवर नहीं कामा, हमरे मन तन राम को नामा, राम सिमर राम सिमर राम सिमर पाही, राम नामा राम नाम सिमरन बिन भुखते अधिकाई, राहो बनीता सुख दे ग्रह संपत सुखदाई, इनमें कछ नहीं तेरे काल अवध आई, अजामल गज गनी का अतित कर्म कीने, क्यों उतर पार परे राम नाम लीने, शुक्र शुक्र जोनी घूमे त्यों लाज न आई, राम नाम चार अमृत गाहे बिक्ष आई, ताज परम करम विद निभे नी खेद, राम नाम ले ही गुरु प्रसाद जन कबीर, राम तरस नहीं सनातनी बानी भगत नाम ले जी की, क्यों का तर गुरु प्रसाद गैरी करके नीत खुदाई, ऊपर मंडप उठाए मारकंडे से ते को अधिकाई, जिन त्रिन तर मुंड बुलाहे, हमरो करता राम नहीं कहे, रे नंद गर्व करत क्यों बिन सुजाई, झूठी दे ही रहा, मेरी मेरी कह रहे हो, करते दुर्जोगन से पाई, बाहर जो जन छत चले, था दही गजन खाई, सरब सोई की लंका होती, रावण से अधिकारी था, पायो दर पांडे हाथी, थिन में पही पढ़ाई, दुर्वासा स्यों करत थदूरी, थद पूरी जादू वे फल पाए, कृपा करी जन अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए, दस बेरा गन मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नावो, सतर दोहे परे अमृत सर बिख क्यों मार कढ़ावो, आछे बहुर न आवन पावो, अमृत बाणी कटके उतरे आत्म क्यों समझावो, रहाओ बजर कुठार मोहे हैं चीना, कर मिनत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवत, पतन के डर ऐ संसार से तभी छूटे हो, जियो माया नह लपटो, माया नाम गर्भ जोन का कहे तज दर्शन पायो, इत कर पगत करो, जो जन तीन प्यो सगल चुकाइये, कहत नाम देव बाहर क्या फरमो, ऐ संयम हर पाइये, मार वार जैसे निर्बालहा, बेल बलाहा कर हला, जो तुरंत निशनाद बलाहा, जो मेरे मन रमाय, तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो, अंतरंग रूड़ो मेरे रमाया, रहा जो तरनी क्यों इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पवरना, जो कोकिल क्यों अम्ब बलाहा, क्यों मेरे मन रमाया, चकनी क्यों जैसे सूर बलाहा, मान सरोवर हंसला, ज्यो तरनी क्यों कंट बलाहा, क्यों मेरे मन रमाया, बारिक क्यों जैसे तीर बलाहा, सात्विक मुख जैसे जलधारा, मछली क्यों जैसे नीर बलाहा, क्यों मेरे मन रामया, साधक सिद्ध सगल मन चाव्यो, बिरले काहू दी थूला,
सगल पवन तेरे नाम बलाहा, त्यो नामे मन भी ठुला पाहिल पुरियो पुंड रक बना ताचे हंसा सगले जना। कृष्ण कृष्ण तेजा न्यू हर हर नाचंती नाचना पहल पुर साबी।

आलाते निवारना जम कारना पतित पावन माधियो वृद्ध तेरा तनके वे मुन जन जिन तिहायो हर प्रभु मेरा मेरे माथे लाखी ले तूर गोविंद चरण की सुरनर मन जन तिन्हो के दूर रहाओ दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी चरण चरण नामा बन त्रिहारी तनासी भगत रविदास जी की एक सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजिए बचनी तोर मोर मन माने जन के पूर्ण दीजे हूँ बल बल जायो माया कारने करने कारण कवन बोल रहा बहुत जन्म बिछड़ो थे माधियो ए जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस कह रविदास आस लग जीवो चिर पे हो दर्शन देखे चित सिमरन कर हो नैन अविलोकनो सवर्ण बाणी सूजस्त पूर राख्यो मनजू मधुकर करो चरण हृदय करो रचन अमृत राम नाम पाख्यो मेरी प्रीत गोविंद सिंह जिन कटे मैत्यो में मोल महगी लई जी सके राहो साध संगत बिना भाव नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी कहे रविदास एक बेनती हर्ष्यो पैज राख्यो राजा राम मेरी नाम तेरे आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे राहो नाम तेरे वासनो नाम तेरे उठसा नाम तेरे केसरे ले चितकारे नाम तेरे अम्बुला नाम तेरे चंदनो कथ जपे नाम ले तुझ क्यों चारे नाम तेरे दीवा नाम तेरे बाती नाम तेरे उतेल लहमे पसारे नाम तेरे की जोत लगाई पेव जियारो पवन सकलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला बाहर अठारा सगल जुठारे तेरा किया तुझियो अर्पो नाम तेरा तुही चवर द्वारे दस अठ अस सठ चारे खाने विन वर्तन है सगल संसारे कहे रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे तनात्री बाणी पक्ता की त्रिलोचन एक ओंकार सतगुरु प्रसाद नारायण निंदस खाई पुली गवारी धारे थारो कर्म रही रहा संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुलजन मध्य मिलो सारग पान रे कर्म कार कलंक मई के कचरी बृष्वा दीपक स्वामी तांचे रे स्वार्थी पंथी राही गरुड़ तांचे बाधवा कर्म कर अरुण पिंगुलारी अनिक पातित हरता त्रिभवन नाथ की नाथरी तीरथ तीरथ प्रमता लहे ना पार री कर्म कर कपाल मई फेटस री अमृत सस्ने तेन लक्ष्मी कल पत्थर शिखर सुनागर नदी से नाथ कर्म कार धार मई फेटस री धांधीले लंका उपरीले रामन बन मल बिसल आन तो कीले हरी कर्म कार कछ उठी मई फेटस री पूर्व लोक कृत कर्म न मीते दी कर गेहन सांचे मोह जा पीले राम से नाम बदत त्रिलोचन राम दीप दी सैन तूप दीप कृत साज आरती वारण जाओ कमला पति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को राम उत्तम दीड़ा निर्मल बाती तुही निरंजन कमला पाती रामा भगत रामानंदे जाने परमानंद बखाने मदन मूरत पै तार गोबिंदे सैन पने ब्रज परमानंदे की पायो दे कायो देवा का ईयल देवल का ईयो जगम जान जगम जाति का यो तूप नीप तूप दीप नहीं बेदा कायो पूजियो पाती काया भव खन होते के नमित पाई नाकच आयो बे नाकच जाई राम की दुहाई राहो जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे के जो खोजे सो पावे पीपा प्रण परम तत है सदगुर होवे लखावे तन्ना गोपाल तेरा आरवा जो जन तुमरी भगत करके जिनके काज सवार तारा जाल सीधा मांगियो क्यों हमरा खुशी करे नित जियो पुनिया चादर निका अनाज मंगो शक्ति का अनाज मंगो शक्ति का तू बैस मंगोला वेरी इस ताजन तुरी संगेरी करकी री हन चंगी तन तन्ना लेवे मंगे श्री मल्ला चौथा कर पहला चुप देखूंगा सतगुर प्रसाद मेरे हीरे रतन नाम हर बसया गुरु हाथ पटेव मेरे माथा जन्म जन्म के किल दुख गुरु नाम देव दिन लाखा मेरे मन पज राम नाम सुख

ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਨਾਮ ਜੜਾਇਆ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਰਹੋ ਬਿਨ ਗੁਰਮੂਰ ਪਏ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਤੇਮੇ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਪਾਖਾ ਤਿੰਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨ ਸੇਵੇ ਕਬਿਓ ਤਿੰਨ ਸੁਖ ਜਨਮ ਅਸਾਖਾ ਤਿੰਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ ਤਿੰਨ ਸੁਖ ਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਤਨ ਮੋਕਿਓ ਕੀਜੇ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਰ ਦਇਆ ਕਰ ਜਗਨਨਾਥ ਹਮ ਅੰਦੂਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਚਲਿਓ ਮਾਰਗ ਭੰਤਾ ਹਮ ਅੰਦੂਲੇ ਕਿਉਂ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੂਜੇ ਨਾਨਕ ਚਲਿਓ ਮਿਲਨ ਸਾਜੇ ਕਿਉਂ ਮਲਾ ਚੋਥਾ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਮੋਲਕ ਹੈ ਪਾਰੀ ਬਿਨ ਗਾਵਕ ਨੀਕਾ ਕਾਖਾ ਰਤਨ ਗਾਹਕ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਦੇਖਿਓ ਤਮ ਰਤਨ ਬਿਖਾਨੋ ਲਾਖਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗਪਤ ਹਰ ਹਰ ਰਾਖਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਮਿਲਿਓ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਗੁਰ ਮਿਲਿਓ ਹਰ ਪਰ ਪਰਾਖਾ ਰਾਹੋ ਜੁਲਨ ਮੁਖ ਕੋਠੀ ਅਗਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਿੰਨ ਕਰ ਰਤਨ ਲਾਖਾ ਦੇਵ ਤੇ ਉਜੜ ਪਰਮ ਹੋਏ ਗਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਪੋਂਗ ਵਿਖ ਸਾਖਾ ਹਰ ਹਰ ਸਾਧ ਮਿਲਿਓ ਜਨ ਨੀਖੇ ਹਰ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਹਮ ਰਾਖਾ ਹਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਹਮ ਪਰੇ ਪਾਗ ਤੁਮ ਪਾਖਾ ਜੀਵਾ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣ ਤੁਮ ਵਲ ਅਗਮ ਵਲ ਪਾਖਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪਾਖਨ ਬਿਬਤ ਹਰ ਰਾਖਾ ਜੇਤਰੀ ਮਲ ਚੋਥਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਚੁਨਨ ਗਤਮਤ ਤੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮੁਗਤ ਇਆਨਾ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾ ਦੀਜੇ ਮਤ ਉਤਮ ਹਰ ਲੀਜੇ ਮੁਗਤ ਸਿਆਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਲਾਸਿਆ ਉਗਲਾਨਾ ਹਰ ਹਰ ਆਨ ਮਿਲਾਵੋ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖਪਤ ਖੁਲਾਨਾ ਰਹਾਓ ਗੁਰਸਿਨ ਸਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਨਾ ਮੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਬਨ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਜਿਉ ਮਨੀ ਅਮਨ ਲੁਬਾਨਾ ਜਿਨ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗੀ ਹਰ ਖੇਰੇ ਤਿੰਨ ਤੁਰ ਪਾਗ ਪੁਰਾਣਾ ਤਿੰਨ ਹਮ ਚਰਨ ਚਪੁਤ ਸਰੇਵੇ ਤਿੰਨ ਜਿਨ ਹਰ ਮੀਤ ਲਗਾਨਾ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਜਨ ਨਾਨ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਜਨ ਵਿਛੂਣਿਆ ਚਿਲੀ ਮਿਲਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ ਨਾਮ ਚਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਨਾ ਜੇਸਵੀ ਵੇਲਾ ਚੌਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨ ਪੁਰਖ ਬੁੱਧ ਪਾਈਏ ਹਰ ਰਸਲ ਪ੍ਰਸਲ ਫਲ ਲਾਗੀ ਪਾ ਮਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰਬਚਨੀ ਜਿਸ ਹਰ ਕਾ ਦੀਪਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਲਾਗੀ ਪਾ ਹਰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪੀਵਰ ਹਰ ਕੀ ਏ ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਮਿਲ ਸਾਧ ਗੁਰ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹਰ ਰਸ ਸਾਖੀ ਪਾ ਰਾਹੋ ਤਨ ਤਨ ਤਨ ਤਨ ਵਰਪਾਦ ਮਿਲਿਓ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਲਿਓ ਉਨਮਨ ਲਾਗੀ ਪਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਗਮ ਗੁਣ ਸਾਥ ਪਾਈ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਈ ਬਾ ਤਿਨਕੇ ਪਾਕ ਤਿੰਨ ਪੁਰ ਪਾਏ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ ਨਾ ਪਾਈ ਬਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਈ ਪਾਵੇ ਗੁਰ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਸਭ ਬਿਰਖਾ ਜਨਮ ਤਿੰਨ ਜਾਈ ਬਾ ਹਰ ਦੇਵੇ ਬਿਮਲ ਮਤ ਗੁਰ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ ਹਮ ਹਰ ਮੀਤ ਲਾਗੀ ਬਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਰੇ ਸਦਾ ਪਗ ਮਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਦਿਆਲ ਦਾ ਈਬਾ ਜੇਤਰੀ ਮੇਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਹਰ ਰਿਵੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿੰਨ ਮਾਤ ਗਿਜੇ ਹਰ ਬਾਂਜਾ ਤਿੰਨ ਸੁਣੀ ਦੇਹ ਫਿਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਮੂਹੇ ਕਰਾਂਜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਮਾਜਾ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਤਾਰੀ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਮਨ ਸਮਝਾ ਰਹੋ ਹਰ ਕੀਰਤ ਕਲਜੁ ਪਗੁਤਮ ਹਰ ਪਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਜਾ ਹਉ ਬਲਿਆਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਪਰ ਰਾਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਮਿਲਿਓ ਬਡਭਾਗੀ ਸਭ ਖਿਲ ਵਿਖੇ ਕਹੇ ਗਵਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਾ ਪਾਇਆ ਵਰਦਾਨਾ ਹਰ ਕੀਏ ਬਹੁਗੁਣ ਸਾਜਾ ਜਿਨ ਕਿਉਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ ਹਰ ਉਤਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਜਾ ਧਰਮ ਗਰਾਹੇ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲਿਖਾ ਸਮਝਾ ਜੇਤਰੀ ਮਨ ਛੋਟਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਪਈ ਵਟਭਾਗੀ ਮਨ ਚਿਲਤੋ ਪਾਈਆ ਰੂੜਾ ਅਨੰਤ ਤੂਨ ਵਜਿਓ ਨਿਜ ਵਾਜੇ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੀੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਮਿਲਿਓ ਲਾਈ ਚਪੀੜਾ ਰਾਵ ਸਾਗਤ ਸਾਖਤ ਬੰਦ ਪਏ ਹੈ ਮਾਇਆ ਬਿਖ ਸੰਚਿਓ ਲਾਈ ਜਗੀਰਾ ਹਰ ਕੇ ਅਰਥ ਸਰਚ ਨੈਨ ਸਾਖਿਓ ਜਮਕਾਲ ਪੈ ਸਿਰ ਪੀੜਾ ਜਿਨ ਹਰ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਲਗਾਇਆ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਗੁਰ ਸਰਦਾਮ ਆਏ ਲਾਈ ਸੁਖ ਤੂੜਾ ਹਲਕ ਪਲਕ ਹਰ ਸੋਭਾ ਪਾਵੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਮਨ ਮੂੜਾ ਹਰ ਹਰ ਮੇਲ ਮੇਲ ਜਨ ਸਾਧੂ ਹਮ ਸਾਧਕ ਜਨ ਕਾ ਕੀੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗੀ ਪਗ ਸਾਗ ਗੁਰ ਮਿਲਿਓ ਸਾਧੂ ਪਖਾਲੋ ਹਰ ਮਨ ਮੂੜਾ ਰਗੇ ਸ੍ਰੀ ਮਨ ਲਾ ਛੋਟਾ ਕਰਦੂ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਅਗਮ ਪਾਰਾ ਜਿਸ ਸਿਮਰ ਦੁੱਖ ਮਿਟੇ ਹਮਾਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਵੋ ਗੁਰ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਓ ਉਤਾਰੋ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੰਧਨ ਮਚਾ ਸੁਣਾਵੋ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਰਾਮ ਮਧੂਸੂਦਨ ਹਰ ਮਾਧੋ ਪ੍ਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਮੰਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਟ ਲਗਾਣਾ ਹਰ ਹਰ ਦਇਆ ਕਰਿਓ ਗੁਰ ਮੇਰਿਓ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਹੀ
राम मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना हर हर दया करो गुरु मेले पुरुष निरंजन सोई राम हर हर नाम सदा सुख दाता हर के रंग मेरा मन राता हर हर महापुरख गुरु मेले हो गुरु नानक नाम सुख होए राम जेठी मन लगोता हर हर हर हर नाम जपाहा गुरमुख नाम सदा ले रहा हर हर हर हर वद भगत दिलारो हर हर नाम उमाया उमाहा राम हर हर राम दयाल तिहाइया हर के रंग सदा गुण गाहा हर हर हर जस कुमर पावो मिल सत्संगत उमावा राम आओ सखी हर मेल मिलाया सुन हर कथा नाम ले लाहा हर हर कृपा तार गुर मिलियो गुर मिलिया हर उमावा राम कर कीरत जम जस अगम अकाहा थिन थिन राम नाम गुवाहा जो मोक्यो तार कृपा मिलिए गुरुदाते हर नानक भगत उमावा राम जय श्री मल्ल चौथा रस रस राम रसाल सलाहा मन राम नाम पीना ले लाहा सिन सिन भगत करो दिन राति गुरमुख भगत उमावा राम हर हर गुण गोविंद जपावा मंथन सीत शबद ले लाहा गुरमुख पंच दूत बसावे मंथन हर हर उमावा राम नाम रतन हर नाम जपाया हर गुण गाया सदा ले लाहा दीन दयाल कृपा कर माधो हर हर नाम उमावा राम जप जगदीश जपो मन माहा हर हर जगन्नाथ जगलाहा तन तन वदे ठाकुर प्रभु मेरे जप नानक भगत उमावा राम जय श्री मल्ला चौथा आपे जोगी जुगत जुगाया आपे निर्भो ताड़ी लाहा आपे ही आप वर्ते आपके नाम उमावा राम आपे दीप लोहो दीपावा आपे सतगुर समुद्र मसावा आपे मत मत कट कदाल जप हर हर भगत द्रिणी मन पाई हर हर नाम उमावा राम आपे वरदाना वरसाहा गुरमुख पूंजी नाम विसावा हर हर दात करो प्रभु पावे गुण नानक नाम उमावा राम जय श्री मल्ला चौथा मिल कर संगत संग गुराहा पूंज पूंजी नाम गुरमुख विसावा हर हर कृपा तरमा मधुसूदन मिल कर संगत उमावा राम हर गुण बाणी सुगुण सुनावा कर कृपा सदगुर मिलावा गुण गावो गुण बोलो बाणी हर गुण जप जप उमावा राम उमावा राम सब तीरत व्रत जगत न तोलया पुन तुला हर हर नाम न पूजो पुजा हर हर अतोल तोल अत पारी गुरमुत जप उमावा राम सब करम करम हर नाम जपावा किलविक मैल पाप तुहावा दीन दयाल होए जन ऊपर दे नानक नाम उमावा राम श्री मल्ला पंजवा कर तीजा एकुंगा सतगुर प्रसाद कोई का जाने कवन यहाँ जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद पूजे ताकि निर्मल रीत राहो मात पिता बनीता सुत वंदन इष्ट मीर अर्पाई पुरुष जन्म के मिले संजोगी उठू ले अंत्यों के उन्ह सहाय मुकत माल कनिक लाल हीरा मन रंजन की माया हाहा कहत आहा करत बिहानी अपने काम में संतोष न पाया हस्त रक्ष पवन तेज कनी कुम चतुरंगा संग न गालियो इनमें कछियो उत सिधायो नांगा हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के काके हर हर गाइये नानक या सुख आगे मुख उज्जल संग संतन के पाइये चेतनी मल्ला पंजवा करती जब उपदेशों का सदगुरु प्रसाद देखन देखो कहिए लिए कहिए विष्णु पही मैं बहुविध जुनते कहें सुहागन सुहिनी सहीयो रहो को कहते सब बहार बहार को कहते सब महियो बरन नदी से चैन रखिए सुहागन सात दिखियो सर्व निवासी कटकड़वासी लेप नहीं अलपियो नानक कहत सुनो देव लोका संत रसन को बसियो देखी मिला पंजवन चिरियो सुन चिरियो सुन चिरियो प्रभु कहो राहो जी प्राण मंथन सवाद नरियो पेड़ प्रभु नीरियो क्यों नीरियो बेसुमार बेअंत बदलाता मनो गही रहो गही रहो पेक प्रभु की कहो जो चाहो सोई सोई पावो आशा मनसा पूरेओ जप प्रभु कहो गुरु प्रसाद नानक मन वसया दुख न कभियो चुरियो बुज प्रभु कहो क्यों जेसरी मल्ला पंजवा लोड़ी दरा साजन मेरा करकर मंगल गावो
नीचे घट करे किसे बसेरा राव सुख राधन दुख राधनो बिसरे ना काहो बेरा नाम जपत कोट सुरु जारा बिनते ब्रह्म देरा खा फुल समंतर सबनी जाही जो जिसे सो तेरा सत्संगत पावे जो नानक तिस बहुर ना होए है फेरा। केसरी में ना पंजवा कर चौथा दुख दे क्यों का सदगुरु पता दे अब मैं फूक पयो गुर नाग तज्जी सियानप चिंत विसारी ओहे छोड़ो ले त्याग रहाओ जो देखियो त्यो सगल मोहि मोए मोहियो जो चरण पड़े गुर पाद कर कृपा टहल हर लायो क्यों जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक क्यों जनते क्यों जो संत बैठे गुर पाग जन नानक सर्व सुख पावे मोए मोरो हर चरणी चित लाग देखरी मल्ला पंजवा मन में सतगुरु तिहान मन में सतगुरु तिहान चला जड़ियो ज्ञान मंत्र हरनामा प्रभ जीव माया करा रहाओ काल जाल अर महा जंजाला छुटके जम्यो करा आयो दुख हरन चरण कुर नापत रियो चरण असारा नाप रूप प्रयो सात संगत साध संग पग निज पार परा अपयो प्रियो गत थियो परमा कहूँ नानक अजर जरा जैसनी मल्ला पंजवा जाक्यो कहे गोविंद सहाय सुख सहज आनंद सगल क्यों वाक्यो व्यापना काई रहो जिसे सब संग रहो अलेपा नव व्यापे उन्माही एक रंग सत के बेटे सतगुर के पाई दया मया कृपा ठाकुर की से ही संत सुभाई तिनके संग नानक मिस्तरीय जिन रस रस हर गुण गाई जैसनी मल्ला पंजवा गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोहे मगन मा प्राणी अंधियारे में दीप रहाओ सफल दर्शन तुम्हारा प्रभ प्रीतम चरण कमल अनूप अनेक बार करो तय बंधन मनो चलाहो तूप हार पर तुम्हारे प्रभु द्वारो वित्र कर गहे तुम्हारी लूप काट ले नानक अपने क्यों संसार पावक के कूप के कूप। जैसनी मल्ला पंजवा कोई जन हर क्यों देवो जोर चरण गयो बचो सब रखना दीजो प्राण खोड़ रहो मंथन निर्मल करत किया रहो हर चीचे सुंधा सुधा संजोग एरस मह मगन होत कृपा ते में ते महा बिख्या ते तोड़ आवयो शरण दीन दुख भंजन चितरो तुमरी ओढ़ अबे पद दान सिमरन स्वामी के प्रभ नानक बंधन छोड़ जैसनी मल्ला पंजवा छात्रित चित्वत बरसत में है कृपा सिंध करुणा प्रभ तारे हर प्रेम भगत जो न हो रहा अनेक सुख चकुई नहीं चावत आनंद पूरन पेक देहे आन पावो न जीवत मीना बिन जल बरना तेहे आवा नाथ नाथ और सरनी अपनी कृपा करे चरण कमल नानक राधे तिस बिन आनो न कहे जितनी मेरा बनवा मन तन बस रहे मेरे प्राण कृपा साधु सके संग बैठे पूरत पूरा शुभ सुजान रहो परम सदगुरी थक अवरी जिन क्यों पाही तिन रस पीवो पारी ताकि कीमत कहन न जाई कुदरत करहन कहन कुदरत कहन समारी जाई लड़े लड़ दास जन अपने उधरे उधर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पावो नानक शरण द्वारे जैसनी मल्ला पंजवा आवे अनेक जन्म परम सरनी जिधरो देह अंध कूप ते लाहो अपनी चरनी राहो ज्ञान ज्ञान किस क्रम में जाना न है निर्मल सरनी साध संगत ते अचल लाहो विषम नदी जाई तरनी सुख सपंत माया रस मीठे अहम नहीं मन मैं तरनी हर दर्शन तृप्त नानक पास पावत हर नाम रंग आभरनी जैसनी मल्ला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन क्यों अपना निकलना आवे पूरन दास के काम रहाओ कोट बिकन दिन से हर सेविया नैचल गोविंद धाम भगवंत भगत क्यों पहु किचना ही आदर देव देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गुर ना हो चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समय विश्राम जैसनी मल्ला अठवा लेकिन कार सदगुर प्रसाद पोलियो मन माया उर जायो जो जो करम क्यों लालच लोग तहत है आप बंधायो राहो समझ न परी बिखे रस रचियो जम हर के बिसरायो संत स्वामी जो जानियो नहन बन खोजन क्यों पाई ताहियो ताइयो रतन राम कटही के भीतर ताको ज्ञान न पाइयो जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो देखनी मल्ला
हरजू रात लेह पत मेरी जमको त्रास पयो उर अंतर शरण गहे कृपा निज तेरी रहाओ। महापतित मुगद लोभी पुन करत पाप अबहारा बे मरबे को बिकत नाहिं कहती ना तुम जा रा कीवे ये उपाव हो मुकत के कारण मुकत के कारण धै दस क्यों उठ चाहिए कथी पीकर बसे निरंजन ताको मरम न पाइये नाहिन गुण नाहिन कुछ जप तप कौन करम अब कीजे नानक हार प्रयो शरणागत अभे अभे दान प्रभ दीजे देखी मन मन रे काचा गेहो बिचारा राम नाम बिद मिख्या मानो सगरो ऐह संसारा राव जाके जो जोगी खोजत हारे पाया नह नह तह पारा सो स्वामी तुम निकट बतानो रूप रेख के न्यारा पावन नाम जगत में हर को कभु नहीं संभारा नाना शरण परेओ सब जग बंधन राख्यो बिरद तुहारा जय श्री मल्ला पन्नवा छंत कर पहला एकों का सदगुरु प्रसाद श्लोक दर्शन प्यासी दिन रात क्यों अंजन मीत खोल कपट गुरु मेलिए मेलिया नानक हर संग मीत रहा सुन यार हमारे सजन एक करो बेनंतिया तिस सोहन लाल प्यारे हूँ फिर खोजंतिया तिस दस प्यारे फिर तरी तारे एक पूरी दर्शन लीजिए नैन हमारे प्रह रंग रंगारे एक तिल पीना तरीजे प्रभु मन लीना जो जनमीना चाथिक दीवे किसंतिया जन नानक गुर पूरा पाइये सगली सीता बुजंतिया यार वे प्रह हबे साखिया हबे सखिया मुँह कहे न गेहिया वा यार वे हिक दू हिक चाड़े खौ किस चितेहिया हिंक दू हिंक चारे अनिक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिन्ना देख मन चाहो उठंडा हऊ कदी हऊ कद पाई गुन कासा जिन मेंडा लाल रजाइये हऊ तिस आगे मन दहिया नानक कहे सुन बिनो सुहागन सू मुँह दस दिखा फिर कहिया यार वे फिर आपने बाना किस नीची ठंडा यार वे ते गव्या लालन मुँह दस दस अंडा लालन ते पाया आप गवाया जेतन पाग मसाले बाघ पकड़ खा कुरन पचास गुन हार ते पाया रंग लाल बनाया ते शोभे किसा जन नानक पन सुहागन साही जिस संग जिन संग बंतार बसंदा यार वे नित्य सुख सुखेदी मैं पाही उपर लोड़िंगा आया वजी वधियाई महामंगल रहो महामंगल रह सिया फिर दयाल सद नव रंगया वड पाग वड पाग पाया गुर मिलाया साध के सत्संग आशा मनसा सरल पूरी प्रहन प्रह अंक अंक मिलाया बिनवंत नानक सुख सुख देही हमें गुर मिल पाई जैसरी मन्ना पंजवा कर दूजा था देखें कर सदगुरु प्रसाद सलो पूछा के मुपार परम कथन न जाए सत्य नानक परम शरणागति राखन के समर्थ छाय जो जानो त्यो राख हर प्रभु तेरिया से केते गनम असंख अवगन मेरे असंख अवगन सते फेरे निरपत सद फूलिए मोह मगन विकराल माया क्यों प्रसादी फूलिए लुक करत विकार बिखरे प्रभ मेरे होते मेरिया बिनवंत नानक दया तारे कट पौजन फेरे श्लोक निरंतर भवे संख गुण ऊंचा प्रभु का नाव नानक की बेनंतिया मिले कावे खाओ संत दूसर नाही ताओ का पाई जाइए आठ पैर कर जोर सो प्रभु तिहाई है तिहाई तिहाई सो प्रभु सदा अपना मन किंदिया पाइये तजमन तज मान मोह विकार दूजा एक क्यों दिलाइए अर्प मंथन प्रभागे आप सगल मिटाइए बिनवंत नानक कर कृपा साज नाम सुनाइए लोक रेमन ताक्यों तिहाइया तिहाइये सब विद जाके हाथ राम नाम तन संचिये नानक निधि साथ संत साखी अरा प्रभ एक दूसर नाही कोई गान के नंतर आप जाल थल पूर सोई जल थल मैयल पूर दया सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गुमिनंत नाही बिना बेअंत गुण ताके क्या गमी पद धरम स्वामी सुखो रामी तिस बिना अन नाही कोई बिनवंत नानक दया तारे और तिस प्राप्त नाम हो श्लोक चित्त जी चित्त प्या सो मैं पाया नानक नाम तिहाई ये सुख सबाया संत अब मन छूट गया साधु संग मेल
संग मिले गुरमुख नाम लियो ज्योति ज्योत लगे हर नाम सिमरतन लिखे अनुवत किल बेकत बूझी तपत अघानिया गह बूझा लीने दाया कीने आपने कर मान्या ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले जे श्री संत वल्लभ हनुमंता दूनु संसार गारब अटया पाप अनेक माया रंग रटया लोभ मोह विवान बूढ़े मरण चित न आवे प्रय पुत्र मित्र बहुआर मनीता एक करत बिहावे पूज दिवस आए लिखे माए दुख करम दूसरों दीखिया कीर्त करम न मीते नानक हर नाम समय नहीं कटिया उदम करो अनेक हर नाम न गावे भ्रम्यो जोन भ्रम्यो जोन असंस मर जन्मो आवाए पशु पंखी मेल पशु पंखी सेल तरवर गणत कछु न आवे बीज बोवे च भोग बोक्यो किया अपना पावे रतन जन्म हारंत जो रब आप न पाविए बिनवंत नानक परमो पुरावे तिन एक कितन तिकन्ना पाविए जो बन गए बचीत जर्मन भी बेखिया कर कंप्यो सिर तोल नैन न दीखिया नव नैन दिसे बिन पजन इसे छोड़ माया तालिया कहन कहन मान्यो सिर खाक छान्यो जिन संग मंथन जालिया श्री राम रंग पार पूरन महन मथन मन में बूठया बिनवंत नानक कूट खाकर बिंच पार न छूटया चरण कमल शरण आई नान चरण कमल शरणाई नानक आया दूसर बेसन सार प्रभ आपत राया मिल सासंग अजय श्रीधर कर अंग प्रभ जी तारया हर मन लिए नाम दिए अवर कछना बिचारया गुण निदान अपार ठाकुर मन लोरीदा पाया बिनवंत नानक सदा तृप्त हर नाम भोजन खाया जय श्री मंदा पंजवा वार श्लोका नाल एकम का सतगुर प्रसाद सलोक आद पूरन मध पूरन अंत पूरन परमेश्वरो सिमरंत संत सबत सर्वत्र रमण नानक अघनासन जग दीसरे देखन सुनो सुनावनो मन माहे दिड़िये साथ पूर रे सर्वत मैं नानक हर रंग राज पौरी हर एक निरंजन आइये सब अंतर सोई कर्म कारण समर्थ प्रभ जो करे सो होई तुम में ताप ताप दात तिस बिन नहीं कोई कोड़ दुर्मंद पाताल दीप दया सब लोई जिस आप बुझावे सो बुद्धि निर्मल मन कोई चलो कर कुंत जी रचना मात गर्भ स्थापन साथ स्मरंत नानक महागन अभिलाषण मुख तले पैर उधरे वसन लोग हुए खाए नाना सो तनी क्यों विचारे उधरे जिसके दे नहीं पौड़ी रकत बिंद करनी मिया अगन उधर मझार और समुद्र के चूल बिकल नरक कोर गुबार हर सिमरत तू ना जाली है मंथन उतार विषम खाने उन रखिया तिस्ते ना विचार प्रभ विसरत सुख गदे नाही जिसके जन्म हार लोक मन इच्छा दान करम सुव्रत आशा पूर्ण हो खंडन कल कले के प्रभ सिमरन नानक मैं दूर हर रंग माने जिस संग ते सियों लाइए सूल ते सियों लाइए नेह सो बिंद न विसरियो नानक बिन सुंदर रचियो देह पौड़ी जीव प्राण तन तन दिया दीने रस भोग ग्रह मंदिर रकाश दिए रस पैस सुत बनी सुत बनीता साधन सेवक देह प्रभ सुतमनिका साधन सेवक दे प्रभ दोवन जोग हर सिमरत तन मन हारया लह जाए विजोग साध संग हर गुण रम्यो बिन से सब रोग श्लोक गुतम जितन करण माया ने कुदम्यो हर भगत पावहीन नानक प्रभ बिसत केतरे हो केतरे कह तू थीरा साप्रीत जो लाही बिन बियन सियो बी अन्य नानक सची रती।

हृदय में प्रसन्ना देवी है, जिनसे हुई वेद कर अनुरथ गर्भ संख्या के कारज के पीछे सोनू ने कर्म अकृतनाहर विश्रे आया जो नी परमाशान स्नान अनेक शोधन पवित्र उतरंत नानक हर रचन कर मनो खना पूरी दीपन खाए मन सुंदर सच में सच कह नानक खबे दुखड़ो उलाहे पौड़ी कोट खा कोट अधा सब नाश होए सिमरत हर नाव मन चिंदे पल पाइये हके गुण गाहो जन्म मरण कह जन्म मरण कह काटिए नेचल।

कहता काम ना आया प्यो अनुग है जा को प्रभ को तिस हृदय नाम बसाया। साध संगत कह पाछे परियो जा नानक हर रस पाया। टुड मिल पंजमा कृपा निड वसो हृदय हर नीत कैसी बुझ करो परदासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ। दास तुमरे की पावो तूरा मस्क ले तालावो महापतत ते हुए पनीता खुद पनीता तहार कीर्तन गुण गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लगो कियो तुम्हारा पारो जो तू दे जही ए तृप्ते आनक तुम पायो। साध ही निकट जानो प्रभ अपनी प्रभ स्वामी सकल इन होया रहे हो। साधु संगत होए पर ताप ता प्राव आप लहे सदा सदा हम छोरे तुमरे तू प्राव हमरो मीरा। नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा। एक ओंकार कर दूजा दो पदे मांगू दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरे संग चले। मिले प्रा कृपा गुण गाम रहाओ राज माल अनेक भोग रस सकल तरवर की शाम। ताय ताय बो वेद को तावे सकल रथ काम बिन गोविंद वर जे चाहो दिशे सकल पाप है खाम। कौन अनसंतरीन मांगू मेरो मन पावे विश्राम। रोटी मिला पंजवा प्राव जी को नाम मने सदारे जी प्राण सुख इस मन को बतने हमारे रहो। नाम जात नाम मेरी पत है नाम मेरे परवारे नाम सिखाई सदा मेरे संग हर नाम मोह को निस्तारे। लिखे बेलास कही तो तेरे चरत न कछु श्रृंगारे इष्टमीत नाम नानक को हर नाम मरे मेरे भंडारे। टोटी मेला पंचमानी के गुण गाऊं मिट ही रोग मुख उज्जल मन निर्मल होई है।

पतत पवित्र भय राम कहत ही रहो। राम संग नाम देव जन को प्रज्ञा आई, एकादशी व्रत रहे चाहे को तीर्थ जाई। भानत नाम जो सुकृत सुमत पै गुरु मत, राम कह को ना बखुट गए। तीन छंडे छंडे खील अच्छे रहाओ, कुबार के कर हांडी अच्छे। राजा के कर संडी जो बामन बामन के कर रांडी अच्छे, रांडी सांडी हांडी जो। बाणिये के कर हींग।

लगाए है बिन हार प्रीत होर प्रीत सब तुठी ये तो थिन में विश्व सब जाए तू बेअंत सर कल पूरा किस कीमत कहीं ना जाए नानक सर तुम्हारी हर जियो भाव में तुम्हें खिलाए एक ओम का सतगुरु बुराड़ी मेला पंजवा कर पहला संत जना मेरा हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो वो हर जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम दवायो हर सुख हर नाम बढ़ाई गुर प्रसाद नानक मत पाई राग पलंग महला पहला कर पहला एक ओंकार सतनाम कथम को अकाल मूर्ति साल जक आरज गुप्संग पेश को तो दर गोस कुन करतार हक्का कबीर करीब तू बेअंत परवतगार दुनिया मुकामे फानी हत सह की दिल दानी मामसर।

साच शब्द सुख मैली गुरचरणी प्रवचित बाबुल दितड़ी दूर नावे कर पेये बल राम जीव रसी वेख दूर पर रावि कर सोइये बलराम जीव साचे पर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी प्रदाने संयोगी मेला थान सुहला गुणवंती गुर ज्ञाने सत संतोख सदा सच पले सच बोले फिर पाए नानक विच न दुख पाए गुरमत अंक समाए राग सुही महला पहला शांत कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम कर साजन आए साचे मेल मलाए सहज मलाए हर मन पाए पांच मिले सुख पाया साई वस्तु प्राप्त हुई जिस तेती मन लाया अंदन मेर प्या मन मान्या कर मंदर सोहाए पांच शब्द तुन आनंद बाजे हम कर साजन आए आवो मित प्यारे मंगल गावो नारे संत सच मंगल गावो ता प्रभु पावो सोहेला जुग चारे अपने कर आया थान सुहाया कार्य शब्द सुवारे ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रै पवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजन आया मन तन अमृत भिन्ना अमृत प्रेम रतना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत् विचारो जंत पेग तू सफलो दाता सहसर देवन हारो तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना सुनो सखी मन मोहन मोया तन मन अमृत पीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा गम पारा तुझ बिन कौन बुझाए सिर साधक सियाने केते तुझ बिन कौन कहाए काल बिकाल पै दवाने मन रखिया गुर ठाए नानक अवगुण शब्द जलाए गुण संगम प्रभु पाए राग सुही महला पहला करती जाए खूंकार सतगुर प्रसाद आवो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम कर अपने खड़ी तका मैं मन चाओ कनेरा राम मन चाओ कनेरा सुन प्रभु मेरा मैं तेरा परवासा दर्शन देख पई ने केवल जन मन दुख नासा सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सुभाए नानक साजन को बल जाइए साच मिले कर आए कर अपने साजना तन तन खरी सर श्री राम हर मोहड़ी साच शब्द ठाकुर देख रहसी राम गुण संक रहसी करी सरसी क्या रावी रंग राते अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरग विदाते तस्कर मार बसी पंचायण अदुल करे विचारे नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे वर पायडा बालड़िए असा मनसा पूरी राम फिर रावड़ी शब्द रली रव रहा न दूरी राम प्रभु दूर न होई कट कट सोई तिसकी नार सुभाई आपे रसिया आपे रावे ज्यों तिसकी वड्याई।

गुण गाए गोविंद अनद उपजे साध संगत संग बनी। जिन उद्यम किया ताल किरा तिसकी उपमा क्या गनी। अठसठ तीर्थ पुन किरिया महा निर्मल चारा। पतित पावन दर्द स्वामी नानक सब दयादारा। गुण निदान मेरा प्रभु भक्ता उसत कौन करी जय राम। संता की बेनंती स्वामी नाम महारस दी जय राम। नाम दीजे दान कीजे बिस्तर नाही एक खिनो। गुण गोपाल उचर रसना सदा गाये अन दिनो। जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजे। बिनवंत नानक इच पोनी देख दर्शन जीजे। राग सोही महला पंचवा शंत इक्यों अंकार सतगुर प्रसाद। मिठ बोलड़ा जी हर सजन स्वामी मोरा। और समर्थ की जी ओ कदे न बोले कौरा। कौरा बोल न जाने पूरन भगवान ने अवगुण को न चितारे। पतित पावन हर बिरद सदाए एक तिल नही पन्ने काले। कटकट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरा। नानक दास सदा सरनागत हर अमृत सजन मेरा। हो बिस्म भाई जी हर दर्शन देख अपारा। मेरा सुंदर स्वामी जी हो चरण कमल पग सारा। प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा तिस जेवड़े अवर न कोई। आदि अंत मत प्रभ रवया जल थल महियल सोई। चरण कमल जप सागर तरया पव जल उतरे पारा। नानक शरण पूरन परमेश्वर तेरा अंत न पारा वारा। हौ निमख न छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण अधारो। गुर सतगुर क्या कहया जी साचा अगम बेचारो। मेरे साधु दीना ते नाम लीना जन्म मरण दुख नाठे। सहज सुख अनंत कनेरे हौमे बिनती गाठे। सब के मद सब हूते बाहर राग दोख ते न्यारो। नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मन सदारो। मैं खोजत खोजत जी हर निचल सु कर आया। सब अवदर जठे जियो ता चरण कमल चितलाया। प्रभु विनासी हो तिसकी दासी मरे न आवे जाए। धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इश पुजाए। सूतर सिमरस गुण गावो करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया। नानक शरण कृपा निध स्वामी वडभागी हर हर गाया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की। श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा। सूहे वेस दुहागनी फिर पर रावण जियाए। फिर छोड़िया करे अपने मोही दूजे पाए। मिठा करके खाया बो साधो वध्या रोग। सदपा तार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग। गुरमुख होवे सुपलटिया हर राती साज तिगार। सहज सच फिर रावया हर नामा उर तार। आज्ञाकारी सदा सुहागन आप मेली करतार। नानक फिर पाया हर साचा सदा सुहागन नार। महला तीजा सुहविये ने मानिए सो सौ सदा समाल। नानक जन्म सवारे अपना कुल भी छुट्टी नाल। पौड़ी आपे तख्तर चायन आकाश पताला। हुक्मे तरती साजियन सची धर्मशाला। आप उपाय खपायदा सच्चे दीन दयाला। सबना रिजक संभाहेदा तेरा हुक्म निराला। आपे आप वरतदा आपे प्रतिपाला। सलोक महला तीजा सुहबते सोहागनी जा मन्ने ले सचनाओ। सतगुरे अपना मनाय ले रूप चढ़ीता अगला। दूजा नाही था ऐसा सिगार बनाया तुम बैला कदे न हो वही एहनस लागे पाओ। नानक सुहागन का क्या चहन है अंदर सच मुख उजला। खतमे माहे समाये महला तीजा लोका वे हो सोवी। सुहा वेस करी वेसी सो ना पाया कर कर वेस रही। नानक तिन सो पाया जिन्नी गुर की सिख सनी। जो तिस पावे सोतिये इन बिद संत मिली। पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बोपित संसारा। तेरा नाम न जापी केतड़ा सच अलख अपारा। इक नानो तो मेर लै गुर शब्द विचारा। सच रते से निर्मले हौ में तज विकारा। जिस तू मेले सो तद मिले सोई सचियारा। सलोक महला तीजा तुह भी ये सो तुहा सब संसार है। जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में झूठ सब बिन सी जाए। जो टिके ना विर्ष की शाओ गुरमुख लालो लाल है। जो रंग मजीठ चढ़ाओ उल्टी सख्त सिवे कर आई। मन वस्या हर अमृत नाओ। नानक बलिहारी गुर आपने जित मिलया हर गुण गाओ। महला तीजा सुहा रंग विकार है कंत न पाया जाए।
ਇਸ ਲੈ ਦੇ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਵਈ ਰੰਡ ਬੈਠੀ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮੁੰਦ ਇਆਨੀ ਦੁਮਨੀ ਸੂ ਹੈ ਵੇਸ ਲੁਬਾਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕਰ ਪੈ ਪਾਏ ਸਿਗਾਰ ਵਿਨਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜੇ ਚੱਲਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਆਪ ਪਾਇਨ ਆਪ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪਈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਰਮਾਈ ਮਨ ਮੁਖ ਠਾਰ ਨ ਪਾਇਨ ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਈ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੇ ਸੋਥੀਐ ਸਭ ਚਲੈ ਰਜਾਈ ਸ ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਸੋ ਹੈ ਵੇਸ ਕਾਮਨੀ ਕਲਖਨੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਪਰ ਪੁਰਖ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਉਸ ਸੀਲ ਨ ਸੰਜਮ ਸਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਖੁਆਰ ਜਿਸ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲੇ ਪਤਾਰ ਸੁਹਾਵੇ ਸਭ ਉਤਾਰ ਤਰੇ ਕਲ ਪਹਿਰੇ ਖਿਮਾ ਸਿਗਾਰ ਪਈਏ ਸਾਹੁਰੇ ਬਹੁ ਸੁਭਾ ਪਾਏ ਤਿਸ ਪੂਜ ਕਰੇ ਸਭ ਸਹਿਸਾਰ ਓ ਰਲਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਰਲੈ ਜਿਸ ਰਵੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਸ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਰਤਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਹਾ ਰੰਗ ਸੁਪਨੈ ਨਿਸੀ ਦਿਨ ਤਾਗੇ ਗਲਹਾਰ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਸੀ ਸਭ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਆਸ਼ਾਰ ਪੌੜੀ ਇਸ ਜਗ ਆਪ ਉਪਾਇਨ ਕਰ ਚੂਜ ਵਿਡਾਨ ਪੰਚ ਤਾਤ ਵਿਚ ਪਾਇਨ ਮੋ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨ ਆਵੇ ਜਾਏ ਪਵਾਈਏ ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨ ਇਕ ਨਾ ਆਪ ਬੁਝਾਇਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗਿਆਨ ਭਗਤ ਖਜਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਓਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੁਹ ਵੀਏ ਸੁਹਾ ਵੇਸ ਛੱਡ ਤੂੰ

मंदस हावी सोहनी जिस कर सहज पतार नानक सातन रावी है रावे रावण हार पौड़ी मोह कूड़ कटंब है मनमुख मुग्ध रता हामे मेरा कर्म ये किस साथ न लेता सिर ऊपर जमकाल न सूजई दूजे पर नेता फिर वेला हाथ न आवई जमकाल वस कीता जे हाथुर लिख पाए उनसे कर्म कमेता सलोक महला तीजा सतिया ए न आखियन जो मड़िया लग जलन नानक सतिया जानिए जे बेरे चोट मरन महला तीजा सीधी सो सतिया जानिए तीर संतोख रहन सेवन साई अपना नित उठ समलन महला तीजा कंता नाल महेलिया तेती अग जला जे जाने तेरे अपना सा तन दुख सहा नानक कंस न जाननी से क्यों अग जला पावे जीवो कै मरे दोरो भी ही पज जा पौड़ी सुख दुख सुख नालो पाया लेख करते लिखिया नावे जेवड़ होर दात नहीं जिस तिस रूप ना रिखिया नाम अखोट निदान है गुरमुख मन वसिया कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया सेवक पाई से जन मिले जिन हर जप जपया सलोक महला दूजा जिन्नी चलन जानिया से क्यों करे विथार चलन सार न जाननी कार्ज सवारन हार महला दूजा रात करण तन समझिए पलके चलन होए नानक नाल न चली फिर पछतावा होए महला दूजा बद्दा चट्टी जो परे ना गुण ना उपकार तेती खुशी सवारी है नानक कारज सार महला दूजा मनहट तरफ न जे पई जे बहुते काले तरफ जिने सत पाओ दे जन नानक शब्द विचारे पौड़ी करते कारण जिन किया सो जाने सोई आप सृष्टि उपायन फिर आपे तिन गोई जुग चारे सब पव थकी किन कीमत होई सतगुर एक बिखा लिया मन तन सुख होई गुरमुख सदा सलाइए करते करे सो होई सलोक महला दूजा जिन्ना पौ तिन ना पौ मुच पौ निप व्या नानक एहो पतंतरा तित दे भान गया महला दूजा तुर दे को तुरदा मिले उड़ते को उड़ता जीवते को जीवता मिले मुए तो मुआ नानक तो सलाई है जिन कारण किया पौड़ी सच त्यान से सचे गुर शब्द विचारी हामे मार मन निर्मला हर नाम उर तारी कोठे मंडप माणिया लग पए गवारी जिनकी ये तिसे न जाननी मनमुख गवारी जिस बुझाए सो बुझती सच्या क्या जंत विचारी सलोक महला तीजा कामन तो सिगार कर जा पहला कंत मनाए मत से जे कंत न आवई एवे बिरथा जाए कामन फिर मन मानिया तो बनिया सिगार किया तो परवान है जा सौ तरे प्यार पौ सिगार त भोल रस पूजन पाओ करे मन तन तो पे कंत को तो नानक भोग करे महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिगार तेजे कंत न आयो एवे पया विकार महला तीजा तन फिर ए न आखियन बहियन इकठे होए एक जोत दोए मूर्ति तन फिर कही है सोए पौड़ी पै बिन भगत न हो वई नाम न लगे प्यार सतगुर मिले पो उपजे पै पाए रंग तिवार मन तन मन रत्ता रंग स्यो हो मैं कृष्णा मार मन तन निर्मल अत सोहना पेट्या कृष्ण मरार पौ पाओ सब ते सदा सो सच वरते संसार सलोक महला पहला वा खसम तु वाओ जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुंद सर वेल वर्ष वराहो आप खड़ो वे आप कर आप ही ने आपा गुरमुख सेवा थाए पवे उन मन तत कमा मस्तक लहू मजूरिया मंग मंग खत्म दरा नानक पुर दर वे परवा तो दर ऊना नाहे को सच्चा वे परवा महला पहला उजल मोती सोहने रत्ना नाल जड़न तिन जर वैरी नानका जे बुढ़े थिए मरन पौड़ी सदा सलाही सदा सदा तन मन तोपे सिगार गुर सबदी सच पाया सच्चा गहर गंभीर मन तन हृदय रब रहिया हर ही राहीर जन्म मरण का दुख गया
फिर पवे ना फीर, नानक नाम सला तू हर गुनी गहीर। सलोक महला पहला, नानक ए तन जाल जिन जलिया नाम विसारिया। पौधी जाए पराल पिछे हाथ नाया बड़े तित निवंदे ताल। नानक मन के कम फिटिया गणत ना आवी, किसी लहस हम जा बगते ता तका नहीं। पौड़ी सच्चा अमर चलायन कर सच फरमान, सदा नह चल रव रहिया सो पुरख सुजान। गुर प्रसादी सेविया सच शब्द निशान, पूरा ठाट बनाया रंग गुरमत मान। अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान। सलोक महला पहला, नानक बदरा मालका पीतर तरयान। खोटे खरे प्रखियन साहिब कै दिबान। महला पहला, नामन चले तीरथी मन खोटे तन चोर। एक पाओ लसी नातिया दोए पा चढ़ियस होर। बाहर तोती तूमड़ी अंदर व्यस निकोर, साध पले अनातिया से चोर चोर से चोरा चोर। पौड़ी आपे हुक्म चलायदा जग तंदे लाया, एक आप ही आप लायन गुरते सुख पाया। दै दिस ए मन तावदा गुरु ठाकर हाया, ना वैनो सब लोच दी गुरमती पाया। तुर लिखिया मेट न सकिए जो हर लिख पाया। सलोक महला पहला, दोए दीवे चौदे हट नाले जी जेते जीते ते वनजारे। खोले हट हो आव पार जो पहुंचे सो चलन हार। धर्म दलाल पाए निशान नानक नाम लाहा परवान। कर आए वजी वदाई सच नाम की मिली वडियाई। महला पहला, राती होमन कालिया सोपेदा सेवन। दे बग्गा तपे कना कालिया काले वन। अंधे अकली बाहरे मूर्ख अंध ज्ञान, नानक नदरी बाहरे कबे ना पावे मान। पौड़ी काया कोट रचाया हर सच्चे आप, एक दूजे पाए खुआयन होमे विच व्याप। ए मानस जन्म दुलंब सा मन मुख संतापे, जिस आप बुझाए सो बुझती जिस सतगुर थापे। सब जग खेल रचायन सब वरते आपे। सलोक महला पहला, चोरा जारा रंडिया कुटियन दीबान। वेदीना की दोस्ती वेदीना का खान। सिफ्ती सार न जाननी सदा वसे सैतान। गदो चंदन खौलिए पीसा हु चौपान। नानक कूड़े कत्या कूड़ा तनिया तान। कूड़ा कपड़ कशिए कूड़ा पहनन मान। महला पहला, बांगा बुरगु सिंगिए नाले मिली कलान। एक दाते एक मंगते नाम तेरा परवान। नानक जिन्नी सुन के मन्या हो ते ना विटो करबान। पौड़ी माया मोह सब कूड़ है कूड़ो होए गया। हमें झगड़ा पायन झगड़े जगमुआ। गुरमुख झगड़ चुकायन इको रव रहया। सब आत्म राम पछानिया पौजल तर गया। जोत समानी जोत विच हर नाम समाया। सलोक महला पहला, सतगुर पीखिया दे मैं तू समरंथ दतार। हमें गर्भ निवारिय काम क्रोध अहंकार। लव लोभ पर जालिय नाम मिले आधार। एहनत नव तन निर्मला मैला कबू ना होए। नानक ए बिद छुटिय नदर तेरी सुख होए। महला पहला, इको कंत सबाइया जिती दर खड़िया। नानक कंते रतिया पूछे बातड़िया। महला पहला, सब कंते रतिया मैं दोहागन कित। मैं तन अवगन एतड़े खत्म न फेरे चित। महला पहला, हो बले हारी तेन को सिप्त जिना देवात। सब राती सोहागनी एक मैं दोहागन रात। पौड़ी दर मंगत जाचे दान हर दीजे कृपा कर। गुरमुख ले मिलाए जन पावे हर नाम हर। अनहद शब्द बजाए ज्योति ज्योत तर। हृदय हर गुण गाए जय जय शब्द हर। जग में वरते आप हर स्थिति प्रीत कर। सलोक महला पहला, जिन ना पायो प्रेम रस संत न पाया साओ। सुइए कर का पहना ज्यो आया त्यो जाओ। महला पहला, सौ ओलामे देने की राती मिलन सहंस। सिफ्त सलाहन छड़ के करंगी लगा हंस। फिट ए बेहा जीविया जित खाया वधाया पेट।
नानक सच्चे नाम बिना सबो दुश्मन हेत पौड़ी ढाडी गुण गावे नित जन्म सवारिया गुरमुख सेव सला सच्चा उर तारिया कर दर पावे महल नाम प्यारिया गुरमुख पाया नाम हो गुर को वारिया तू आप सवारे आप सिरजन हारिया सलोक महला पहला दीवा बले अंधे राजाए बेद पाप पाठ मत पापा खाए उगवे सूरुना जापे चंद जय ज्ञान पर गास अज्ञान मिटंत वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करे विचार बिन बूझे सब होए खुआर नानक गुरमुख उतरस पार महला पहला सब दे साधन आयो नाम न लगो प्यार रसना फिक्का बोलना नित नित होए खुआर नानक पाया करत कमावना कोई न मेटन हार पौड़ी जे प्रभ सलाहे अपना सो सो बापाए हमें विच दूर कर सच मन वसाए सच बानी गुण उचरे सच्चा सुख पाए मेल पया चिर विशिन्या गुर पुरख मेलाए मन मेला इव सद है हर नाम त्याए सलोक महला पहला काया कुमल फुल गन नानक गुप्त माल इनी पुली रो करे अवर के चुनिया डाल महला दूजा नानक तिना बसंत है जिन कर वस्या कंत जिनके कंत दिशा पुरी से एहनस फिर जलंत पौड़ी आपे बक्से दया कर गुर सत गुर बचनी अनदिन सेवी गुण रवा मन सच्चे रचनी प्रभ मेरा बेअंत है अंत किने न लखनी सतगुर चरणी लग्या हर नाम नित जपनी जो इच्छे सो फल पाए सी सब करे विच जचनी सलोक महला पहला पहल बसंते आगमन पहला मौल्यो सोए जित मौल्यो सब मौलिय तिसे ना मौल्य कोई महला दूजा पहल बसंते आगमन

जन पुरख सबाहा सबागा ईत ऊत जन सदा सहेले जन्म पदार्थ जीते अमोले जागत सोया जन्म गवाया माल तना जोरिया पाया पराया कौ कबीर।

जिसको शब्द सब बसावे अंतर चूके तिसे प्यासा हुक्मे बूझे चौपड़ खेले मन जिन टाले पासा जो जन जान पजे अवगत को तिनका कछु ना नासा कौ कबीर ते जन कबो न हारे टाल न जाने पासा तू ही लड़त कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा पंचे मागे हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला हर को लोगा मोक्यो नीत डसे पटवारी ऊपर पूजा कर मैं गुर पहे पुकारिया तिन हो लिया उबारी रहाओ नौ डाडी दस मावत रैयत बसन ना देही डोरी पूरी मापे नाही वो बस टाला लेही बेहतर कर एक पुरख समाया उन दिया नाम लिखाई धर्म राय का दफ्तर सोदिया बाकी रिज मना काई संता को मत कोई निंदो संत राम है एको का कबीर में सोगुर पाया जाको नाओ विवेको राग सोही वाणी श्री रविदास जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद ते की सार सुहागण जाने तजिव मान सुखिया सुख रलिया माने तन मन दे ता अंतर राखे अवरा देखना सुने अपाखे सोकत जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द ना पाई रहाओ दुखी दुहागण दोए पखहीनी जिन ना निरंतर भगत ना कीनी पर सलात का पंथ दोहेला संग न साथी गवन अकेला दुखिया दर्द वंद दर आया बोपे आस जवाब ना पाया कह रविदास शरण प्रभ तेरी जो जानो त्यो करगत मेरी तू ही जो दिन आवस सो दिन जाही करना कूच रहन थिर नाही संग चले है भी है हम भी चलना दूर गवन सिर ऊपर।

लगावे, कर सब कट पीतर हाट चलावे, कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम समार सवेरा, जन्म से रानो पंथ न स्वारा, सांझ परी दै दस अंधियारा, कह रविदास निदान देवाने, चेतस नहीं दुनिया फन खाने, सोही ऊचे मंदर साल रसोई, एक कर फन रहन न होई, ए तन ऐसा जैसे कास की जाती, जल गयो कास रल गयो, माटी रहाओ पाई बंद कटम सहेरा, ओए भी लागे काड़ सवेरा, कर की नार और तन लागी, ओ तो पूत पूत कर पागी, कह रविदास सबे जग लुटिया, हमको एक राम कह छुटिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही बाणी चेक फरीद जी की, तप तप लय लय हाथ मरोरो, बावल होई सो सोलोरो, तै तै मन मैं क्या रोस, मुझ अवगन तै नाही दोस, तै साहेब की मैं सार न जानी, जो बन खोए पाछे पछतानी, रहाओ काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली, फिर पेहून कते सुख पाए, जा होए कृपालता प्रभु मिलाए, विदन खूही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली, कर कृपा प्रभु साध संग मिली, जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेली, बाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बहुत पैनी, उस ऊपर है मार्ग मेरा, सेख फरीदा पंथ समार सवेरा, सूही लड़क बेड़ा बंद न सके, ओ बंधन की वेला, पर सरवर जब उचले तब तरण दहेला, हाथ न लायक सुंबड़े जल जाती टोला, रहाओ एक अपीनी पतली, सहकेरे बोला दुद्धा थनी न आवई, फिर होए न मेला, कहे फरीद सहेलियो सौ अलाए सी, हंस चलसी ढूमना ऐतन तेरी थीसी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरपौ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैपंग गुर प्रसाद, राग बिलावल महला पहला, चौप दे कर पहला, तू सुल्तान कहा हो मिया, तेरी कवन वड़ाई, जो तू दे सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कहना न जाई, तेरे गुण गावा दे बुझाई, जैसे सच में रहो रजाई, रहाओ जो कुछ हुआ सब किस तुझसे, तेरी सब असनाई, तेरा अंत न जाना मेरे साहिबा, मैं अंधले क्या चतराई, क्या हो कथे कथी कथे कथ देखा, मैं अकथना कथना जाई, जो दुद पावे सोई आखा, तिर तेरी वड़ियाई, एते कूकर हो बेगाना पौका, तिस इस तनताई, भगतहीन नानक जे होएगा, ता खसम नाओ ना जाई, बिलावल महला पहला, मन मंदर तन वेश कलंदर, कट ही तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बस है, बहड़ जन्म नायावा, मन बेदया दयाल सेती, मेरी माई कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई, रहाओ अगम अगोचर अलख अबारा, चिंता करो हमारी, जल थल महियल पर पुरलीना, कट कट जोत तुम्हारी, सिख मत सब बुध तुम्हारी, मंदर चावा तेरे, तुद्बिन अवर ना जाना मेरे, साहिबा गुण गावा नित तेरे, जी जंत सब शरण तुम्हारी, सर्ब चिंत तुद पासे, जो तुद पावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासे, बिलावल महला पहला, आपे

सतगुरु बुज बुझाई रहाओ मेरा प्रभ बिचरे हो मरो दुखाली सास गिरात जपो अपने हर पाली सदा सद बैरागन हर नाम निहाली अब जाने गुरमुख हर नाली अकथ कथा कहिए गुर पाए प्रभ अगम अगोचर देख दिखाए बिन गुर करनी क्या कर कार कमाए हमें मेट चले गुर शब्द समाए मनमुख विच

बिलावल महला तीजा कर पहला एक अंकार सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटुम्ब सहत स्यो जित हन खसम ना पाया पौड़ी चुकड़ी फिर हाथ न आवे अहला जन्म गवाया दूजा पाव न दे लिब लागन जिन हर के चरण विसारे जग जीवन दाता जन सेवक तेरे तिन के ते तय दुख निवारे रहाओ तू दयाल दया पत दाता क्या ए जंत विचारे मुक्त बंद सब तुझते होए ऐसा आख बखाने गुरमुख होवे सो मुक्त कहिए मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदार है हर नाड़े तिनकी गणत गति कही ना जाई सच्चे आप सवारे परम पुलाने से मन मुख कहिए ना उर्वार ना पारे जिसनो नदर करे सोई जन पाए गुर का शब्द समाले हर जन माया मह निसारे नानक पाग होवे जिस मस्तक काल मार विदारे बिलावल महला तीजा अतुल क्यों तोलिया जाए दूजा होए तसो जी पाए तिसे दूजा नाही कोई तिसरी कीमत कितो होए गुर प्रसाद वसे मन आए ताको जाने दुबिदा जाए रहाओ आप सराफ कसवटी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने एको सोए माया का रूप सब तिसे होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लागे लय तिस आए सत्व सच दिखा ले ता सच समाए आपे लेव सात है आपे आप बुझाए आपे जापे आपे सतगुर शब्द है आपे नानक आख सुनाए आपे बिलावल महला तीजा साहेब ते सेवक सेव साहेब ते क्या को कहे बेगाना ऐसा एक तेरा खेल बनया है सब मैं एक समाना सतगुर परचे हर नाम समाना जिस कर्म होवे तू सतगुर पाए अनदिन लागे सहज त्याना रहाओ क्या तेरी क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अभिमाना जब अपनी जोत खिचन तू स्वामी तब कोई करो दिखाव ख्याना आपे गुरु चेला है आपे आपे गुणी निदाना जो आप चलाए तेवे कोई चाले जो हर पावे भगवाना कहत नानक तू साचा साहेब कौन जाने तेरे कामा एक ना मैं कर मैं देवड़ियाई एक परम पवे अभिमाना बिलावल महला तीजा पूरा थाट बनाया पूरे देखो एक समाना इस पर पंच में सच्चे नाम की वड्याई मत को तरोग माना सतगुर की जिस नो मत आवे

अनोखा नो एक निदाना जत संजम तीर्थ ओना जगा का तर्म है कल मैं तीरथ हर नामा जग जग आपो आपना तर्म है सोध देखो वेद पुराना गुरमुख जिन्नी प्याया हर हर जगते पूरे परवाना कहत नानक सच्चे सो प्रीत लाए चूके मैं अभिमाना कहत सुनत सब सुख पावे मानत पाहे निदाना बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए सित कर बिलावल गुर शब्द सुनाए मंगल नारी गावे आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए होतेन बलहारी जिन हर मन वसाए हर जन को मिलिया सुख पाइय हर गुण गावे सहज सुभाए रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए हर जियो आप वसे मन आए आपे शोभा सद ही पाए गुरमुख मेले मेल मिलाए गुरमुख राते शब्द रंगाए निज कर वासा हर गुण गाए रंग चलूले हर रस पाए ए रंग कदे ना उतरे साच समाए अंतर शब्द मिटिया अज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सच राते तिन बहुड़ न फेरा नानक।

बिलावल महला तीजा। पूरे गुरते वड़ियाई पाई अचिंत नाम वस्या मणियाई हौ में माया शब्द जलाई दर साचे गुरते शोभा पाई जगदीश सेवक सेवो में अवर न काजा अनदिन अनद होवे मन मेरे गुरमुख मागो तेरा नाम ने वाजा रहाओ मन की प्रतीत मन ते पाई गुर पूरे गुर ते शब्द बुझाई जीवन मरण को संसार वेखे बहड़ ना मरे ना जम पेखे कर ही मैं सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभिमान सदा सद ही लागा सहज ध्यान अनदिन गावे एक को नाम इस जग में वड़े आई पाई पूरे गुर ते नाम ते आई जय देखा तै रहे असमाई सदा सुख दाता कीमत नहीं पाई पूरे पाग गुरु पूरा पाया अंतर नाम निदान दिखाया गुर का शब्द अतमीठा लाया नानक त्रिसन बुझी मन तन सुख पाया राग बिलावल महला चौथा कर तीजा एक ओंकार सदगुर प्रसाद उद्दम मत प्रभ अंतर जामी ज्यो पेरे त्यो करना ज्यो नटुआ तंत वजाए तंती त्यो वजय जंत जना जप मन राम नाम रचना मस्तक लिखत लिखे गुरु पाया हर हृदय हर वचना रहाओ माया गैर सत प्रमत है प्राणी रख ले वो जने अपना ज्यो प्रहलाद हर नाख सुद्रस्यो हर राख्यो हर रचना कवन कवन की गत मत कहिए हर किए पतित पवन ओटो वे टोर हाथ चम चमरे हर उदर्यो पर्यो सरना प्रभ दीन दयाल भगत पवतारण हम पापी पाप पपना हर दासन दास दास हम कहियो जन नानक दास दसना बिलावल महला चौथा हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मति शरणागत पुरख अजन्मा

मत हर रस पाइए होर त्यागो नै फल कामा रहाओ। हर जन सेवक से हर तारे हम निर्गुण राख उपमा, तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकर, हर जपिए वड़े करमा। नामहीन त्रिग जीवते तिन वड़ दुख सहमा, ओए फिर जोन पवाइए मंद पागी मोड़े करमा। हर जन नाम आधार है तुर पूरब लिखे वड़कर्मा, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जन्मा। बिलावल महला चौथा, हमरा चित लुभत मो बिखिया बो दुर्मत मैल परा, तुमरी सेव कर ना सके प्रभ हम क्यों कर मुग्ध तरा। मेरे मन जप नर हर नाम नर हरा जन

ताकत नर होची मत मदम जिन हर हर सेव न करा ते नर पागहीन दचारी ओए जन्म मोए फिर मरा जिनको हम हर मेलो स्वामी ते नाय संतोख गुर सरा गुरमत मेल गई हर पजया जन नानक पार परा बिलावल महला चौथा आवो संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बहुत है कल जुग केवट सब गुर शब्द करो मेरे मन हर गुण हर उचरो मस्तक लिखत लिखे गुण गाए मिल संगत पार परो रहाओ काया नगर में राम रस उत्तम क्यों पाये उपदेश जन करो सदगुर सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत हर रस पियो हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिखाओ गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब बिखरसो राम नाम रस राम रसायन हर सेव संत जनो चार पदार्थ चारे पाए गुरमत गुरमत नानक हर पजो बिलावल महला चौथा क्षत्रिय ब्राह्मण सूद वैस को जापे हर मंत्र जपैनी गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो नित

रहाओ अनक पावत कविये बहु तेरे सा होवे जे बात होवे नी अपना पला सब कोई बाचे सो करे जे मेरे चितना चितैनी मन की मत ते आगो हर जन ई बात कठैनी अनदिन हर हर नाम ते आवो गुरु सतगुर की मत लैनी मत सुमत तेरे वस स्वामी हम जंत तू पुरख जतैनी जन नानक के प्रभ करते स्वामी त्यो पावे जिवे जो पावे तिवे बोलैनी बेलावल महला चौथा अनद मूल अत्यायो पुरखोत्तम अनदिन अनद अनंदे धर्म राय की कान चुकाई सब चूके जम के छंदे जप मन हर हर नाम गोविंदे बड़पागी गुरु सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे रहाओ सकत मूड माया के बदक विच माया फिरे फिरंदे तृष्णा जल तके तके बादे जो तेली बलद पवंदे गुरमुख सेव लगे से उदरे बड़पागी सेव करंदे जिन हर जपया तेन फल पाया सब टूटे माया फंदे आपे ठाकुर आपे सेवक आप सब आपे आप गोविंदे जन नानक आपे आप सब वरते जो राखे तिवे रहंदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिलावल महला चौथा पड़ताल कर तेरवा बोलो पया राम नाम पतित बा पावनो हर संत भगत तारनो हर पर पूरे रहया जल थर ले राम नाम नित गाय हर दुख बिसारनो रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बिसारन हारा गुर पे त्या है मुख

दुर्मत रीत मन धन अंतर हर हरमंत नानक भगतन के कर सदा आनंद राग बिलावल महला पांचवा कर दूजा या नरिय के कर गावना एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे मैं मन तेरी टेक अवर स्यान पाबिरथिया प्यारे राखन को तुम एक रहाओ सतगुर पूरा जे मिले प्यारे सो जन होत निरा

गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तेना की जिन अपना प्रभ जाता, हर नाम अरादो नाम वखाने, हर नामे ही मन राता। सेवक जन की सेवा मांगे पूरे कर्म कमावा, नानक की बेनंती स्वामी तेरे जन देखन पावा। वड़पागी से काढ़िया प्यारे संत संगत जनावासो, अमृत नाम राधिय निर्मल मने होवे परगासो। जन्म मरण दुख काटिये प्यारे चूके जम की काने, तिना परापत दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाने। ऊच अपार व्यंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे, गावते उदरत सुनते उदरत बिन से पाप कनेरे। पशु प्रेत मुग्ध कौतारे पाहन पारे उतारे, नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे। बिलावल महला पंचमा देखे बनसी का त्यागरी, सखिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुर गई चजली, सुखी न होवत जियो। मान महत ना सकत ही काई सादा दासी थियो, नानक से दर तो बावंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंद ओरी चित परम सखिए मृग मृग तिरसना द्रम छाया, चंचल संग न चालती सखिए अंत तज जावत माया। रस पोघन अत रूप रस माते इन संग सुखी सुख ना पाया, तन तन हर साध जन सखिए नानक जिनी नाम से आया। जाए बहस बसो वड पागनी सखिए संता संग समाये, ते दुख न पुख न रोग व्यापे चरण कमल लिवलाये। ते जन्म न मरण न आमन जाना नेचर सरणी पाये, प्रेम विशो नामो ब्यापे नानक हर एक ते आये। दृष्ट तार मन भेदया प्यारे रतड़े सहज सुभाई, तेज सुहाई संग मेरे प्रीतम आनंद मंगल गुण गाये। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच्छ पुजाये, नानक अचरज अचरज स्यो मिलिया कहना कछ ना जाए। राग बिलावल महला पंचवा कर चौथा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक रूप सगलो पसारा आपे बनजू आप व्यवहारा। ऐसो ज्ञान बिरलोई पाए जत जत जाइए तत दृष्टाए, रहाओ अनक रंग निर्गुण एक रंगा आपे जल आपे ही तिरंगा। आप ही मंदिर आपे सेवा आप ही पुजारी आप ही देवा, आप है जोग आप ही जुगता नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंचवा, आप उपावन आप सदरना आप करावन दोष न लेना, आपन वचन आप ही करना आपन विपो आप ही जरना। रहाओ आप ही मस्त आप ही बोलना आप ही अचल ना जाई चलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना आप ही कटकट आप अलपना, आपे अवगत आप संगरचना का नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, फूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुरुवड़ पागी पाया, सिमर मना राम ना।

ਅਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਚੌਥਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਏਕੇ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਵਣ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਪਲ ਪਲ ਨਿਮਖ ਸਦਾ ਹਰ ਜਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ ਕਵਣ ਸੇ ਮਤ ਜਿਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਵੋ ਰਹਾਓ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਹਰ ਨਾਨਕ ਬਿਸਰਣਾ ਕਾਹੂ ਵੇਰੇ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਏ ਰੋਗ ਗਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਾਏ ਗੁਰ ਦੁਖ ਕਾਟਿਆ ਦੀਨੋ ਦਾਨ ਸਫਲ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਪਰਵਾਨ ਰਹਾਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਕਹ ਨਾਨਕ ਜਪ ਜੀਵੇ ਗਿਆਨੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਂਤ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਰਹਾਓ ताप पाप संताप विनाशे हर सिमरत किलबख सबनासे अनद करो मेरे सुंदर नारी गुरु नानक मेरी पैज सवारी बिलावल महला पंचवा ममता मोत्रो मद माता बंधन बाध्या अत विकराल दिन दिन छिजत विकार करत औद पाही फाथा जम कै जाल तेरी शरण प्रभ दीन दयाला महाविखम सागर अत पहरी उदरत साधु संगर वाला रहाओ प्रभ सुख दाते समरथ स्वामी जियो पिंड तब तुमरा माल प्रम के बंधन काटो परमेश्वर नानक के प्रभ सदा कृपाल बिलावल महला पंचवा सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिरद समारिया साध जना होए कृपाला विग से सब परवारिया कार्य सतगुर आप सवारिया वडी आरजा हर गोविंद की सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाओ बण तृण त्रिपवन रहे हरिया होए सगले जी सदारिया मन इच्छे नानक फल पाए पूरन इच्छ पुजारिया बिलावल महला पंजवा जिस ऊपर होवत दयाल हर सिमरत काटे तो काल रहाओ साध संग पचिए गोपाल गुण गावत टूटे जम की जाल आपे सतगुर आपे प्रतिपाल नानक जाचे साधरवाल बिलावल महला पंजवा मन में सिंचो हर हर नाम अनदिन कीर्तन हर गुण गाम ऐसी प्रीत करो मन मेरे आठ पहर प्रभ जानो नेरे रहाओ कह नानक जाके निर्मल पाग हर चरणी ताका मन लाग बिलावल महला पंजवा रोग गया प्रभ आप गवाया नींद पई सुख सहज कर आया रहाओ रज रज भोजन खावो मेरे पाई अमृत नाम रद माहे ते आई नानक गुर पूरे सरनाई जन अपने नाम की पैज रखाई बिलावल महला पंजवा सतगुर कर दी नींद अस्थिर कर बार रहाओ जो जो निंद करे इन ग्रहण की तिस आगे ही मारे करतार नानक दास ताकी सरनाई जाको शब्द अखंड अपार बिलावल महला पंजवा ताप संताप सगले गए बिन से ते रोग पार ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग रहाओ सर्व सुखा तेरी मंडली तेरा मन संजोग नानक प्रभ सु प्रसन्न पाए लह गए बेयोग बिलावल महला पंजवा काहू संग न चाल ही माया जंजाल उठ सिदारे छत्रपति संतन के ख्याल रहाओ अहम बुद्ध को बिन सना ए तुर्की ढाल बोजोनी जन्मे मरे भिख्या बिकराल सत बचन साधु कहत नित जपे गोपाल सिमर सिमर नानक तेरे हर के रंग लाल बिलावल महला पंजवा सहज समाल आनंद सुख पूरे गुरदीन सदा सहाय संग प्रभ अमृत गुणहीन रहाओ जय जयकार जगतर मै लोचे सब जिया सुप्रसन्न पए सतगुर प्रभ कछ बिघन ना थिया जाका अंग दयाल प्रभ ताके सब दास सदा सदा वडियाया नानक गुर के पास राग बिलावल महला पंचवा कर पंचवा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मृत मंडल जगता

पसार। एक चाल है एक चाल से सब अपनी वार, जिन पूरा सतगुर सेविया से असर हर द्वार। जिन नानक हर का दास है रख पैज मरार। गिलावल महला पंजवान लोकन किया वड्याईया, बैसंतर पागो जो मिले प्यारा अपना ते बोल कर गो। जो प्रभ जियो दयाल होए तो भक्ति लागो, लप्त रहे ओ मन वासना मिल गुर मिल ए त्यागो। रहाओ करो बेनती अतकनी ए जियो हो मागो। अर्थ आन सब वार्या प्रे निमख सुहागो, पंच संग गुर ते छुटे दोख अर रागो। हृदय पर गास प्रगट पया निस्वा सर जागो, शरण सुहागन गा आया जिस मस्तक पागो। कौ नानक तिन पाया मन तन सित लाओ। बिलावल महला पंजवां लाल रंग तिसको लगा, जिसके वड़ पागा मैला कदे न हो गई न लगे दागा। प्रभ पाया सुखदाया मिलिया सुख पाई, सहज समाना पीतरे छोड़या न जाई। रहाओ जरा मरा ना व्यापई फिर दुख न पाया, पी अमृत अगानिया गुर अमर कराया। जो जाने जिन चाखिया हर नाम अमूला, कीमत कही न जाइए क्या कह मुख बोला। सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण निद बानी, पावो तूर तेरे दास की नानक कुर्बानी। बिलावल महला पंजवां राखो अपनी शरण प्रभ, माय मोह कृपा धारे सेवा कछना जानो नीच मूर्खारे। मान करो तुद उपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हमें अपराधी सद पूलते तुम बसन हारे। रहाओ हम अवगन करे।

रहाओ घर पूरा हर जाती है नद कीचे भोग सासन कहवा ने मिलया संजोग जिसम सुख पाइए मैं से व्योग नानक प्रभु चरणांगति कर्ण कान जोग राग बिला।

ताप पावसा मेट रोए रोग शीतल मन पया गर पूरा राध्या सगला दुख गया राखन हारे राख्या अपनी करमया राहो बां पगड़ प्रव काढ़िया की ना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक नर पया लैमल महला पंजमा कर धर्म स्थिर थापिया नाम दीनो दान सब सेवा पार ब्रह्म की ताकि नहीं हान आपे ही प्रवरागता पंचन की आन जो जो चतवे साध जन सो लीता मान राहो चरण परे चरणार बिंद जिन प्रभ के प्राण सहज सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान बिलावल बिलावल महला पंजमा चरण कमल का आसरा दिन प्रभाप प्रभ शरणागति जन परे का सद प्रताप राखन हार पार प्रभता की निर्मल सेव राम राज रामदास पर कीने गुरुदेव रहाओ सदा सदा हर त्याये कुछ बिघन न लागे नानक नाम चलाये पै दुश्मन पागे दिलावन महला पंजमा मन तन प्रवराधिये मिल साध समागे उचरत गुण गोपाल जिस दूर से जम

काम करो मदमान होए बिनते अनुरागे आनंद मगन रस राम रंग नानक शरनागे बिलामन महला पंजमा जी जगत रस प्रभु के जो कहे शुक्र शुकरना पे प्रसन्न गोपाल रहे तो निकुछ नहीं करना दुख न लागे कदे तुद पार ब्रह्म चितारे जम कंकर ने नारी गुरसुख प्यारे राव करन कर्म समरथ।

साध संग मंगते कै सुन दास मलावे सुख सहज कल्याण रस परे सुख सहज कल्याण रस पूरे गुण कीन जी सगल दयाल पे हर हर नाम चीन रहाओ पूरे हो सर्वत्र मैं सब गुण गीर नानक भगत आनंद मैं देख प्रभ की पीर बिलावन महला पंजमा हरदास नींद तार प्रभ हुए कृपाल रख लिया अपना सेवक को मैं मुख निंद कुशार तुझे न जो एक को मीर जा तू गुर का दास पार ब्रह्म तू राख्या दे अपने हाथ रहाओ जीन का दाता एक है बिया नहीं होर नानक की बेनती है मेरा जोर बलामन महला पंजमा मीत हमारे साजना रखे गोविंद निंदक मृतक हुए गए तुम हुए अनचंद रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए पेते गुरुदेव जय जय कर जगत में सब जा की सेवा ऊंच पारा ग्रंथ हर सब जीव जिस हाथ नानक शरणागति जद कत मेरे साथ बिलावन महला पंजमा गुरपुरा राध्या हुए कृपाल मार्ग सब बताया टूटे जमजाल दुख भूख संसा मिटिया गावत प्रभ नाम से सुख आनंद रस पूर्ण सब काम रहाओ जलन बुझी शीतल पई।

नादुन कावत बोलत बोलत जाए रहाउ। सेवत सेव सेव साध सेव सुधा करो करताए। अबे दान पामो पुरख दात दाते मिल संगत हर गुण गाए। रसना गा रसना गा गा।

हम हो को सतगुरु मंत्र दृढ़ाए, अतल तल तल तना तुलिए भगत वसल कृपा कर पाए, जो जो चन पर गुरु नानक दान सुख पाए, मिलावन महला पंजमा प्रभ जी तू मेरे प्राण हदारे, नमस्कार डंडौत बंदना नानक कबार जाओ को बारे, रहाउ उठत बैठत सोवत जागते मन तुझे चितारे, सुख दुख तिस मन की दिथत जी आगे सारे, मेरी ओट बल बदन तुम ही तुम्हें मेरे परवारे, जो तुम करो सोई पल हमा हमरे पेट नानक सुख चरना रे, बिलामन महला पंजमा सुनियत प्रवतों सगल उदारन, मो मगन पतत संग प्राणी ऐसे मन बसारन बसारन, रहाओ सांच बिख बिख्या लै ग्रह जगिनी अमृतमन ते डारन, काम करो दिलो बरा रत निंदा ससन तक बदारन, इनते काड लिव मिर्सानी हार परे तम शारन, नानक की बिनंती परम पैसा संग साध संग रंग तारन, बिलावन महला।

दिन रात रहो कर कृपा अपने प्रभु किन्ने नाम ने अपने की किन्नी दात आठ पैर गुण गावत प्रभु के काम करो दे इष्टन ते जात तरफ ते काय पेक प्रदर्शन बतावसन रस भोग भोजन खात शरण चरण शरण नानक प्रभु तेरी कर कृपा सत संगत मिलात बिलामन महला पांचवा रख लिए अपने जन आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिन।

संपूर्ण शीतल संत दयाल दई काम करो तरिश्रा हंकारा तंते हुए सगले को सगल खोए खई सत संतोक दया तरम सोच संतंते ए मां मंत लई कौन नानक जिन मन अंध सत शांत।

पूर्ण काम रहौ। आप त्याग परिये नत रसना, आप त्याग परिये नत शरणी, गरते पाइये एन दान, जन्म मरण की।

हाथ सुली का हाथ कहीं न पुंजे सुली हुए मुआ ना पाक रहाओ काड काड कुठार खसन सिर काट्या खन में हो गए है खाक मंदा चित्रित चित्रित पतिया निनरतिया तन दीना था ताक पुत्र मीत तन किसी न रहो सो छोड़ गया सब।

जगत दार नाम खंड प्रताप दुख बन से सुख आन जा प्रवेश कृष्णा बुद्धि मन तन सच तराप नाथ को नाथ शरण समर्था सली सृष्ट को माई बाप भगत वसल पै पंज स्वामी गुण गावत नानक लाप लामन महला पंजमा जसते उपजाति जित शान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल केम होए कल्याण राव भरपूरा पेट मडभागी अंतर जानी सुगड़ सुजान हाथिए रखे करे अपने बड़ प्रसमरथ निमाया को मान परम प्रपै मंस गए कन पीतर अंधकार

0: अंतर जामी पुरख समानी अन बोलत ही जानो हाल, तन मन शीतल होए हमारो नानक प्रभु जीओ नदर निहाल। बिलामन महला पंजमा
1: रंग सदा प्रभु अपने साथ, तू हमारो प्रीतम मन मोहन तो जिन जीवन सकल अकाथ। राओ रंग तेरा कर्त खिन पितर, प्रभु मेरो नाथ को नाथ। जत अगन में जन आप उदारे, कर अपने दे रखे हाथ। शीतल सुख पायो मन तृपते, हर सिमरत कर्म सगले लाथ। निधन दान नानक हर सेवा, आवर सियाणप सगल काथ। बराबर महला पंजमा, अपने सेवक कहु न बसारू, और लागू स्वामी प्रभ मेरे प्रतम। गोविंद बचारू राओ पतित पावन, प्रभ वैद तुम्हारो हमरे दुख हृदय मत तारो। जीवन प्राण हर तन सुख तुम ही होमे, पतल कृपा कर जारू। जल विहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहत पत भारो। जन नानक व्यास चरण कमल मिटी, तेस दर्श

आकल विकल पईगर देखे हूँ लोट पोट हो पैया रहाओ हो निरखत फिरूं सब देश दसंदर मैं प्रभ देखन को बहुत मन चाहिया मन तन काट देऊं गुरु आगे जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाइया कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा रिद अंतर मन तन मीठ लगैया मस्तक काट देऊं चरण तल जो हर प्रभ मेले मेल मलैया चल चल सखी हर प्रभ पर बोधू कामन कर हर प्रभ लैया भागत वचल उआ को नाम कहियत है सारन प्रभु तिस पाछे पैया खिमा सिगार करे प्रभ खुशियां मन दीपक गुरु ज्ञान बलैया रस रस भोग करे प्रभ मेरा तिस आगे जियो कट कट पैया हर हर हार कंठ है बनया मन मोती चूर बड गहन गहनैया हर हर साधा सेज बिछाई प्रभ छोड़ न सके बहुत मन पैया कहे प्रभ अवर अवर कछ कीजे सब बाद सिगार फुकत फुकटैया क्यों सिगार मिलन को ताई प्रभ लिए सुहागन थुक मुख पैया हम तेरी तू अगम गुसाई क्या हम

दिनस रहन तिवे संसार आवा गौन किया कर तार निश्चल साच रिहा कल तार नानक गुरमुख बुझे को शब्द विचार बिलामन महला तीजा आद पुरुख आपे सृष्ट साजे जी जंत माया मोह पाजे दूजे पाए पर पंच लागे आवे जाए।

0: ਲਾਏ ਬਿਰਹੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸੰਘੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਬੇਰਾਗਨ ਰਾਮ ਚੰਦਨ ਤੀਰ ਸੁਗੰਧ ਰਸਾ ਹੋਮੇ ਵਿਖਤਿਆਗਨ ਰਾਮ ਈਤ ਊਤ ਨਹਿ ਡੋਲੀਏ ਹਰ ਸੇਵਾ ਜਾਗਨ ਰਾਮ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸੋ ਅਟਲ ਸੁਹਾਗਨ ਰਾਮ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਖੋਜੂ ਬਟਭਾਗਿਓ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਸਤ ਗਾਈਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗੇ ਰਾਮ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਹੀ ਸੇਵੀਏ ਪਾਈਏ ਫਲ ਮੰਗੇ ਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਪ ਅੰਤ ਤਰੰਗੇ ਰਾਮ ਇਕ ਤਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨ ਬਿਸਰੇ ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀਨਾ ਰਾਮ ਬਡ ਭਾਗੀ ਮੇ ਲਾਵੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਚੀਨਾ ਰਾਮ ਬਾਂ ਪਕੜ ਤੁਮ ਤੇ ਕਾਢਿਆ ਕਰ ਆਪਣਾ ਲੀਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਾਨਕ ਜੀਵੇ ਸੀਤਲ ਮਨ ਸੀਨਾ ਰਾਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਹਿ ਸਕੂ ਪ੍ਰਭ ਅੰਦਰ ਜਾਮੀ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਰੈਣੇ ਪਏ ਪਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਸਭ ਇਸ਼ਟ ਜਾਮੀ ਰਾਮ ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਜਪ ਹੈ ਸਭੂ ਕਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਅੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਸੰਗੇ ਜੋ ਲੋਣੇ ਨੀਕੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਤ ਇੱਛਾ ਪੁੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਸਾਜਨ ਜੀ ਕੇ ਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਪਾਇਆ ਵਿਖਿਆ ਰਸੀ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਨਕ ਜਲ ਜਲੇ ਸਮਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤਮੀ ਕੇ ਰਾਮ ਬਲਾਵਲ ਕੀ ਬਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਉੱਤਮ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਗਾਵਿਆ ਕਰ ਨੰਦ ਬਿਲਾਵਲ ਜਰਾਗ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ ਤੁਰ ਮਸਕ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਸਭ ਦਿਨਸ ਰਹਿਣ ਗੁਣ ਉਚਰੇ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਉਰ ਲਿਵਰ ਲਾਗ ਸਭ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਖਿਰਿਆ ਹਰਿਆ ਵਾਗ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਗੁਰ ਚਾਨਣ ਗਿਆਨ ਚਿਰਾਗ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵੇ ਦੇਖ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਘੜੀ ਮੁਖ ਲਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਬਲਾਵਲ ਤਬ ਹੀ ਕੀਜੀਏ ਜਬ ਮੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਨਾਰਾਗ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਰਾਗ ਨਾਦ ਛੋੜ ਹਰ ਸੇਵੀਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੀਏ ਚੁੱਕੇ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਗਮ ਹੈ ਸਭ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਸਭ ਜਗਤ ਸਪਾਇਆ ਤੁਧ ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈਏ ਆਪੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਹਰ ਧਿਆਵੂ ਭਗਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਬਲਾਵਲ ਨਾ ਹੋਵੀ ਮਨ ਮੁਖਤਾਏ ਨਾ ਪਾਏ ਪਖੰਡ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਮਨ ਹਟ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਸ਼ਬਦ ਥਾਏ ਨਾ ਕੋਈ ਕਥਾਏ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਵਿਚਾਰੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਆਪੇ ਆਪ ਸਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਥਿਆ ਮਨ ਆਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਬਲਾਵਲ ਕਰੂੰ ਤੁਮ ਪਿਆਰਿਓ ਏਕ ਸਿਓ ਲਿਵਲਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋ ਕੱਟੀਏ ਸੱਚੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਸਦਾ ਬਲਾਵਲ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਵਹਿ ਵਹਿ ਭਾਉ ਕਰ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਨਾਏ ਪੌੜੀ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਪ ਹੈ ਸੋ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਮਿਤ ਹਰ ਸਭ ਕੋਈ ਹਰ ਕੇ ਬਸ ਭਗਤਾਂ ਕਹਿ ਆਨੰਦ ਘਰ ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਮੇਲੀ ਸਰਬਤ ਸੋ ਨਿਸਲ ਜਨ ਟੰਗ ਧਰ ਹਰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਹੈ ਖਸਮ ਸੋ ਭਗਤ ਜਨ ਚਿਤ ਕਰ ਤੁਧ ਅੱਪੜ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਸਭ ਚੱਖ ਚੱਖ ਪਵੇ ਝੜ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਬ੍ਰਹਮੇ ਬਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਵਸੇ ਹੋਮੇ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਗੁਣ ਰਵੇ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਇਸ ਜਗ ਮੇ ਬਿਰਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਚਿਤ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਹਰ ਸੱਚਾ ਸੇ ਨਾਮ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਨ ਲਗੋ ਭਾਓ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਕਮਾਵਣਾ ਅੰਤ ਧੀਰਗ ਬੋ ਸੁਆਓ ਮਨ ਹਟ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਧਨ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈਏ ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਏ ਸਾਈ ਪਾਈਏ ਜੇ ਨਾਮ ਤਿਤ ਲਾਈਏ ਗੋਜ ਗੱਲ ਜੀਆਂ ਕੇ ਕੀਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹਰ उपदेश दे सब दुख सब भुख ले जाइए जिस पूर्व होवे लिखिया सो हर गुण गाइए श्लोक महला तीजा सत गुर ते खाली को नहीं मेरे प्रभ मेल मिलाए सत गुर का दर्शन सफल है जेहा को इच्छा तेहा फर पाए गौर का शब्द अमृत है सब तृष्णा भुख गुआए हर रस पी संतोख हुआ सच बसिया मन आए सच त्याए अमरा पद पाया आनंद शब्द बजाए साचो दै दिस पथरिया गौर के सिर सवाए नानक जिन अंदर सच है से जन छपे न किसे देश पाए महला तीजा गौर सेवा ते हर पाइये गुर सेवा ते हर पाइये जा को नदर करे मानस ते देवते पे साची भक्त जिस दे होमे मार मलायन गौर के शब्द सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वड्याई दे पौड़ी गौर सतगुरु विच नावे की बड़े बड़ी वड्याई है हर काते आप बधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन उन अंदर हृदय पाई निंदक दुष्ट वड्याई वेख न सकन उना पराया भला ना सुखाई क्या होवे किस की चख मारी जा सच्चे सिंह बने आई जे गल काते पावे सा नित नित चढ़े सवारी सब चख चख मरे लुकाई श्लोक महला त्रीजा त्रैगे आसा दूजे भाव की जो मोह माया चित लाए हर सुख पलर त्याग त्यागया नाम सार दुख पाए मन मुख ज्ञानी अंदले जन्म मरे फिर आवे जाए कार्य सिद्ध न होवे अंत गया पछताए जिस गुरमुख होवे तिस सतगुर मिले सो हर हर नाम त्याए नाम रते जन सदा सुख पाए न जन नानक तिन वल जाए श्लोक महला तीजा आसा मनसा जग मोहि जिन मोहया संसार सब के जम के चीरे विच है जेता सब अकार हुक्मी ही जम लगदा सो उबरे जिस वास्ते करतार नानक गौर प्रसादी ए मन ता तरे जे छोड़े हंकार आसा मनसा मारे निराश होए गौर शब्दी विचार पौड़ी जिथे जाइए जगत में तिथे हर साई अगे सब आपे बतदा हर सच्चा सन्याई कूड़ यारा के मुंह फिटके है सच भक्त बड़ियाई सच सहर सच न्याओ है फिर निंदक साई जन नानक सच राधिया गौरमुख सुख पाई श्लोक महला तीजा पूरे भाग सतगुरु पाइये जे हर प्रभ बख्श करे उपावा सिर उपाव है नाउ बड़ियाई होए नाउ है प्राप्त होए अंदर शीतल शांत है हृदय सदा सुख होए अमृत खाना पहनना नानक नाओ हम बड़ियाई होए महला तीजा ए मन गुर की सिख सुन पाए गुण निदान सुख दाता तेरे मन वसे होमे जाए अभिमान नानक नदरी पाइये अमृत गुणी निदान पौड़ी जितने पातशाह शाह राजे खान उमराव सिकदार है तितने सब हर के किए जो कुछ हर करावे सो ओह करे सब हर के अर्थिये सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुरु का बल है तिन सब वन चारे खानी सब सृष्टि गोले कर सतगुरु अगे कार कमावन को दिए हर सेवे की ऐसी वड्याई देखे हर संतो जिन बिचों पाया नगरी दुश्मन दूत सब मार कढ़िए हर हर कृपाल हो भक्त जना ऊपर हर अपनी कृपा कर हर आप राख लिए श्लोक महला तीजा अंतर कपट सदा दुख है मनमुख ध्यान लागे दुख विच कार कमावने दुख बाते दुख आखे आगे करनी सतगुर भेटिए ता सच नाम लिव लागे नानक सहजे सुख होए अंदरों भरम पौ भागे महला तीजा गौरमुख सदा हर रंग है हर का नाओ मन पाया गौरमुख वेखण बोलना नाम जपत सुख पाया नानक गौरमुख ज्ञान प्रगासिया तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया महला तीजा मनमुख मैले मरे गवार गौरमुख निर्मल हर राख उरधार पानत नानक सुनो जन पाई सतगुर सेवे होमे मिल जाई अंदर संसा दुख व्यापे सिर तंदा नित मार दूजे पाए सुते कबू न जागे माया मोह प्यार नाम न चेते शब्द न विचारे ए मनमुख का विचार हर नाम न पाया बिरथा जन्म गुआया नानक जन्म मार करे खुआर पौड़ी जिसनु हर भगत सच बसियन सो सच्चा सा तिसकी मताजी लोक करता हो हट न बथ न बसाहो भगत जना को बख्शियन सो सच्चा साहो तिसकी मताजी लोक करता हो हट न बथ ना बेसाहो भगत जना को सन मुख होवे सो हर रास ले बेमुख पस पाहो हर के नाम के व्यापारी हर भगत हर जम जगाती तिना नेड़ न जाह जन नानक हर नाम तन लद्या सदा बेपरवाह श्लोक महला तीजा इस जग में भगती हर तन खटिया होर सब जगत भरम भलाया गौर पर साधी नाम मन वसिया आंदिन नाम त्याया बिखिया माहे उदास है होमे शब्द जलाया आप तरिया कुल उदरे धन जनेंदी माया सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे सिउ दे बुलाया ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण भुले होमे मोह बधाया पंडित पढ़ पढ़ मुनि भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले बिन गुर तत् न पाया मन मुख दुखिये सदा भरम भुले तिनी बिरथा जन्म गुआया नानक नाम रते सोई जन समझे जे आपे बख्श मनाया महला तीजा नानक सो सलाइए जिस बस सब कुछ होए तिसे सरेवु प्राणियो तिस बिन अवर न कोए गौरमुख अंतर मन वसे सदा सदा सुख होए पौड़ी जिनी गुरमुख हर नाम धन न खट्यो सो दुवालिए जुग माहे ओह मांग दे फिरे सब जगत में कोई मुथुक थुक न तिन को पाहे पराई बखीली करे अपने प्रतीत खोवन सग बाप ही आप लखाए जिस धन कारण चुगली करे सो धन चुगली हाथ न आवे ओ पावे तिसे जाए गौरमुख सेवक पाए हर धन मिले तिथों कर्महीन ले सके होर थै देश दसंदर हर धन नाहे श्लोक महला तीजा गौरमुख संसा मूल न होवी चिंता बिचो जाए जो कुछ होए सो सेजे होए कायना कछू न जाए नानक तिन का आख्या आपे सुने जय लैन पन्ने पाए महला तीजा काल मार मानसा मने सुमानी अंतर निर्मल नाओ निज कर बासा सदा नाओ अन दिन जागे कदे न सोवे सहजे अमृत प्याओ मीठा बोले अमृत बाणी आने अन दिन हर गुण गाओ निज कर बासा सदा सोंदे नानक तिन मिलिया सुख पाओ पौड़ी हर धन रतन जेहवरी जे गौर हर धन हर पासों देवाया जे किसे कै दिस आवे ता कोई कै मंग लै कै कोई लाए कोई कह दवाए हर धन जोर किते किसे ना नाल ना जाए बंडाया जिसनु सतगुरु नाल हर हर सरदा ले तिस हर धन की बंड हथ आवे तिसनु करते तौर लिख पाया जिस हर धन का कोई शरीक नहीं किसे का खत नहीं किसे का सीव बने रोल नहीं जो को हर धन की वकीली करे तिस का मुंह हर चौं कुंडा विच काला कराया हर के दिते नाल किसे जोर वकीली ना चली दै नित नित चढ़े सो आया शोक महला तीजा जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार जित द्वारे उभरे तिते लै उवार सतगुर सुख वखालिया सच्चा शब्द विचार नानक अवन सूजी हर बिन बख्शन हर महला तीजा होमे माया मोनी दूजे लगे जाए ना ए मारी ना मरे ना ए हट बकाए गौर के शब्द पर जालिए ता ए बिचो जाए तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए नानक माया का मरण शब्द है गौरमुख पाया जाए तौड़ी सतगुर की बड़ियाई बड़ियाई सतगुर दित्ती तुरों कर्म बुझ निशान पुती भतीजी जवाई सकी आगों पिछों टोल डिठा लहन सबना का अभिमान जिथे को वेखे तिथे मेरा सतगुर हर बख्शो सब जहान जे सतगुर नू मिले मने सो हालत पालत सीजे बेमुख होवे सो फिरे प्रेस्त थान जन नानक के वल हुआ मेरा स्वामी, हर सज्जन पुरख सुजान पौंदी पैत देख के सब आए पए, सतगुर की पैरी लहन सबना प्या मनो गुमान, सलोक महला पहला कोई वाहे कोई लुने के पाए खलियान, नानक एवन जापी कोई खाए दान, महला पहला जिस मन वख्या करिया सोए, नानक जो पावे तो होए पौड़ी पार ब्रह्म दयाल, सागर तारिया गुर पूरे मिरवान पारम पौ मारिया, काम क्रोध विकराल दूत सब हारिया, अमृत नाम निदान कंठ उतारिया, नानक साधु संग जन्म मरण सुवारिया, श्लोक महला तीजा जिन्नी नाम विसारिया, कूड़े कहण कहान पांच चोर तिना घर मोहन होमे अंदर सन, साकत मुठे दुरमति हर रासना जनान, जिन्नी अमृत भरम लुटाया बिख सियो रचे रचान, दुस्ता सेती पिर हठी जन सियो वाद करान, नानक साकत नरक पाए जम बदे दुख सहन, पाइए किरत कमाव दे जीवे राखे तिवे रहन, महला तीजा जिन्हें सतगुर सेविया तानन बाने तिस, सास ग्रास सदा बन वसे जम जोहे न सके तिस, हृदय हर हर नाम रस कबला सेवक तिस, हर दासा का दास होए परम पदार्थ तिस, नानक मानता जिस प्रभ बसे हो सद करवाने तिस, जिनको पूर्व लिखिया रस संत जनास्यों तिस, पौड़ी जो बोले पूरा सतगुरु सो परमेश्वर सुनिया, सोई बातिया जगत में घट घट मुख भणिया, बहुत वड़ियाईया साहबे न जाही गणिया, सच सहज आनंद सतगुर पास सच्ची गुरु मणिया, नानक संत सवारे पार ब्रह्म सत्य सिंह बणिया, श्लोक महला तीजा अपना आप न पछाणी, हर प्रभ जाता दूर गुर की सेवा बिसरी, क्यों मन रहे हदूर मन मुख आप जन्म गुआया, झूठे लालच कूर नानक बख्श मिलायन, सच्चे शब्द हदूर महला तीजा, हर प्रभ सच्चा सोला गुरमुख नाम गोबिंद, आंदिन नाम सलाहना हर जपया मन आनंद, बड भागी हर पाया पूर्ण परमानंद, जन नानक नाम सलाया वर्ण मन तन भंग, पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुर का फिर सरन गुरु आवे, पिछले गुना सतगुरु बख्श ले सत संगत नाल लावे, ज्यों मी बुठे गलिया नारब तो ब्याह का जल जाए पवे, जिस सरसरी सरसरी मिलत पवित्र पावन हो जावे, ए वड्याई सतगुरु निर्वैर विच जित निर्वे तृष्णा पख उतरे, हर शांत तर तर आवे, नानक ए चज देखो मेरे हर सत्य साखी, सतगुरु नु मने सो सबना पावे, सद बलाबल बाणी भगतां की कबीर जीओ की एकमकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, ऐसो ए संसार पेखना रहन न को उपाइये रे, सुदे सुदे रेग चलू तुम नदर कुतता दवाइये रे, रहाओ बारे बुद्धे तोरने पहिया सब हूँ जम ले जाइये रे, मानस बपरा मूसा तीनों मीच बुलाइये पाई खाइये रे, तनवानता हरन दान मन ही ताकी कुछ नकीनी रे, राजा पारजा समकर मारे ऐसो काल बढ़ानी रे, हर के सेवक जो हर पाए तेन की कथा नरारी, आवे न जाए न कब हूँ मरते पार ब्रह्म समझारी, पुत्र कलतल सिमी माया ए तो जो जी जानी रे, कैत कबीर सुनोरे संतो मिले सानक पानी रे, बलाबल विद्या ना करूं बाद नाही जानू, हर गुण कथत सुनत बहरानो मेरे बाबा, मैं बौरा सब खलक सयानी सयानी, मैं बौरा मैं बिगड़ियो बिगड़े मत बौरा, रहाओ आप ना बौरा राम ना कियो बौरा, सतगुर जार गियो परम मोरा, मैं बिगड़े अपनी मत खोई मेरे परम भलो मत कोई, सो बौरा जो आपना पछाने आप पछाने ता एको जाने, अब ना माता सो कहूं ना माता कह कबीर, रामे रंग राता बलाबल ग्रह ताज बन खंड खा जाइए, चून खाइए कंडा अजो बेकार, रामे रंग राता मेरे रान अजो बेकार, ना छोड़ी पापी मन मंदा क्यों छुटू कैसे तारू पावजल निद पारी, रात रात मेरे बीठला जन शरण तुम्हारी रहो। बिखे बिखे की वासना तजिए नाहीं जाई, मनक जतन कर अकन जत कर राखिए फिर लपटाई। जरा जीवन जोगन गया किस किया नकनीका, ए जीरा निर्मोलक कोडी लाग मीका। को कबीर मेरे माधव तू सर्व व्यापी, तुम संसर नाहीं दयाल मोह संसर पापी। बिलावल नित उठ कोरी कागर आने, लीपत जियो गयो ताना बाना कछु न सूझे। हर हर रस लपट्यो हमारे कोल कोने राम कहो। जब की इमाला लई न पुते तब ते सुख न प्यो। रहाओ सुनो जिठानी सुनो दरानी, अचरज एक प्यो सात सूत इन मुंडिये खोए। मुंडिया क्यों न मुयो सर्व सुखा का एक हर स्वामी। सो गौर नाम दियो संत प्रहलाद की तेज जन राखी। हर नाग से नाथ बदारियो घर के देव पितर की छोड़ी। गौर के शब्द लियो कहत कबीर सगल पाप खंडन। संता लै उदरियो बराबर महला, बिलावल को हर समान नाही राजा। ए भूपत सब दिस सार में झूठे करत दिवाजा। सके न अंदाजा चेत चेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा। कह कबीर संसा परम चूके त्रूप लह प्रहलाद नवाजा। बराबर राख लियो हम ते बिगरी सील धर्म जप भगत नकीने। हो बिगानी टेड पगरी रहाओ अमर जान सांची एक आया। ए मिथ्या काची गागर जिने नवाज साज हम किए। तिसे विसार अवर लगरी साधक तोहे साध नहीं कहियो। सारन परे तुमरी पगरी कह कबीर ए बिनती सुनिए मत। लागो जम की खबरी बुलावर धर्मादे ठंडे दरबार तुझ बिन
1: दर्शन दीजे खोल कबार। रहो तुम तन तनी उदार त्यागी, श्रवणन सुनियत सुजस सुतुमार। मांगो काहे रंक सब देखूं, तुम ही ते मेरो निस्तार। जय देव नामा विप सुदामा, तिनको कृपा पई है अपार। कह कबीर तुम समरथ दाती, चार पदार्थ देत न बार। बिलावल

नंदूर कर बबरे छोड़ कपट नित हर भज बबरे हरहाओ जय तू जा सोत्र भवन भोगी कह कबीर कैसो जग जोगी बिलावल इन माया जगदीश गोसाई तुमरे चरण बिसारी किंचित प्रीत न उपजय जन कौ जन कहाँ करें बेचारी रहाउ त्रिगतान त्रिगतानो त्रिग हि माया त्रिग त्रिग मत बुद फन्नी इस माया कौ दृढ़ कर रखो बांधी आप बचन्नी क्या खेती क्या लेवा देवी परपंच झूठ गुमाना कह कंबी कबीर ते अंत बिगुते आया काल निदान बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आचे कमल अनूप परम ज्योत परखोतम जा कह रेख न रूप रे मन हर पाज ब्रह्म तजो जग जीवन राम रहाउ आवत कछु न दिसई न दिस जात जह उपजय बिन सह तही जैसे पुरवन वास मिथ्या करत माया तजी सुख सहज विचार कह कबीर सेवा करो मन मंज बिमरार बिलावल जन्म मरण का प्रम गया गोविंद लिव लागी जीवत सुन समान अंगुर साखी जागी रहाउ काशी ते तुन उपजय तुन काशी जाई काशी फूटी पंडता तुन कहां समाई त्रिकुटी संध मैं पीके आ घट हूं घट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी घट माय त्यागी आप ते जाने आ तेज तेज समाना कहो कबीर अब जाने आ गोविंद मन माना बिलावल चरण कमल जा कर दय बसे सो जन क्यों डोल देव मानो सब सुख नौ निद कै सहज सहज जस बोलै देव रहाउ सब एह मत जाओ सब मह पेख कुटल गांठ जब खोल देव बारंबार माया ते अटकै लै नर जा मन तोल देव जय ओं जाई तही सुख पावे माया तास न झोलै देव कह कबीर मेरा मन मानिया राम प्रीत कियो लै देव बिलावल बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सफल जन्म मोक गुर की ना दुख विसार ना सुख अंतर लीना दुख विसार सुख अंतर लीना ज्ञान अंजन मोक गुर दीना राम नाम बिन जीवन मन हीना रहाऊ नाम दे सिमरन कर जाना जग जीवन सौ जियो समाना बिलावल बाणी रविदास भगत की एक ओंकार सतगुर प्रसाद दारद देख सब को हसै ऐसी दशा हमारी अष्ट दशा सिद्ध कर तलै सब कृपा तुम्हारी तू जानत मैं किस नहीं भव खंडन राम सगल भव जीत शरणागति प्रभु पूर्ण काम रहाऊ जो तेरी शरणागता तिन नाही भार ऊच नीच तुम ते तरी ना आलज संसार कह कबीर कत कथा पौ काय करी जय जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमानी जय बिलावल जे कुल साध वैसन होई वर्ण वर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानी है जग सोई रहाऊ ब्राह्मण बैस सूद अर खतरी डोम चंडाल मलेश मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारी कुल दोई धन सो गाऊ धन सो ठाऊ धन पुनीत कुटंब सब लोए

ना ही सुख सागर पूर्ण परमेश्वर। हर ना चेते ओ मन माही रहो। अमृत कौरा बिख्या मीठी, सगत की बिदे नैनो डीठी, कूड़ कपट अहंकार रजाना। नाम सुनत जन बसू दिसाना, माया कारण सद ही चूरे, मन मुख कभे ना उस्त करे। निर्भर निंकार जतार, तिस्यो प्रीत न करे गवार, सब सहा सिर सचा सा बे मुहताज, पूरा पाशा मोह मगन लप्यो भ्रम गिरा। नान करिए तेरी मेहर, राम गली मिला पन्न रैन दिस जपो रह हर नाओ, आगे रह गए पाओ थाओ, सदा आनंद न होवी सोग, कभू न व्यापे हो मैं रोग। हो जो संतो हर बेर अम ज्ञानी, दुश्मन दिसम पै बिसमांदा, परम गत पावे हर सिमर प्राणी। राहो गन मिन देखो सगल विचार, ना मिना को सके ना तार, सगल पाप न चाले संग, पाप जल तरिये प्रभ के रंग। देही धोत न उतरे मैल, देही तो न उतरे मैल, हमें व्यापे दुबदा वह फैल। हर हर औखद जो खन खाए, जन खाए तांका रोग सगल मिट जाए। कर कृपा पार ब्रह्म जाल, मंते कहू ना विसारो गोपाल, तेरे ताकि होमा तूर, नानक की प्रभ श्रद्धा पूर। राम कली मेला पंडवा, तेरे शरण पूवे गुरदेव, तुद बिन दूजा नहीं हो कोए। तू सम्राट पूर्ण प्रावत ब्रह्म, सोतै पूरा जिस कर्म, तारन तारन प्राव तेरो नाओ, एका शरण गही मन ते मेरे। तू दूजा नहीं थाओ रहो, जप जप जीवा तेरी नाओ, तेरा नाओ आगे डर के पाऊ थाओ। दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिन से चाराचे हर नाए। चरण कमल से लागी प्रीत, गुरपुरे की निर्मल रीत, पौ भागा निरपौ मन बसे, अमृत नाम रसना नित जपे, कोट जन्म के काटे फाहे। पाया लाभ साचा धन लाहे, टोटना आवे अखट भंडार, नानक पात सोहे हर द्वार। राम कली मेला पंजवा, रतन जवेर नाम सतसंग तो ज्ञान, सुख सहज दया कका पोता, हर भगता हवाले होता, मेरे राम को भंडार। खात खाते कछ टोटरा आवे, अंत नहीं हर पारा बार। रहाओ कीर्तन अरिन मूर्त हीरा, आनंद गुणी गिरा, अनहद बाणी पूंजी, संता सरात रखी पूंजी, संसमाद गुफा ता आसन, केवल ब्रह्म पूरन ता पासन। भगत संग प्रगोष्ठ करत, ता रख न सोग न जन्म न मरत, कर कृपा जिस आप दवाया, सा संग तिन हर धन पाया। दयाल पुरख नानक दास, हर मेरी वतन हर मेरी रास। ब्रह्म गुरी मिला पंचमा, महिमा ना जाने भेद, ब्रह्मे नाही जाने भेद, अवतार ना जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म ब्यंत, अपनी गत आप जाने। सुन सुन अवर बखाने राव, शंकरा नहीं जाने भेव, खोजत हारे वे देव, देविया नहीं जाने परम, सब ऊपर अलख पार ब्रह्म, अपने रंग करता केल, आप विछोरे आपे मेल। आ एक भर में एक भगती लाए, अपना किया आपे जनाए, अपना किया आप जनाए। संता की सुन साची रह सखी, सो बोले जो बिखे अखी, नहीं लीब जिस पुन्ना पाप, नानका प्रभ आपे आप। राम कली मेला पंजवा, किसु काज न कियो जान, सुत मत नाही किसु ज्ञान, जाप ताप तील नहीं धर्म, कछु न जानो कैसा कर्म। ठाकुर पीतम प्रभ मेरे, तुझ बिन दूजा आवर न कोई, भूला चूका प्रभ तेरे राहो। रिद न बुद्ध न सिद्ध प्रगास, दिखे व्याध के गाव में बास, कर्ण हार मेरे प्रभ एक, नाम तेरे की मन में टेक। सुन सुन जीवे जीव मन ए विश्राम, पाप खंडन प्राव तेरो नाम। तू रत जी का दाता, जिसे जनाए तू ता तिन तू जाता, जो उपायो तिस तेरी आस, सगल आराध्य प्राव गुणदास। नानक दास तेरे कृपान, बेअंत साहिब मेरा मेहरबान। राम कली मेला पंजवा, रखन हर दयाल, कोट भाव खंडे नेमख ख्याल, सगल राधे जानत, मिलिया प्रभ गुर मिल सामंत, जीन को दाता मेरा प्रभ, पूर्ण परमेश्वर स्वामी कट कर।

नाम बिना क्या ज्ञान त्यान, गुरमुख पावे दरगह मान, हट अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीरथ परमत ब्याद न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे न रहाई, मनुआ डोले नर कह पाई, जमपुर बादो लह सजाई, बिन नावे जो जल बल जाई, सिद्ध साधक के ते मुन देवा, हट निग्रह न तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गहे गुर सेवा, मंथन निर्मल अभिमान अपेवा, कर्म मिले पावे सचनाओ, तुम शरणागत रहो सबाओ, तुम ते उपजियो भगति पाओ, जप जापो गुरमुख हर नाओ, हो मैं गर्व जाए मन पीने, झूठ न पावत पाखंड कीने, बिन गुर शब्द नहीं कर बार, नानक गुरमुख तत्व विचार, राम कली महला पहला, ज्यो आया त्यो जावे बोरे, ज्यो जन्मे त्यो मरण पया, ज्यो रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम विसार पव जल पया, तन तन देखत जत सत तन तन देखत गर्भ गया, कनक कामनी त्यों हेत वधाइए, की नाम विसरे परम गया रहा, जत सत संजम सील न राखिया, प्रेत पिंजर में कासट पाया, पुन दान इस नान न संजम, साध संगत बिन बाद जया, लालच लागे नाम विसारे, आवत जावत जन्म गया, जा जमताए केस गह मारे, सुरत नहीं मुख काल गया, अहनित निंदा तात पराई, हृदय नाम न सर्व दया, बिन गुरु शब्द न गत पत पावे, राम नाम बिन नरक गया, खिन में वेत करे नटुआ, ज्यो मोह पाप मोह गलत गया, इत उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन पया, करे विकार विथार कनेरे, सुरत शब्द बिन परम पया, हो मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया, सुख संपत को आवत देखे, साकत मन अभिमान पया, जिसका एह तन तन सो फिर लेवे, अंतर सहसा दुख पया।